हम आकाशवाणी उदयपुर FM रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.9 MHz पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 8 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं, हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम एफएम रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, प्रतिदिन की भांति सुबह 6:05 से लेकर सुबह 8 बजे तक के प्रसारण के लिए हम जुड़ेंगे हमारी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। इस समय प्रतीक्षा कीजिए हिंदी में समाचारों की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक

0: तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो और किसी को कभी दुख न सहना पड़े। ये था आज का चिंतन। लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 6:35 पर रामचरितमानस गान भाग 213, सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर भाग 8, कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खसनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सात बजे से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री डिंपल कापाड़िया पर। 10 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग। 11 बजे रंग तरंग। 12:05 पर यादों के महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। 2 बजे त्रिवेणी।

तीन बजे सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली। पिटारा में शाम 4 बजे सुनिएगा मधुमेह कारण और बचाव, डॉक्टर कुणाल मेहता से बातचीत सुनिएगा। पांच बजे छाया गीत 5:30 पर तराने नए पुराने।

6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता। आपको फिर से बता दें, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनेंगे श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर भाग 8। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खसनेस, प्रस्तुति मनीषा जैन की। शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा। शाम 7:45 पर स्मृतियों के स्वर। शाम 7:45 पर स्मृतियों के स्वर इसके अंतर्गत सुनेगा सेवानिवृत्त सहायक निदेशक अनीता वेस्ली पटेल से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए झलकी यस सर, लेखक प्रकाश शुक्ला, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार। रात 9:30 आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर। 10 बजे छायागीत। 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान भाग 213।

भरत के साथ आए अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक मिलकर श्री रामचंद्र ने उनके सारे संताप दूर कर दिए। और निषाद राज के सौभाग्य का क्या कहना, जिसे मुनिवर वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। जब उसने दूर से दंडवत प्रणाम किया तो कुलगुरु ने उसे राम सखा का ये सम्मान दिया। श्री राम ने माताओं के समीप पहुंचकर सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरकर उन्हें सांत्वना दी। जो भी हुआ था उसके लिए काल, कर्म और विधाता को उत्तरदायी ठहराया। फिर राम और लक्ष्मण ने अयोध्या से आई ब्राह्मण पत्नियों तथा गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की, गंगा तथा गौरी की भांति उनका सम्मान किया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के चरणों से लिपट गए, ऐसे जैसे भिखारी को अपरिमित संपत्ति मिल गई हो। जब माता कौशल्या के सामने दोनों भाई नतमस्तक हुए तो उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से नहला दिया। ब्राह्मणों, गुरु, मंत्री तथा सभी माताओं को साथ ले भरत

श्री राम तथा लक्ष्मण सहित आश्रम पहुंचे। सीता ने कुलगुरु के चरणों से लगकर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। सासुओं की उपस्थिति के कारण वो कुछ सहम सी गईं।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। इस श्रृंखला की आज सातवीं कड़ी।
1: रविंद्र जी, अब तक हमने तीन ताल, रूपक, एक ताल और झपताल, शास्त्रीय संगीत में उपयोग में लाए जाने वाले इन तालों की बात की
2: जी।
1: इस पर आधारित फिल्मों में जो गीत हुए हैं उनकी चर्चा की। अब थोड़ी चर्चा ललित संगीत में जो उपयोग किए जाते हैं ताल और उन पर आधारित जो फिल्मी गाने हैं उनकी बात करते हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे आप?
2: अभी ये जो है, जैसे तीन ताल, रूपक, एक ताल, झपताल
1: जी,
2: ये ख्याल गायन में इनका प्रयोग करते हैं
1: जी,
2: संगत के लिए, और उसमें विलंबित भी होता है, मध्यलय भी होती है और द्रुतलय भी होती है
1: जी।
2: अभी शास्त्रीय संगीत के अलावा हमारे भारतीय संगीत में उपशास्त्रीय संगीत है, तो उपशास्त्रीय संगीत जो है वो उसकी भी काफ़ी बड़ी विधा है और उसमें भी कई महान कलाकार जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है
1: जी।
2: तो ये जो उपशास्त्रीय संगीत है इसमें ठुमरी, दादरा, कजरी, होरी, बारामासा ऐसे कई सारे प्रकार है
1: जी।
2: तो ये जो प्रकार है इसमें उपयोग में लाए जाने वाले जो ताल है
1: जी,
2: उसमें प्रमुखता है कहरवा और दादरा। तो कहरवा जो है वो कहरवा फिल्मी गीतों में तो काफ़ी गीतों में वो आया है, मतलब अनगिनत गीत है जिसमें कहरवा बजाया गया है, और कहरवा का एक अपना खुद का जो विशेषता है, कहरवा की विशेषता, मतलब जैसे अब हम लोग अगर तीन ताल का उदाहरण लेते हैं तो तीन ताल है 16 मात्रा
1: जी।
2: मतलब सम में आने के लिए हमको 16वीं मात्रा तक इंतज़ार करना होगा
1: जी।
2: कहरवा है 4 मात्रा, तो 4 मात्रा धागे न तीन अक धीन, तो ये हो गया फिर आसान। तो इसको इसलिए हम लोग ललित संगीत इसलिए कहते हैं कि वो उसमें सुलभता है, आसानी है, तो सुलभता आसानी होने की वजह से कहरवा में अनगिनत गीतों का निर्माण हुआ है।
1: और अलग अलग गीतों में रविंद्र जी कहरवा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं।
2: हाँ, कई सारे रूप है
1: जी।
2: तो इसमें हम लोग जो शुरू में बात कर रहे थे कि पैटर्न के बारे में, पैटर्न होते हैं
1: जी,
2: तो अभी कहरवा जो है वो केवल ये मूल
1: ये उसका
2: कहरवा है, धागे न तीन न कदीन
1: जी।
2: अब वो जो कहरवा है वो गीतों के साथ में कई रूप बदल बदल के आया है, और हर गीत में हमको एक नया कहरवा का रूप देखने को मिलता है
1: जी।
2: वो पैटर्न की वजह से है। तो ये पैटर्न जो होते हैं वो पैटर्न तो गीतों के अनुसार कई सारे हैं, एक हाथ दो मैं आपको अभी उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ
1: जी।

0: ऐसे केरवा के कई सारे रूप
1: क्या है, बात है,
0: और इन सारे रूपों में हमको गीत सुनने को मिलते हैं। हम सुनते हैं गीत तो मतलब ऐसा कहने को मन नहीं करता कि ये केरवा बज रहा है।
1: नहीं,
0: वो तो उसका इतना सुंदर सुंदर रूप देखने को मिलता है कि बस उसको केवल सुनते जाए, वो उसका वो कोई नाम ना दे हम लोग।
1: तो ये हर अलग ढंग में जो केरवा बजा है और उसका अलग रूप हमारे सामने आता है
0: जी।
1: तो ऐसे दो गीतों की झलक सुन लेते हैं
0: जी।
1: कुदरत फिल्म का गीत है तूने और रंगीले क्या जादू किया, लता जी के स्वर में, और दूसरा गाना है मिलन फिल्म का सावन का महीना पवन करे शोर। इन दोनों गीतों में केरवा अलग अलग ढंग से बज रहा है, तो ये जो इसकी खूबसूरती है, ये जो निरालापन है, सुनते हैं इन दोनों गीतों की झलक।

0: की विविधता जो देखने को मिली इन गीतों की झलक में श्रोताओं, इसके बाद रविंद्र जी से पूछना चाहेंगे कि कहरवा ताल का कोई और भी प्रकार है जिसे फिल्म संगीत में प्रयोग में लाया गया है?
1: हाँ, फिल्मी गीतों में लाया गया एक कहरवा का प्रकार है जिसको हम लोग महाराष्ट्र में धुमारी ताल कहते हैं। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश या अन्य भागों में इसको कहरवा ही कहते हैं। तो कहरवा का ये जो आविष्कार है ये इसकी महाराष्ट्र की थोड़ी सी जो पार्श्वभूमि है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर मैंने कहा कि महाराष्ट्र में नाट्य संगीत की परंपरा थी,
0: जी जी,
1: तो वैसे ही महाराष्ट्र में कीर्तन की एक परंपरा रही है, दीर्घ परंपरा है ये, बहुत बड़ी परंपरा चलती आई। तो ये कीर्तन जो होता है इसमें एक धुमारी ताल का प्रयोग होता है, तो वो जो प्रयोग है, तो कीर्तन में अक्सर जो कीर्तन करने वाले हैं वो

0: ये कीर्तन परंपरा में इस तरह का ये ताल
1: जी जी
0: बजाया गया, तो उसका ही सुगम स्वरूप जो है, हाँ, ललित स्वरूप वो

0: ये कहरवा का ही एक अंग आ गया इसमें। तो इस अंग को लेकर भी फिल्मों में गीत बनाए गए हैं और वो काफी अच्छे गीत है
1: जी,
0: लोगों ने बहुत पसंद किए हुए गीत है।
1: तो रविंद्र जी, ये जो एक कहरवा का रूप है जिसे धुमाड़ी कहा जाता है, क्या फिल्म संगीत में इसका उपयोग हुआ है?
0: हाँ बिल्कुल हुआ है, और मतलब वो उदाहरण बताने के लिए ही मैंने अभी जी, इस जी। उस ताल का जिक्र किया।
1: हाँ।
0: कि धुमाड़ी का प्रयोग जो है वो आप सब लोग जानते हैं, गाना अजहुन आए बालमा
1: सावन बीता जाए।
0: तो इसमें जो धुमाड़ी जो हम लोग महाराष्ट्र में जिसे कहते हैं,
1: हाँ,
0: वो उसमें सुनने को मिलता है।
1: क्या बात है, सांझ और सवेरा फिल्म का बड़ा ही सुंदर गीत है, राग मधुवंती पर आधारित। तो सुनते हैं इस रचना को संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला की ये थी सातवीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनेगा थोड़ी ही देर में।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
4: वीको टायर मारे नहीं कॉस्मेटिक।

हल्लो हल्लो ओ मेरी चमक छल्लो, हल्लो हल्लो ओ मेरी चमक छल्लो, आओ आओ कर ले प्यार चलो चलो, हल्लो हल्लो ओ मेरी चमक छल्लो, आओ आओ कर ले प्यार चलो चलो।

हल्लो हल्लो ओ मेरी चमक खल्लो, हल्लो हल्लो ओ मेरी चमक खल्लो, आओ आओ कर ले प्यार, चलो चलो

सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हुस्नलाल भगत राम का संगीत था। लीजिए अब सुनिए तिकड़मबाज फिल्म का गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में। संगीतकार हैं बी एन बाली।

0: बीएन बाली के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे तिकड़म बास फिल्म का गीत, सुमन कल्याणपुर की आवाज थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में समय आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे हम।

0: बारूद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल थे, खयाम की धुन थी।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अफसर जी, राजा बापू महाशंकर के मंदिर जाया करते हैं। ये हमारा पुराना विलास है।

आज तेरा ये भक्त अपनी भक्ति के फूल आखिरी बार तेरे चरणों में चढ़ाने आया है। लड़ाई जीतने में मुझे इतनी खुशी न मिलती जितनी हार मानने में मिली। हे महाशंकर, तेरी दया से तेरा ये भक्त सपनापुर जीत सकता था, कुमार का सिर काट कर तेरे चरणों में चढ़ा सकता था, लेकिन अपनी बेटी की मांग में सिंदूर नहीं देख सकता था। सदा किसी के माँ बाप जिंदा नहीं रहते, लेकिन अगर संतान जिंदा रहती है तो माँ बाप

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र का लिखा गीत आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का था। फिल्म का नाम था राजहट। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इसके प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
4: देखो टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

हम हेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। शुरुआत अखियों के झरोखों से फिल्म के इस गाने से।

हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में अखियों की झरोखों से फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में देवता फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार आरटी बर्मन। हमें राय प्यार के इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए हमारा संसार फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और हेमलता की। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

हमारा संसार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आवाजें थी महेंद्र कपूर और हेमलता की। गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन।

0: हमारा संसार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आवाजें थी महेंद्र कपूर और हेमलता की, गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में अब समय है कि एक बहुत छोटा सा अंतराल लिया जाए।
5: Hey girls,
6: hey, congratulations.
5: आज तो पार्टी चाहिए,
6: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
7: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
5: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
5: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
7: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: बड़ी बहू, ये तुम्हारे ना।
9: इतनी भी क्या जल्दी थी?
8: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये
9: मेरी गुड़िया की नाम।
10: पर दादी, आपके नाम?
11: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
8: शुभ शुभ बोलो।
10: क्या?
11: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में डॉन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे अनजान, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हीरा लाल पन्ना लाल फिल्म का गीत आपने अभी सुना। आवाजें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे आरटी बर्मन। लीजिए अब सुनिए गोपाल कृष्ण फिल्म का गीत हेमलता की ये आवाज है। हेमलता और यशुदास की आवाजें हैं। रविंद्र जैन गीतकार और संगीतकार हैं।

0: हेमलता और यसुदास की आवाजों में गोपाल कृष्ण फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन थे। इसी गीत के साथ ही आज का हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए सविता सिंह को, नमस्कार। श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 101.9 MHz पर हम FM रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। पहले सुनिएगा हिंदी में समाचार प्रभात और सुबह 8:15 पर होगी अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज़। 8:30 पर हम आपको लिए चलेंगे हमारे मीडियम वेव चैनल आकाशवाणी उदयपुर, जहां से आप सुनेंगे सुबह की सूचनाओं और मनोरंजन का कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। इस समय प्रतीक्षा कीजिए समाचारों की।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ोरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
4: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
3: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा

0: सभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
5: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
3: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी

0: दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
2: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो

0: लोगों ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यदि किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो काम करने के तरीकों को बदलिए, इरादों को नहीं।
1: बिल्कुल, और इरादा हमारा भी यही है कि हम हर बार कंटेंट नया लाते हैं, लेकिन नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम तो वही रहता है जो चल रहा है। तो आज है सोमवार, और सोमवार की सुबह सबसे पहले तो आप सभी से हम दोनों करते हैं नमस्कार। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त बीना,
0: और मैं हूँ भगवती लक्षकार। और तो आज के अगर प्रोग्राम पर नज़र डालें तो आज है विश्व महासागर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। इन पर हम बातचीत करेंगे, स्थानीय खबरें आपको बताएंगे।
1: बिल्कुल, और आज है आकाशवाणी का स्थापना दिवस, और उसके अलावा हेल्दी हैबिट्स में ध्यान और मानसिक शांति के लाभ के बारे में हम बात करेंगे। सिटी अपडेट्स में हमारा जो सिटी पैलेस है, राजमहल, उसके आसपास की सांस्कृतिक गतिविधियों की चर्चा करेंगे, और साथ में होगा लास्ट में लिसनर्स कनेक्ट, जिसमें हमारे श्रोताओं से हम कहेंगे कि वो हमें अपने संदेश भेजें कि वो इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं या उनके बारे में कोई अपना विचार रखते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
0: तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, हमारे संदेश जो है आप ज़रूर हमें पहुंचाएं, और आपके संदेश जो है हम पढ़कर आपको सुनाएंगे 9:10 के बाद।

0: बिल्कुल, हमने भी प्यार किया है हमारे श्रोताओं से, और आज हम मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष, यानी कि आज ही के दिन 8 जून को जो है आकाशवाणी की स्थापना हुई थी, और 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था।
1: आकाशवाणी का जो आकाशवाणी नामकरण है ना, वो वर्ष 1956 में हुआ था। तो ऑल इंडिया रेडियो से उसका हिंदी नाम दिया गया था आकाशवाणी। पहला प्रसारण भारत में संगठित रेडियो के रूप में 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे या मुंबई स्टेशन से हुआ था, लेकिन इसके बाद 8 जून 1936 को आधिकारिक रूप से इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था।
0: और इसका ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और ये दुनिया में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक गिना जाता है, जो कि वर्तमान में 23 भाषाओं और 189 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है, और 500 से अधिक जो है इसके चैनल है।
1: बिल्कुल, और लगभग पूरे ही भारत में इसके जो रेडियो स्टेशन है वो फैले हुए हैं, और हमारे श्रोताओं को सबसे बेस्ट चीज़ जो रेडियो के माध्यम से मिलती है वो ये कि वो अपना काम करते हुए रेडियो सुन सकते हैं, अपना मनोरंजन के साथ साथ तमाम जानकारी

0: या देश विदेश की खबरें, और इसके अलावा भी अचानक से जब भी कोई आपातकालीन परिस्थिति आई है, रेडियो ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: और बिल्कुल, आकाशवाणी उदयपुर ने भी जो है अपने स्थापना दिवस यानी कि 1967 से लेकर अब तक है ना लगातार श्रोताओं से कनेक्ट किया है, और इसका जो क्षेत्रीय विस्तार के तहत मेवाड़ क्षेत्र की स्थानीय संस्कृति, लोक संगीत, सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस केंद्र की शुरुआत की गई थी, और उस समय ये AM पर चलता था, और उसके बाद में इसका एक और FM लेक सिटी सेवा भी शुरू की गई जो कि 10 किलोवाट पर है, और हम लगातार हमारे श्रोताओं से इसके मार्फत कनेक्ट रहते हैं।
0: बिल्कुल, हमारा जो नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम है भगवती, वो भी हमारे AM यानी मीडियम वेव के साथ साथ हमारे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाले श्रोता यानी जो FM लेक सिटी के श्रोता हैं वो भी इसे सुना करते हैं। तो आप सभी को आपका अपना ये आकाशवाणी स्थापना दिवस बहुत बहुत मुबारक हो, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपना ये स्नेह बरसों बरस यूं ही लुटाते रहें।
1: बिल्कुल, और हमें लिखे आपके संदेश 9462697568 WhatsApp पर।
0: बिल्कुल।

0: बिल्कुल, बजने दीजिए आपके रेडियो को और कहीं मत जाइए, आप सुन रहे हैं नमस्कार उदयपुर।
1: तो आज हम एक और दिवस मना रहे हैं, उसका नाम है विश्व महासागर दिवस। भगवती, हमारा

जो धरती का हिस्सा है उतना ही उतना लगभग या उससे भी बहुत ज़्यादा पूरा महासागर फैला हुआ है इस पूरी धरती पर, है ना, जहाँ पर स्थल के अलावा जो जल जीवन है वो बहुत बड़ा है। और विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है, और इस साल जो इसका थीम है वो है पुनर्कल्पना, हमारे जाने पहचाने संसार से परे हमारे महासागर के साथ एक नया रिश्ता। और वैश्विक स्तर पर इसका एक एक्शन फोकस है, स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर

0: विकास सम्मेलन के दौरान मनाया गया था और वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से 8 जून की घोषणा की विश्व महासागर दिवस मनाने के लिए। और अगर हम बात करें इसके महत्व की तो महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग घेरते हैं और महासागरों में रहने वाले फाइटोप्लांकटन पृथ्वी के ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं।
1: बिल्कुल, तुम कल्पना करो भगवती कि अगर हमारे यहाँ ये बारिश ही ना हो तो क्या हो। तो ये जो महासागर है यही है पूरा, जिसकी जिम्मेदारी है ये मॉनसून लाने की, जिसका हम अभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उमस झेल रहे हैं। तो ये जो सारा मॉनसून का चक्र है या ये ऋतुओं का चक्र है, इसमें ये सारे महासागर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारी धरती की 50% से भी अधिक ऑक्सीजन, जैसा कि अभी तुमने बताया, महासागरों में रहने वाले छोटे जीवों प्लैंकटन से आती है। यानी हमारी हर दूसरी सांस समंदर की देन है। इतना ही नहीं, इंसानों की जो फैलाई हुई गर्मी है उसका 90% हिस्सा ये महासागर सोख लेते हैं ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे।
0: और 80% से अधिक वैश्विक व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। महासागर में लाखों जीव जंतु और पौधे रहते हैं जो कि जैव विविधता का सबसे बड़ा हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अगर खतरे की बात करें ना तो खतरे भी बहुत सारे हैं। यानी कि हम जो है प्लास्टिक, कचरा, रसायन, तेल, रिसाव आदि महासागर प्रदूषण के मुख्य कारणों में से गिने जाते हैं। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन, समुद्र के तापमान में वृद्धि, समुद्र के स्तर में भी वृद्धि हो रही है। और स्तर की अगर हम बात करें तो मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक औसत समुद्र स्तर 1920 से अब तक 15 से 20 सेंटीमीटर यानी कि 6 से 8 इंच बढ़ चुका है।
1: बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते जाएंगे ये समुद्र का विस्तार और बढ़ेगा और ये स्थल का जो एरिया है धरती का, इसके ऊपर और ज़्यादा जगह घेरेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अब हमारे को परिस्थिति की संतुलन बनाने की, जो ग्लेशियर हैं वो अपने मूल स्वरूप में बने रहे, बहुत ज़्यादा वो पिघले नहीं, और महासागर का जो जल स्तर है वो बना रहे। क्योंकि महासागर केवल पानी का विशाल भंडार नहीं है, वो हमारी धरती का दिल और फेफड़े हैं। तो आज के दिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस बात की कसम खाएं या एक शपथ लें कि हम महासागरों की रक्षा करेंगे, उनके मूल स्वरूप को बनाए रखने में अपना योगदान।
0: यानी कि कभी भी आप किसी भी तट पे जाएं तो वहाँ पर प्लास्टिक कचरा या किसी भी तरह प्रकार का कोई कचरा ना डालें, इससे क्या समुद्री जीवों पर भी खतरा बढ़ता है।
1: बिल्कुल।

0: मीना, आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है और हर साल 8 जून को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है ब्रेन ट्यूमर की गंभीरता, उनके लक्षण और शुरुआती जांच के महत्व के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता फैलाना।
1: बिल्कुल, इसके जो प्रमुख तथ्य हैं वो है कि जब ये ब्रेन ट्यूमर बनता है तब मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं में वृद्धि होती है। ये घातक हो सकता है, यानी कि मैलिग्नेंट हो सकता है या बिगिनिंग भी हो सकता है, और प्राथमिक उपचार से अगर ये प्राथमिक पहचान हो जाए, क्षमा कीजिएगा, प्राथमिक पहचान अगर इसकी जल्दी हो जाए तो ये उपचार से इसकी जो सफलता की संभावना है वो बढ़ जाती है। और इसके जो संभावित लक्षण होते हैं भगवती, उसमें एक ही अगर आपको लगातार गंभीर सिर दर्द होता रहे, बार बार उल्टी या मतली होती है, दृष्टि या सुनने में समस्या हो, सीजर्स यानी दौरे पड़ते हों अगर आपको, और याददाश्त या व्यवहार में बदलाव आए, या शरीर के किसी भाग में कमजोरी या सुन्नपन आए, तो ये इसके लक्षण होते हैं। और आज के दिन इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जागरूकता हो जाए एक तो, और समय पर निदान होने से बेहतर उपचार हो जाए और जीवन बचाया जा सके।
0: तो बिल्कुल, जो है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पर हमें जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है, और अगर ये लक्षण कहीं दिखाई देते हैं तो ये MRI या CT स्कैन के माध्यम से इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है।
1: बिल्कुल,

0: आज का युग तकनीक गति और निरंतर व्यस्तता का युग है और हम सुबह से रात तक अनेक जिम्मेदारियां और चुनौतियों का सामना करते हैं। काम का दबाव, पारिवारिक दायित्व, आर्थिक चिंताएं और भविष्य की अनिश्चितताएं हमारे मन को लगातार प्रभावित करती हैं। ऐसे में मानसिक शांति बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
1: बिल्कुल, और मानसिक शांति बनाए रखने के उपाय भी हैं। चुनौती भले ही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें और समस्याओं की बजाय हल को ढूंढें, तो एक बहुत अच्छा साधन है मानसिक शांति लाने का, वो है ध्यान यानी मेडिटेशन। ये तनाव को कम करता है और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक अत्यंत सरल और प्रभावी तरीका है। मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है और हमारे मन के अंदर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है।
0: बिल्कुल, ध्यान एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है जिनका उद्देश्य मन को एकाग्र करना और आंतरिक चेतना से जुड़ना है। ध्यान के दौरान व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उन्हें समझते हुए मन को शांत और स्थिर बनाता है। नियमित ध्यान करने से सबसे पहला लाभ तनाव में कमी के रूप में दिखाई देता है, और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर और मस्तिष्क विश्राम की अवस्था में पहुंच जाता है। इससे तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोनों का स्तर कम होता है और मन में शांति का अनुभव होता है।
1: बिल्कुल, और अगर आपको ध्यान करना सीखना है तो कुछ टिप्स हैं। शांत स्थान चुनिएगा, घर या कार्यस्थल एक ऐसी जगह जहाँ पर शोर शराबा ना हो। आप पालथी मार कर बैठ सकते हैं, और अगर आपको पालथी नहीं मारी जाती तो आप सीधे कुर्सी पर शांति से बैठ सकते हैं। आंखें बंद करें, और सबसे अच्छा तरीका भगवती मैंने तो सीखा है, अगर ध्यान करना सीखना शुरू करना है तो सबसे पहले अपने जो सांस की जो इनहेल और एक्सेल है, यानी कि हम जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उस पर अपना फोकस बनाना। अगर आपने ये थोड़ी देर भी कर लिया तो आप बहुत कुछ अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख पाएंगे, अपने विचारों की गति को विराम देना सीख पाएंगे, आप किसी एक बिंदु पर फोकस करना सीख पाएंगे। और बहुत सारे जो विचार आते हैं अपने मन में, तो ध्यान के दौरान अगर अलग अलग विचार आ रहे हैं, ये स्वाभाविक है, ऐसे में विचलित नहीं होना बल्कि वापस से अपना ध्यान अपनी सांस पर ले आए। और शुरू में बोलते हैं कि 5 मिनट या 10 मिनट तक करना चाहिए, और धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है।
0: उदयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे ध्यान केंद्र जो है वो संचालित होते हैं, जो आपको भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। शहर के प्रमुख ध्यान केंद्रों में पिरामिड ध्यान, राजयोग और आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े कई जो है संस्थाएं भी शामिल है। साथ ही साथ आप जाएंगे तो मोती मगरी है, प्रताप नगर, हीरा नगरी है, या MLSU है, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आप जाकर अपने आप को ध्यान की मुद्रा में रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, ध्यान सीख सकते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी कोई अर्थ तो लगता नहीं है, आपका कोई खर्चा नहीं लगता, और आप अपने लिए एक बहुत अच्छी वैल्यूबल चीज़ पा सकते हैं, जो कि आपको किसी भी काम में, आप अगर अपने जीवन के कोई लक्ष्य बना रहे हैं तो आपको किसी भी काम में अगर आपने फोकस करना सीख लिया तो वो सिर्फ और सिर्फ इस ध्यान से, मेडिटेशन से ही सीख सकते हैं, और वो सफलता ज़रूर दिलाता है।
0: और एक बात

0: और भी कि ये आपको अनिद्रा से भी जो समस्याएं आती है, अनिद्रा वाली समस्या, उससे भी आपको निजात दिलाता है। तो बिल्कुल हमारा प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त होने वाला है प्रादेशिक समाचारों का।
1: तो चलते हैं जयपुर स्टूडियोस कुछ ही पलों में, और हम मिलेंगे 9:10 पर लेकर नमस्कार उदयपुर का अगला हिस्सा।

0: जयपुर अजमेर है। अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनिए। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना, पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस सीटों पर जीत के आधार पर अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भाजपा ने वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नामांकनों की कल जांच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं। भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा समावेशी विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और सक्रिय नागरिक भागीदारी द्वारा निर्देशित होना चाहिए। युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्री बिरला ने कहा कि शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 7 से 8 सालों में बढ़कर लगभग $45 अरब तक पहुंच सकती है। ये अर्थव्यवस्था वर्तमान में $9 अरब की है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में दृष्टिकोण को लेकर जो बदलाव आया है वह बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव छोटे शहरों से आने वाले सिविल परीक्षा के टॉपर्स की बढ़ती संख्या में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें कहा गया है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है।
1: यावत् चतस्त्रः प्रदिशश्चक्षुर्यावत् समश्नुते तावत् समैत्विन्द्रियं मयि तद्धस्ति वर्चसम्।
2: चारों दिशाओं के विस्तार व नेत्रों की दृष्टि शक्ति की जागरूकता।

0: से युक्त ऐसी समृद्धि हमें प्राप्त हो जहां प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन में रहकर पर्यावरण का संरक्षण हो और समस्त जीवन का सतत कल्याण सुनिश्चित हो।
1: भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सीमांत जिलों में प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सरहदी जिले जैसलमेर की जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध निर्माणों का सर्वे कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई थी।
2: गृह मंत्री महोदय ने, सीएम महोदय ने जो बैठक ली थी उसमें पांचों जिले जो हैं सीमावर्ती जिले उनके कलेक्टर एसपीज के साथ बैठक थी, जिसमें बहुत क्लियर कट ये निर्देश दिए कि 0 से 15 किलोमीटर के दरमियान किसी भी तरीके का एंक्रोचमेंट है कि सबसे पहले तो उसका हमें पूरा सर्वे हमारे पास होना चाहिए, और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि जो नियम विरुद्ध है तो उस पे कार्रवाई करने के लिए दिवाली पर्व से पहले इसमें निर्देश दिए गए। निर्देश क्लियर है कि एंक्रोचमेंट हटने की कार्रवाई करनी है और उससे पहले एक सर्वे का कहा गया है, तो सर्वे के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को हमने यहां से पाबंद कर दिया गया है कि सबसे पहले सर्वे है, सर्वे स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा और जैसे स्टेट से निर्देश मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। देश विदेश के 566 शहरों में एक पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक ये परीक्षा ली जाएगी। NTA की जानकारी के अनुसार पंजीकृत उम्मीदवार अब अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को देखते हुए जयपुर पुलिस और जिला प्रशासन सतर्क मोड पर है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ राजीव पचार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कमिश्नरेट क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह की रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी, डंडा लेकर चलने पर रोक रहेगी। प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भड़काऊ, भ्रामक या सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने वाली सामग्री के प्रसारण पर भी नजर बनाए हुए है। इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियातन जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थम जाने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज से 11 जून तक तापमान में बढ़ोतरी होने और पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस बीच पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 11 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर सहित प्रदेश के कुछ शहरों में हल्की बारिश हुई। अजमेर में भी कई जगह पश्चिमी विक्षोभ के चलते देर रात धूल भरी आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई।
3: कल दिन भर की गर्मी और उमस के बाद देर रात करीब 2 बजे से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं और तेज मूसलाधार बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहर में कई जगह पेड़ और सोलर पैनलों की प्लेटें होर्डिंग उड़ गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हालांकि आज सूर्योदय के साथ ही उमस फिर बढ़ने लगी है। नीलिमा धादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
1: जयपुर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए भरतपुर

0: में कल विशेष अभियान चलाकर करीब 14 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में जिला मुख्यालय सहित उच्चैन, छोकरवाड़ा, वैर, बयाना और रूपवास में ये कार्रवाई की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना, पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, नमस्कार। उदयपुर कार्यक्रम चल रहा है और मैं हूं आपका दोस्त भगवती लक्षकार।
2: मैं आपकी रेडियो साथी बीना और हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में। और भगवती, अब आगे बढ़ाएं थोड़ी सी गाड़ी अपनी।
1: बिल्कुल, एक गीत के साथ। और गीत से पहले एक बार फिर बताते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इसके बारे में आपकी राय ज़रूर से हमें लिख भेजिए। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वो है
2: 9462697568, 9462697568। और हमें अगले 5 मिनट में आपके संदेशों का इंतज़ार रहेगा।

0: कुछ ऐसी ही फिजाएं हैं हमारे उदयपुर की जो जादू भरी है, और उदयपुर का सिटी पैलेस खास तौर से सांस्कृतिक गतिविधियों का एक केंद्र है।
1: बिल्कुल, हमारा जो सिटी पैलेस है वो हमारे उदयपुर के बिल्कुल एक सेंटर में स्थित है। और कहते हैं कि उदयपुर जो था शुरू में जब बसाया गया था तो वो इस सिटी पैलेस से के आसपास के शहर के परकोटे के भीतर भीतर ही था, और सिटी पैलेस के आसपास ही जो यहाँ की प्रजा है उनकी सुख सुविधाओं के लिए अलग अलग क्राफ्ट्समैनशिप के लोगों को, अलग अलग शिल्पकारों को, अलग अलग बिजनेस के लोगों को यहाँ के राजा महाराजाओं ने बसाया, ताकि सारी जो सुविधाएं हैं वो शहर कोट के भीतर ही सभी लोगों को मिल सके।
0: राजपूत और वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ के भव्य चौक जो है वो आपको मंत्रमुग्ध करेंगे। और सिटी पैलेस के भीतर और उसके पैदल चलने योग्य आसपास के क्षेत्रों में कई सांस्कृतिक गतिविधियां आप देख सकते हैं। सिटी पैलेस संग्रहालय जिसे 1969 में जनता के लिए खोला गया था, शाही कलाकृतियां, मेवाड़ की पेंटिंग्स और हथियार का एक विशाल संग्रह प्रस्तुत करता है। और जहाँ तक पेंटिंग्स की बात करें तो नाथद्वारा शैली और पिछवाई, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी।
1: हम अगर सांस्कृतिक गतिविधियों को दो हिस्सों में बांटे, एक तो वो कि जो पर्यटक यहाँ आकर आनंद ले सकते हैं, और दूसरा वो कि जो छोटी छोटी सी चीज़ें, जो आर्टशिप्स, जो आर्टिजन्स हमारे यहाँ के बनाते हैं, जो क्राफ्ट्समैनशिप है हमारे यहाँ की, जो पारंपरिक लोक कलाएँ हमारे बाज़ारों में बिकती हुई दिखती है, उन दो हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं। तो जो गतिविधियां कर सकते हैं यहाँ आकर, उसमें है लोक नृत्य देख सकते हैं और कठपुतली शो होते हैं। तो ये बागोर की हवेली जो है वो हमारे इसी एरिया में आती है, और यहाँ पर हर शाम को धरोहर लोक कला कार्यक्रम होता है जिसमें घूमर, कालबेलिया, भवाई, तेरहताल जैसे लोक नृत्य होते हैं, लोक संगीत होता है और कठपुतली प्रदर्शन भी होता है, जो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचय देती है। और गणगौर घाट की सांस्कृतिक शाम हम कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पर स्थानीय कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते दिख जाएंगे, और बहुत सुंदर जो रोशनी झील के अंदर गिरती है तो वो भी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। पिछोला झील का नौका विहार है। और साथ ही अब हम आते हैं दूसरे चीज़ों पर, जो कि हमारी हस्तशिल्प और ग्रामीण संस्कृति। तो जो पुराना शहर है इसके आसपास बहुत सारा बाजार बसा हुआ है, जहाँ पर हस्तशिल्प और पारंपरिक भोजन दोनों चीज़ें हमारे जो पर्यटक हैं वो पा सकते हैं। इनमें जो मुख्यतः जो बाज़ारों में मिलता है वो हैं बंदेज की चीज़ें, चांदी के आभूषण, ऊंट और के चमड़े से बने हुए बैग्स, फिर जूतियाँ और पारंपरिक वस्त्र। इसके अलावा
0: हाथी पोल का बाज़ार जो है वो नज़दीक स्थानीय हस्तशिल्प और राजस्थानी वस्त्र और पिछवाई पेंटिंग्स खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन जगह आपको मिलेगी, और यहाँ पर आप हैंडीक्राफ्ट की कई चीज़ें भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इधर पूर्व की दिशा में थोड़ा सा मुड़ते हैं तो वहाँ है लखारा चौक, और वहाँ पर आपको लाख की चूड़ियों के साथ ही लाख के कई तरह प्रकार के जो
1: आजकल ज्वेलरी आर्टिकल भी
0: है ना, वो आपको मिल सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा नीचे आए तो घंटाघर क्षेत्र जो है वो सिकली करो के लिए फेमस है, और यहाँ पर आपको लोहे के औजार साथ ही साथ लोहे की बहुत सारी चीज़ें जो है

0: मिलेगी, और अगर हम थोड़ा सा नीचे आए हैं तो फिर आपको मिलेगा बड़ा बाजार, जहां पर सोने चांदी की बहुत सी वस्तुएं, या यूं कहें कि ज्वेलरी जो है वो बनती है।
1: साथ ही हाँ भगवती, बड़ा बाजार का तुमने जिक्र किया है, तो बड़ा बाजार में ज्वेलरी तो मिलती ही है, उसके अलावा वहाँ पर जो राजपूती परिधान है, पोशाकें हैं, वो मिलती है। और इसके अलावा जरी की अगर आपको काम करवाना है तो वो जरी, ये जरदोजी, वो सब आपको वहाँ मिलेगा बड़ा बाजार में।
0: सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पारंपरिक वस्त्र जो है, जो मेवाड़ में पहने जाते हैं, वो वहीं पे मिलेंगे। वहीं पूरे उदयपुर में अगर आप घूमेंगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपको वहाँ मिल जाएंगे।
1: और उसके थोड़ा आगे बढ़े तो वो मोचीवाड़ा कहलाता है, और वहाँ पर जो पारंपरिक हमारे यहाँ की जो जूतियाँ बनती है वो आपको वहाँ मिल जाएगी, है ना। और उसके और आगे बढ़ेंगे तो हम, अगर जैसे जैसे हम दिल्ली गेट के नज़दीक आते हैं तो बीच में एक चोखला बाज़ार आता है, और वहाँ पर आपको मिठाइयों को बनाने की चीज़ें मिलती है ना, जिसमें मावा वहाँ का फेमस है, कि वहाँ मावे की बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएगी जहाँ पर दूध से बना हुआ मावा मिलता है।
0: गतिविधियों की हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मावे का नाम लिया है, और आप भड़बूजा घाटी को भूल जाएं, ये हो नहीं सकता। और वहाँ पर आप देखेंगे कि कई पुरानी दुकानें जो बरसों से पैतृक रूप से चली आ रही है, और सिर्फ और सिर्फ मावा बेचते हैं, है ना। और वहाँ के मावे में आपको एक अजीब, मतलब एक विशेष प्रकार का
1: फ्रेशनेस होती है, बिल्कुल स्वाद होता है। उसके साथ ही साथ में बहुत सारे जो परचून है, या आपका जो खाद्य सामग्री है, राशन, उसके लिए पूरी की पूरी धान मंडी आपको वहाँ से जुड़ी हुई मिल जाएगी। और अगर हम उधर ना जाकर हम इस तरफ उतरते हैं घंटाघर से हाथीपोल की तरफ, तो यहाँ पर आपको जितनी चीज़ें मिल सकती हैं उनमें शामिल है बंदेज, लहरियाँ, साड़ियाँ मिल जाएंगी, चांदी के आभूषण मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ का जो एक स्पेशल पैचवर्क होता है, ऐसा कहा जाता है कि पुराने जो भारी भारी ड्रेसेस होती थी, जब वो ख़राब हो जाती थी तो उनके जो सुंदर सुंदर बेल बूटे हैं उनको काट के छोटे छोटे से बैग्स बनाए जाते हैं, और वो सामान हमारे उदयपुर में बहुतायत से मिलता है। और हमारे जो पर्यटक है वो उन चीज़ों को ले जाना पसंद करते, और उन पैचेस से बड़ी बड़ी दीवार पर बनाए लगाई जाने वाली सुंदर तस्वीरें बनाई जाती है, पूरे पूरे वॉल पीसेस बनाए जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उदयपुर में मिलते हैं। और स्पेशली अगर आपको ख़रीदने हैं तो आप हमारे सिटी पैलेस और उसके आसपास के बाज़ारों को बहुत अच्छे से निरखिए, तलाशिए, और हाँ यहाँ बार्गेनिंग होती है, वो आप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो हम मंदिरों को कैसे बोल सकते हैं, है ना। आप जगदीश मंदिर अगर जाएंगे तो सिटी पैलेस के ठीक बाहर स्थित है, और 1651 का इंडो आर्यन मंदिर कला का उत्कृष्ट नमूना ये है, और आप यहाँ सुबह शाम आरती का पूरा आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ उसी से जुड़ा हुआ है बांके बिहारी जी का मंदिर।
1: और अगर अपन गणगौर घाट जाते हैं और पाल पर जो घाट है उसके साथ साथ झील की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर और भी मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर घाट है हमारी पिछोला झील के। और अगर हम दूध तलाई के आगे बढ़े तो जलबुर्ज तक हमारे यहाँ बहुत सुंदर दृश्य है,
0: मंदिर भी है,
1: शहरकोट के
0: है।
1: भीतर ही स्थित है, बिल्कुल। और देखा जाए तो जो पैलेस से दिखने वाली चीज़ें हैं, जो पहाड़ों पर स्थित हैं, उसमें
0: काली
1: माता नजर आती है, सज्जनगढ़ नजर आता है,
0: काली माता नजर आती है।
1: तो जो सिटी पैलेस है उसकी छत पर खड़े होकर या उसको निहारते निहारते आप ऑलमोस्ट पूरे उदयपुर को निहार सकते हैं।
0: तभी तो यहाँ पर कई फिल्मों का फिल्मांकन हो चुका है, और इंग्लिश मीडियम है, लव आजकल है, प्रेम रतन धन पायो, गोलियों की रासलीला, और बहुत सारी फिल्में जो है
1: बनी है। और एक चीज और हम भूल रहे हैं, हमारे लकड़ी के खिलौने, जो परंपरा आज तक भी जीवित है, छोटे छोटे सुंदर सुंदर ऐसे खिलौने जो बच्चों को बिल्कुल हार्म नहीं करते, और बहुत सारे लोग बरसों से ये लकड़ी के खिलौने उदयपुर से ले जाते आए हैं। फिर थोड़ा सा दूर गांव में जाएं तो मोलेला आर्ट्स, हमारी जो मिट्टी की कलाकृति है, वो भी इस मेवाड़ की देन है। तो हम इतने समृद्ध हैं कि हम ये कह ही नहीं सकते कि हमारे यहाँ किसी को काम नहीं है, बहुत काम है और बहुत नाम है हमारे शहर का।

0: बिल्कुल, हमें बहुत सारे संदेश मिले हैं और ये पहला संदेश मेरे पास है किरण कोमावत का। ये लिखते हैं, खम्मा गणी भगवती सर और बीना मैडम जी, नमस्कार। उदयपुर का प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है और उसको सुनते सुनते सुबह का सारा काम हो जाता है। इसमें आप जो भी जानकारी देते हो वह भी पसंद आती है और आज आपने जो ध्यान लगाने की जो जानकारी दी है बहुत अच्छी लगी, और बीच बीच में आप जो गाने भी सुनाए हैं वह भी अच्छे लगे हैं, और ओल्ड सिटी की जानकारी तो और भी अच्छी लगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी। और एक और हमारे जो नियमित श्रोता हैं कमल सुहाल का, ये लिखते हैं कि आकाशवाणी से हमारा गहरा नाता है, हम सभी आभार प्रकट करते हैं। सुबह सुबह का कार्यक्रम सूचनाओं से ओतप्रोत है, गर्मी का ध्यान रखें, नारियल पानी और नींबू के साथ शिकंजी का रसपान करें। और इनके साथ है विष्णु सुहाल का जी भी, और ये भी लिखते हैं कि विश्व महासागर दिवस पर्यावरण का जो बचाना है, जल भी बचाना है, और ये कहते हैं कि फतेह सागर को भी हमें साफ़ सुथरा रखना है, और इसके अलावा ये कहते हैं कि सभी महासागरों का भी हमें ध्यान रखना है। फिर इन्होंने लिखा है कि ब्रेन ट्यूमर में कोशिकाओं का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये कहना चाहते हैं, वैसे देखो अगर इनकी बात को ढंग से पढ़े हम, कि गुरु रामदेव जी बताते हैं योग गुरु कि भ्रतृका आसन करें, ये ऐसा कहते हैं। इनके साथ श्याम मठपाल भी हैं जो भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ ही हितेश और बालकृष्ण सुहाल का भी लिखते हैं कि मेडिटेशन और योग जीवन बचाने का एक बहुत अच्छा जरिया है।
0: उदयलाल जी टेलर भी लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि आपने जो जानकारी दी है फिल्मों के बारे में वो बहुत अच्छी लगी है, और साथ ही साथ एक और मैसेज हमें मिला है वो है देवर्ष खत्री का, ये लिखते हैं कि ध्यान की जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने समय निकाला और मैसेज किए।
1: और अब अगर हम हमारे स्टूडियो की घड़ी की तरफ एक नज़र डालें तो थोड़ी देर में 9:30 हो जाएंगे, तो हम हमारे श्रोताओं को एक गीत की चंद पंक्तियों के साथ छोड़े जाते हैं और लेते हैं विदा नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम से आज के लिए। मैं थी आज आपकी रेडियो दोस्त वीना, और मेरे साथ
0: भगवती लक्षकार।
1: हम फिर मिलेंगे,
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुबह की सूचनाओं और मनोरंजन भरा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। इसे हमने हमारे मीडियम वेव चैनल आकाशवाणी उदयपुर से आप तक पहुंचाया। आप इस समय हैं एफएम रेडियो लेक सिटी के साथ एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। आइए आपको सुनवाएं आज की मॉर्निंग लोकल विंडो के कार्यक्रम।
1: 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's cool as fuck.

फिर एक सप्ताह गुजर कर आया है नया वक्त। समय की बहती नदी कभी सूखती नहीं दोस्तों। आइए कुछ लम्हों की बूंदों में घुलते हैं, थोड़ा सा संगीत, थोड़ी सी बातें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। एफएम रेडियो लेक सिटी की मॉर्निंग लोकल विंडो में आपका स्वागत। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त बीना और ये है गुड मॉर्निंग लेक सिटी।

मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए, और हमारे जितने लिसनर्स हैं इनका मस्त मगन मन आकाशवाणी उदयपुर और आकाशवाणी के तमाम रेडियो स्टेशनों का नाम मन में दोहराता है, क्योंकि वो बरसों बरसों से हमसे जुड़े हुए हैं। आज आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो अपना 90वां स्थापना दिवस मना रहा है। आप सबको ढेर सारी शुभकामना। और बात अब शहर के मौसम की करते हैं, तो फिलहाल 36 डिग्री के आसपास या 37 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान उदयपुर का आज रहने की संभावना है। न्यूनतम 27 डिग्री के आसपास रहेगा। अभी हवाओं में नमी सिर्फ और सिर्फ 32% है। मानसून को आने में अभी वक्त लगेगा।

केसरिया तेरा इश्क है पिया, और केसरिया ही हमारा ये यहाँ का माहौल रहता है जहाँ हम रहते हैं, इसे हम मेवाड़ कहते हैं, है ना। और हमारे श्रोताओं का मूड भी ऐसा ही रहता है, यानी खुश खुश। जो येलो ऑरेंज कलर्स होते हैं ना, ये खुशियों के कलर होते हैं। चलिए हम अब बताते हैं आपको कि आज के खास कार्यक्रम क्या हैं अभी इस मॉर्निंग लोकल विंडो में। तो पहले होगा प्रोग्राम ये गुड मॉर्निंग लेक सिटी, ये चलेगा सुबह के 10 बजे तक। 10 बजे होगा प्रोग्राम लेक सिटी के तराने, व्हाट्सएप के बहाने हमारी चुनी हुई कुछ फिल्मों में से कुछ सुरीले नगमे आप तक पहुंचाएंगे और आप उन पर लगाएंगे अपनी पसंदगी की मुहर हमें भेजकर व्हाट्सएप संदेश अपने। 11 बजे होगा कार्यक्रम यादों के झरोखे से। आज हमने कुछ ऐसे गीत इस प्रोग्राम में चुने हैं जो विशेषकर बच्चों पर या बाल कलाकारों पर फिल्माए गए हैं। इसके बाद 11:30 पर राजस्थानी लोक रंगों में रंगेगी FM रेडियो लेक सिटी की मॉर्निंग लोकल विंडो। प्रोग्राम होगा राजस्थानी गीतों का नाम गोखड़ा। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद अगला नगमा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

लौटा दे मेरा टिकट टू हॉलीवुड। ये गाना फिल्म झूम बराबर झूम से था। अब इसे यहाँ पर प्ले करने का एक ख़ास मकसद था। अभी पिछले कुछ दिनों से आप कुछ ऐसी सूचनाएं सुन रहे होंगे कि किसी का मोबाइल कहीं झील में गिर गया, कुएं में गिर गया, या किसी का कोई वैल्यूबल गैजेट कहीं पानी में गिर गया या खाई में गिर गया और वो उसे बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गए। दोस्तों, ये जो गैजेट्स हैं या ये ऐसी चीज़ें जो फिर से बन सकती है, दोबारा लाई जा सकती है, उनके पीछे अपनी इस मूल्यवान ज़िंदगी को दाव पर मत लगाइए। एक बहुत पुरानी दो शब्दों की कहावत है, जान है तो जहान है, है ना? तो अगर जान है या हम जीवित रहेंगे तो हम ऐसी बहुत सारी वैल्यूबल गैजेट्स और ख़रीद सकते हैं और ला सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी एक बार गई तो फिर से दोबारा नहीं मिलेगी।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बोल बोल के थक गया।
7: क्या हुआ?
6: नया किडबैग चाहिए।
7: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
6: करेक्ट।
7: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है,
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे

0: सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

यह है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लेक सिटी। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त बीना। आपसे बस कुछ ही पलों में यानी एक गीत के तुरंत बाद प्रोग्राम होगा लेक सिटी के तराने व्हाट्सएप के बहाने। अभी एक गीत का समय बाकी है तो ये आखिरी गीत गुड मॉर्निंग लेक सिटी का हम आपको सुनवा देते हैं आज के लिए।

0: ये था प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लेक सिटी, एफएम रेडियो लेक सिटी की ये है मॉर्निंग लोकल विंडो।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

एक बार फिर से अभी सभी श्रोताओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यह है एफएम रेडियो लेक सिटी, मॉर्निंग लोकल विंडो में समय हो चला है अब प्रोग्राम व्हाट्सएप के बहाने वाला, यानी लेक सिटी के तराने व्हाट्सएप के बहाने। तो व्हाट्सएप के बहाने आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपको करना क्या है, हम बजाएंगे कुछ गीत बहुत मधुर वाले, और उनमें से किन्हीं दो गीतों पर आप अपनी पसंदगी की मुहर लगाकर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपने एक या दो नाम के साथ, और कहां से आप हमें सुन रहे हैं उस जगह का नाम भी। लेकिन लेकिन लेकिन पूरे गांव के, पूरे मोहल्ले के और किसी भी व्यक्ति के व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर आप हमें ना भेजिएगा, हम बिल्कुल शामिल नहीं कर पाएंगे ऐसे मैसेजेस। और दूसरी बात कि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बजाए हुए गीतों पर ही अपनी पसंदगी की मुहर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए भेजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9462697568। आज की फिल्में हैं जवानी दीवानी, डार्लिंग डार्लिंग, अली बाबा 40 चोर, आन मिलो सजना, खूबसूरत, माचिस और ज्योति, आखिरी फिल्म डॉन। फिर से नाम सुनिए, जवानी दीवानी, डार्लिंग डार्लिंग, अली बाबा 40 चोर, आन मिलो सजना, खूबसूरत, माचिस, ज्योति और डॉन। शुरुआत करते हैं पहले गीत से, फिल्म है जवानी दीवानी।

जवानी दीवानी, ये था फिल्म का नाम जिसका टाइटल सॉन्ग अभी आपको सुनवाया। शुरुआत हुई है 10:01 पर मिले मैसेज मिस्टर एंड मिसेस 55 बजाज नगर उदयपुर की श्रोता, और उसके बाद मिला है हमें ओहो पुराने मैसेज तो डिलीट कर दिए जी हुजूर। ये है मार हरा दरवाजा एटा से, नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद रसीद, सुहेल और अनम अब्बासी और सिकंदरा राव से मुबीन और इशरत परवीन। इसके बाद हमें मैसेज मिला है अंबिका नगर हिरणमगरी सेक्टर 5 से प्रकाश चंद्र मेटा, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, सुरुचि, नेहा, चिया खिया, लिलिया मेटा। और ये है मैसेज चेतक सर्कल से मुकेश जिनगर, रेणु जिनगर, प्रेमपुरी गोस्वामी, सहेलियों की बाड़ी के श्रोता हैं, और सज्जन कॉम्प्लेक्स आज़ाद नगर के कुलदीप, अजय, प्रिंस जिनगर। और ये है लीला का मैसेज, ये डुमरी सिमरी डुमराव जिला बक्सर बिहार के श्रोता हैं, अवधेश शर्मा, अशोक, रोहित, सनम, ब्रजेश, हीरा लाल, मुकेश दिलमणि और श्री कृष्ण शर्मा। और ये है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब के विनोदपुरी, वीपी, रंजू, अशोकपुरी, सुशील, बीके, कैलाश, नीलम, रमा, पाली, ये सारे पूरी परिवार के श्रोता, और इनके साथ एक सुनील पाठक भी हैं। और ये मैसेज है दत्रेंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ के हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। भोपालपुरा उदयपुर से भाग्यवंती चौहान, सत्येन, तरुणा, एडवोकेट कमलेश और मधुकांत चौहान, निव्याश्री, नित्याश्री, और इन्होंने ये गाना पसंद किया है। ये जवानी ये दीवानी सुरेंद्र सोलंकी को सेक्टर 11 से पसंद आया है। इनके साथ इनके परिवारजन हैं भावना, प्रदीप और हर्ष, रानू, पार्थ, हाफिजा मिठाई, नफीसा फकरू, यूनुस असगर, सकीना पटवा, जकिया गुरैया, बस्ती राम जी की बाड़ी उदयपुर की श्रोता, इन्हें भी जवानी दीवानी का गाना पसंद आया। लाल सिंह कुमावत, मीना मोहित, मीनाक्षी कोमल, खेरादीवाड़ा, रंगीला, भरूच चौक के श्रोता है, एक मैसेज सेक्टर 5 से मिला है। विनोद जी, नीलम, गजेंद्र, जया, कुशल कुमावत और कोमल कुमावत, शिवलाल जी, छगन देवी, राजकुमार मोहित, ये चार भुजा मंदिर खेरादीवाड़ा की श्रोता हैं। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद, छत्तीसगढ़ के देवशंकर, अजय देव, तुषार देव और मास्टर अल कबीर, ये तामुरिया परिवार के सदस्य हैं। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत, पिंगावाला चौक, गौरैया, जलंधर के श्रोता। और ये है बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं। हरजिंदर छिंदा, जसवंती, जसवी

वीर जस्सी और सीता और गीता, मुझे लगा ये फरमाइश भेजिए तो नाम है। ये गांव नथाना पंजाब के श्रोता हैं और ये है बाबूलाल जी, दिनेश टाक, मुकेश टाक, पुष्कर सूरजपुर रेगर कॉलोनी के, और दिनेश जिनगर, मोहित जिनगर, इंदु जिनगर भूत महल से सुनने वाले। एक और ये ले लेते हैं हम मैसेज, और ये इन्होंने पहले भी भेजा, हाँ ये नाम हम ले चुके हैं, तो बार बार मैसेज ना करें सर, और एक बार जब आपका मैसेज मिल जाए तो अगले गीत से पहले मैसेज मत भेजिए। ये खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा शबनम, निदारम कलीम, और प्रताप नगर से नरेश दवे, रंजना दवे, और राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। और अगला गाना हम आपको सुनवाएंगे फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से, और कुछ और संदेश बचे हैं वो इस गाने के बाद।

बड़ा सा रोमांटिक गाना था ये फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से किशोर कुमार का गाया हुआ ऐसे न मुझे तुम देखो। यहाँ पर मैसेज हमें मिला है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश श्रीमती उषा अमित कुमार और हैप्पी राय का, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर के प्रतीक श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय का। जवानी दीवानी के लिए है भीलू राणा कॉलोनी उदयपुर के सोनू और पिंकी यादव। फिर मैसेज मिला है हमें गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर के श्रोता सैयद मसरूर शाइना हसन अक्साना जिया आफिया इब्राहिम सद्दाम अदीब। और अब जो मैसेज हमें मिला है वो है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र डूडी का। उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी शांति वारी जगदीश चौक से सीमा और नाहर सिंह वारी। वारियों की घाटी से भावना रावत नितिन रावत और जगदीश चौक से उमा वारी और साक्षी वारी। ये दोनों गीतों की मिली जुली पसंद थी और फरमाइशें हम शामिल नहीं कर रहे हैं। बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा को जवानी दीवानी वाला गाना पसंद आया। ये है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर महराजा आजाद नगर लक्षर हरिद्वार के श्रोता इन्हें गाना पसंद आ रहे हैं। रोशन लाल सालवी राजकुमारी ललित जमुना मधु ज्योति पूनम सचिन विवांश हित्विक और पूरा सालवी परिवार चौकीदार आवास मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर के श्रोता। ये है चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा शारदा चित्तौड़ा रॉबिन विकास भावेश सोनाली विनीता कृतिका दिया प्रियांश तनिष्का चित्तौड़ा। और ये कहते हैं कि आज़ादी के 90 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं धन्यवाद जी। किसी भी गाने में नाम शामिल कीजिए ऐसे क्यों भाई भीलू राणा कॉलोनी से सिमरन एंड पंकी आपका नाम तो हमने पहले शामिल कर लिया और किसी भी वाला मैसेज अब हमें मत भेजिएगा। सुरिंदर संधू अनीता रोहित रितेश शिक्षा प्रतीक्षा और मैक्स ये कुलम रोड हर गोबिंद नगर नवा शहर से। अच्छा जी और ये है जिसका मुझे था अभी देखिए जिसका इंतज़ार आपको है वो आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा तो जब ये गाना बजेगा तब आप हमें ये मैसेज भेजिएगा है ना। और ये मैसेज आया है फरमाइशी का जो हम शामिल नहीं करेंगे। ये रघुनाथपुरा श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल सोनू पप्पी भाटिया जमशेदपुर स्टेशन रोड की श्रोता। और एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पुराने जो मैसेजेस हैं जो अपने पिछले प्रोग्राम में भेजे उसे आप पहले से डिलीट कर दीजिएगा। राजकुमार माथुर स्मिता निलय माथुर अक्षिता माथुर आलिन माथुर बोरा गणेश जी की श्रोता धर्मचंद रेखा श्याम घनश्याम ज्योति नविशा योगेश जी आकाश शिवानी वैशाली सौरभ और गोयल परिवार खत्री मोहल्ला राजनगर राजसमंद की श्रोता इन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है। और ये है कलानौर से नरेंद्र किरण और नितिन मयंक इनका शर्मा परिवार के श्रोता है इनका मैसेज आया है। और हम फिर से कहेंगे कि हम फरमाइशी मैसेजेस शामिल नहीं कर रहे हैं। जगदीश धाकड़ नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ ये मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी के श्रोता हैं। आलोट बड़ी सुंदर जगह। मनीष टेलर बाबूलाल धाबाई सीमेंट फैक्ट्री उदयपुर के श्रोता। और ये हैं फिर से फरमाइशी प्रोग्राम के लिए मैसेज सिसार माँ के कैलाशनाथ राजू देवी राहुल दिव्या लाइक सॉन्ग डार्लिंग डार्लिंग। अच्छा जी और ठीक है जी देखिए डॉन का गाना जब बजेगा तो ये मैसेज आपका शामिल करेंगे या फिर आप फिर से भेजिएगा। डार्लिंग डार्लिंग के लिए है संजय शर्मा गीता निकेश विकास शर्मा ये गांव बारे नौनिया मोहल्ला तहसील जमानिया जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश की श्रोता। और ये सलमा अतारी कोजेमा तारी सुगरा संजीदा तबस्सुम अलीशा कलकत्ता वाला चार खारोल कॉलोनी की श्रोता इनका मैसेज हमने शामिल किया। और ये है

0: कमल कुमार सोहाल का नरोत्तम जी गौड़, परमानंद जी कुमावत, भवानी शंकर जी शर्मा और हितेश सोहाल का उदयपुर के तमाम श्रोता। और एक और मैसेज हमें ले लेते हैं, किंजल कुमावत हर्षिता शौर्य गजेंद्र सेक्टर 5 के, किंजू कुमावत शौर्य कार्तिक दादाजी और दादी जी इनके सेक्टर 5 उदयपुर के श्रोता, और परमानंद जी का नाम हम पहले भी ले चुके और इनके सारे साथियों का नाम भी शामिल हो चुका। अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। ये है अली बाबा 40 चोर का गाना, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: Hey girls,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना।
5: इतनी भी क्या जल्दी थी?
4: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये
5: मेरी गुड़िया के नाम।
6: पर दादी, आपके नाम?
7: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो।
6: क्या?
7: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

गाना था अलीबाबा 40 चोर फिल्म से आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें थी खत्तूबा। और इसे पसंद किया गोविंद जी, राजकुमार, कैलाश नवीन, श्री लाल जी, श्रीनाथ मार, खेरा दीवाड़ा के आर के पुरंग के संजय कुमावत, कविता राकेश मीना और तुलसीराम कुमावत, कांता कुमावत, तौसी का रवि, ये महादेव मंदिर खेरा दीवाड़ा के श्रोता है, मालदास शहरी के किशोर टेलर और जयंत राठौड़। और ये मैसेज हमें मिला है फिर से फरमाइश का जो हम शामिल नहीं कर रहे। सूरज पोल से नैमिश व्यास, ऐश्वर्या, लिटिल मास्टर, जया अंश व्यास का मैसेज हमें मिला और ये है आदर्श नगर मलौत पंजाब के राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ, शायना और निवान शर्मा। किरण कुमावत का मैसेज है ये रामदेव जी मंदिर से, मनोज जी कुमावत, सुंदर देवी, ललित जी, किरण, अजय, भावना, विनायक जी, हेमलता, यशस्वी, सिद्धि, निष्ठा, प्रतिष्ठा, इन्हें डार्लिंग डार्लिंग का गाना अच्छा लगा। डार्लिंग डार्लिंग का गाना पसंद करने वाले हज़ारेश्वर कॉलोनी से और अमृतसर से, अमृत सेन लिखना था इन्हें, ये अमृतसर लिख बैठे कोई बात नहीं। और लेक सिटी वीडियो वीडियो नहीं रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य, जल्दी जल्दी में हो जाता है। ये है जलालाबाद वैसे सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। और ये हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा, ये नरगौड़ा सीपत छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, ये हिंदुस्तान रेडियो मित्र ये ग्रुप है, इसके हैं विश्वकर्मा परिवार के श्रोता, बजेंद्र दादा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी, मिसेस पिंकी सानी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, बेगम इज्जत और रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सानी और मिसेस सुनीता सहानी जी। जब डॉन मूवी का गाना बजेगा तब हम डॉन मूवी वाले मैसेज शामिल करेंगे। अलीबाबा 40 चोर के लिए मारवाड़ी स्ट्रीट रविंद्र सरनी, कोलकाता पश्चिम बंगाल के हरिशंकर शर्मा, जीत रीना और काजल शर्मा का मैसेज मिला है। मुकेश वैद सिसारमा के, उदयपुर से मनन वैद, ईशानी वैद, शीला वैद और समस्त चौहान परिवार की तरफ से थैंक

के साथ मैसेज आया है। अशोक आनंद, मीनू नैनानी, प्रभात नगर, हिंडन मंगरी, सेक्टर 5 के श्रोता। फिर ये हैं आयुर्वेद चौराहा से अशोक चौहान, मंजू चौहान, उषा चौहान, पनिहारी वादियों की घाटी से वारियों हैं, ठीक है जी। दीपक रावत, किरण और नक्श रावत है। बस्ती राम जी की बाड़ी से सिराज हुसैन, शिरीन और समस्त मोती वाला फैमिली, इन्हें ये गाना अच्छा लगा। और ये फिर से हमारे पास एक मैसेज जिसमें फरमाइश है, तीज का चौक से राजकमल खंडेलवाल, शैलेंद्र, इंद्रलाल और दीपक, और सही वालों की हवेली से जगत सिंह, सविता और मोना चौहान को मैसेज मिला है। अली बाबा 40 चोर के लिए उदयलाल जी टेलर, प्राची श्वेता, डिम्पे सुहाल का, धारावती सुहाल का, डॉक्टर दीप्ति और मनोहर लाल जी सुहाल का, कमल हरीश कुमार और सुनील सुहाल का, आनंद विहार, सेक्टर 4 के श्रोता हैं। इसके अलावा ये मैसेज हमें दोबारा मिल चुका है। चलिए अब एक इसके बाद आप मैसेज मत करिएगा। धर्मचंद, रेखा, घनश्याम, ज्योति, नविशा, आकाश, वैशाली, सौरभ, समस्त गोयल परिवार, खत्री मोहल्ला, राजसमंद के श्रोता, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया, छत्तीसगढ़ के श्रोता जिन्हें गाना पसंद आया है अली बाबा 40 चोर का। और यह है सलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजीमुद्दीन और कैसरुद्दीन, कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल, दुविधा निवादा, जिला गाजीपुर के श्रोता। और आपके भी दो मैसेज हमने शामिल कर लिए। रहमान कॉलोनी उदयपुर से अब्दुल समद, फिरोज, फिरदोस, बानो, मोहम्मद और रजा। और ये हैं नागचुन रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा से अब्दुल गफ्फार, डावर खुशनसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और डावर परिवार के, और राजेंद्र कटारे, और भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन और पायल जोशी। और एक और ये हम ले लेते हैं मैसेज और उसके बाद अगला गाना सुनवाएंगे। ये है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू, डुमराव से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश, गोलाबाजार से श्रद्धा नंदारी, अभियानंदारी और परमानंदारी, और सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी और आसिमा खातून अंसारी। अगला गाना है फिल्म आन मिलो सजना से, तो उस गाने के साथ साथ अगले कुछ मैसेज और हम पढ़ेंगे। ये गाना सुनिए।

ये गाना था फिल्म आन मिलो सजना से, और ये पसंद आया चक 5MD पतरोड़ा से, ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान के, मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। और ये मैसेज आया है टेलीफोन नगर इंदौर से रोहित, पिंकी महाजन, सवीना से देवेंद्र कला गुप्ता, और प्रगति नगर से राजकुमार रेणू जैन का, विजय व्यास, उषा व्यास, जयेश व्यास, विनीत, पूनम, आशीर्वाद नगर यूनिवर्सिटी रोड उदयपुर के श्रोता जिन्हें ये गाना पसंद आया। ये है स्कूड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर के श्रोता रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष। वीरानगर से मनोहर सिकलीगर, सरोज सिकलीगर, गणेश घाटी से हेमेंद्र विजेंद्र सिकलीगर, इन्हें भी गाने पसंद आ रहे हैं। गाँव खारिया, जिला सिरसा हरियाणा, खारिया ढाणी नाम इनके गांव का। ये हैं सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया। धर्मेंद्र परिहार का मैसेज आया है कपिल ईशान और पूजा के साथ में, भोपालगढ़ राजस्थान से, और ये फिर से एक फरमाइश जिसे हम शामिल नहीं कर पाएंगे। ये है वारियों की घाटी से हरीश रावत, मीना रावत, एसएन रावत, भोपालवाड़ी से रवि भाई, सत्तू भाई, दिलीप खत्री, और वारियों की घाटी से गुनगुन। मीनाक्षी शर्मा चिंतामणि की घाटी उदयपुर के हमारे श्रोता जिन्हें गाना पसंद आया है। तरुणा जमक पूर्बिया, सोहन देवी पूर्बिया, पूरब लक्ष्मीराज पूर्बिया, हाथीपुल उदयपुर के श्रोता। ये है मैसेज फिर से फरमाइशी जो हम शामिल नहीं कर रहे हैं। नागर नगरी से अब्दुल भाई, बाबू भाई, टिंकू भाई, सोनू भाई और सेफन भाई का ये मैसेज आया है। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू, ये मैसेज हमें मिला। और ये है फिर से फरमाइश, हम फरमाइश इसलिए नहीं लेते क्योंकि आप प्रोग्राम ठीक से सुन ही नहीं रहे। हमने आपको बोला कि हमने चुने हैं गीत और आपको सिर्फ अपने नाम भेजने हैं। रमेश टेलर, अंजू मयंक, तनीषा, लक्षिता टेलर परिवार गायरियावास के श्रोता हैं जिन्हें का मैसेज हमें मिला। और ये है घनश्याम लाल बडारनिया, नानी बडारनिया, नंदिनी पल्लवी, कुसुम और बाबू भैया सेक्टर 5 के श्रोता।

मूवी अली बाबा 40 चोर का गाना इन्हें पसंद आया था। मेहर, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, पदमपुर, श्री गंगानगर, राजस्थान के श्रोता। और ये है फिर से फरमाइश जो हमने शामिल नहीं की है। श्री कृष्ण आर्ट दिवाली से ख्यालीलाल कुमावत, सुप्रिया कुमावत, रजत कुमावत और नन्ना टप्पू। और ये हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के टी डी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। तो अब तक के तमाम मैसेजेस 10:35 के बाद से जो मिले वो हमने शामिल कर लिए। अब 10:36 वाले मैसेजेस अगले गाने के बाद, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये गाना है दोस्तों फिल्म खूबसूरत से, ये रेखा वाली खूबसूरत।

आशा भोसले की मधुरी आवाज़ और ये चुलबुला सा गाना फिल्म खूबसूरत से, और इसे पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। ये मैसेज मिला है बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आज़ाद और मल्लू अंसारी बनारस के ये श्रोता हैं। जयपुर से राजेंद्र अरुणा वेद, मुंबई से विनोद रंजनाजी राजावत, हरिगढ़ से मनोज मनीषा, संभाजी नगर से संजय सपना जैन और उदयपुर से राजकुमार रेणु जैन। ये है अशोक भाई नामदेव, जाकिर भाई, लालजी प्रजा, ललित प्रजापत, कुमारवाड़ा के श्रोता, लक्ष्मी मार्ग मलका कांटा के नान जी, भरत जायसवाल, लाल जी और दिलीप जी। फिर अब मैसेज आया है, ये लंबा चौड़ा सा मैसेज, फिर हमने कहा कि आप पूरे मोहल्ले का नाम मत लिखिए, फिर भी

राजकुमारी उज्जैन। ये है अशोक भाई नामदेव, जाकिर भाई, लालजी प्रजा, ललित प्रजापत, कुमारवाड़ा के श्रोता, लक्ष्मी मार्ग अमल का कांटा के नान जी, भरत जायसवाल, लाल जी और दिलीप जी। फिर अब मैसेज आया है, ये लंबा चौड़ा सा मैसेज, फिर हमने कहा कि आप पूरे मोहल्ले का नाम मत लिखिए, फिर भी चलिए। पंडित जी, सहेलियों की बाड़ी के सामने से प्रेमपुरी गोस्वामी, हल्दीघाटी बलीचा के राजसमंद के श्रोता, तारा गोस्वामी, टीटू मीटू गोस्वामी नीमचखेड़ा के, और अच्छा फिर से वापस वही नाम है तो हमने ये शामिल कर लिए जी। फिर ये हैं शक्तिनगर उदयपुर से संतोष खतूरिया, काम्या खतूरिया, विकास भानु खतूरिया और हिताक्ष खतूरिया, सिंधी कॉलोनी डूंगरपुर से कशिश हसीजा, दीपक हसीजा, मीर हसीजा, कियू और निकिता खतूरिया। मल्लतलाई उदयपुर के जैनब तस्नीम, फातिमा उम्मीद, हनी को ये सॉन्ग अच्छा लगा, अच्छा। और कुवैत से ताहिर अली और अमतुल्ला और हसन को ये गाना अच्छा लगा जी, ठीक है। और ये हैं फिर से कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर ही जोधपुर के श्रोता, रमेश चंद्र, मोहिनी, कल्पित, बेबी करवी और बेबी बॉय हिमाक्ष, आपके भी दोनों मैसेज हमने शामिल कर लिए। ये है अशोक, प्रतापनगर उदयपुर के श्रोता, इन्हें गाना पसंद आया। एमबी कॉलेज कुमारों का भट्टा से मांगेलाल पूर्विया, पुष्पा रानी, इन्हें पसंद आया गाना। मोती छोटा करजाली हाउस से माधवलाल सिलिगर, और कुमारों का भट्टा से प्रजापति जॉनी भाई कुल्लड़ वाले, इन्हें भी ये गाना पसंद आया है। ये है अशोक एन लोहार का मैसेज, राजकुमारी और विपिन गोस्वामी, चंदनवाड़ी प्रेमनगर के श्रोता, जिन्हें मैसेज किया और हमारा गाना पसंद किया है। ये है इनका मैसेज हम शामिल कर रहे हैं, तुलसी मस्कीन, वीना आशीष राजा, चैतन्य मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रुचिता खुराना, कैशु रिधान खुराना, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली और चंडीगढ़, दोनों जगहों से ये मैसेजेस मिला जुला है। और अब ये है आन मिलो सजना के लिए, अडार नांदगढ़ छत्तीसगढ़ के माखन वर्मा, चांदनी, राहुल गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा, ये बहुत अच्छे श्रोता, इनको पता है कि हम एक बार सरनेम शुरू में पढ़ते हैं और एक बार लास्ट में। मलतलाई से फयाज हुसैन रसिया, फरीदा बानो, मोहम्मद सैफर रुबीना, धान मंडी से कृष्ण कुमार हरिव्यासी, सरोज बाला, मेघा गीत हरिव्यासी, राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सदस्य और सैफ कॉलोनी खांचीपीर के डॉक्टर निदा अनविया, रेहाना बानो, मिफ्ता हुसैन, फरीदा जब्बार, सुल्तान और डॉक्टर नाहिद। ये विनोद, अनीता, पीयूष, शालू, लक्षिता, सालवी, सुधारवाड़ा उदयपुर के श्रोता, सदर बाजार, मारवाड़ा, बिलाड़ा, राजस्थान के रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक चौहान। मस्कीन फैमिली का मैसेज हम शामिल कर चुके हैं और ये है फिर से फरमाइश जिसे हम नहीं ले रहे। जलालाबाद वेस्ट से आन मिलो सजना के लिए मैसेज मिला है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का। आन मिलो सजना के लिए कृष्ण कुमावत, सौरव कुमावत, मीठू झाला उदयपुर का ये मैसेज है। और अब तक के मिले हुए सारे मैसेजेस हमने शामिल किए और अब हम आगे शामिल करेंगे जो 10:46 पर हमें मिले, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक और अगले गीत के बाद।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

फिल्म माचिस का ये गाना चप्पा चप्पा चरखा चले ये अभी बज रहा था, लेकिन आन मिलो सजना के लिए फरमाइशें कुछ हैं जो नाम पढ़ देते हैं। संबरपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। अब हम सिर्फ वही मैसेजेस लेंगे जिनको हमने एक बार भी शामिल नहीं किया। ये है मोहम्मद इदरीस, रुखसाना बानो, मुस्तफ़ा रजा, ये रहमान कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं। और ये है भरत जायसवाल, सोनी गरासिया, गांव मंडवा, डूंगरपुर, राजस्थान के श्रोता। और इसके अलावा ये मैसेज हमें मिला है सुशील अनीता त्रिवेदी, गोकुल विलेज, उदयपुर के श्रोता हैं। जय श्री चेतन दीक्षित और सियाराम, उदयपुर के श्रोता हैं, जिनका मैसेज हमें मिला। ये है रामपुरा से नारायण सेन, और इन्हें ये चप्पा चप्पा चरखा वाला गाना अच्छा लगा। और ये है डॉन के लिए, चलिए जो गाना अब हम बजाने वाले हैं, तो ये आखिरी मैसेज इस प्रोग्राम का हम ले रहे हैं। विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाहटा, उमंग नाहटा, राहुल शर्मा, अक्षय शर्मा, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता वसीटा, भंवर वसीटा, गौतम वसीटा, राहुल अगरबत्ती, रामद्वारा चौक, धोली बावड़ी के हमारे श्रोता हैं जिनका ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं। और कुछ मैसेजेस हमें भी पहले भी मिले थे डॉन के लिए, तो चलिए अब प्रोग्राम का आखिरी गीत आप तक पहुंचाते हैं। आप तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपने आप को शामिल किया अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से, थैंक यू सो मच। और ये आखिरी गाना फिल्म डॉन का, इसकी फरमाइशें, इसकी पसंदगी के नाम हम पहले पढ़ चुके और इसके बाद हम कोई भी नाम शामिल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।

0: ये था प्रोग्राम लेक सिटी के तराने व्हाट्सएप के बहाने। आपके लिए इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया आपकी रेडियो साथी बीना ने, और आप कहीं मत जाइएगा, FM रेडियो लेक सिटी की लोकल विंडो अभी जारी है। अगला प्रोग्राम होगा बस कुछ ही लम्हों में, नाम यादों के झरोखे से।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: प्रोग्राम यादों के झरोखे से सोमवार की सुबह।

ठीक 11 बजे हैं अभी। आज का ये प्रोग्राम हमने समर्पित किया है उन नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों को जिन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया। आज हमने विशेष रूप से वो गाने शामिल किए जो बच्चों पर फिल्माए गए हैं और साथ में करेंगे उनकी कुछ बातें।

मौसम का जादूगर सरदार भी महासागरों के ऊपर बादलों को बना रहा है और धीरे धीरे हम तक भेज रहा है, और फिर घटा उड़ेगी कैसे और हवा चलेगी कैसे, ये हमें समझ आएगा। ये गाना था फिल्म दाग से, जो 1973 में रिलीज़ की गई थी। लता मंगेशकर ने इसे गाया, इसे शर्मिला टैगोर और स्कूली बच्चों पर फिल्माया गया है। वैसे ये गाना अपने बेटे के लिए वो गाती हैं, जिसकी भूमिका निभाई थी मास्टर राजू ने, जो राजू श्रेष्ठा जिन्हें हम इस नाम से जानते हैं। और इस फिल्म में एक और बाल कलाकार थी बेबी पिंकी, जिसे हमने एक और गाने में देखा था, जो फिल्म थी परिचय, जिसमें एक छोटी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया जैसी थी एक्ट्रेस। तो ये दो बाल कलाकार जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, राजू ने तो बहुत सारी फिल्मों में काम किया। बेबी पिंकी का नाम हम दाग में सुनते हैं, फिर प्रेम नगर में हमने उन्हें देखा, इसके अलावा परिचय में भी उन्होंने काम किया, और कुछ और फिल्में थी जिसमें शंकर शंभू और कसम या एक और कुछ पुरानी फिल्म थी झूठा सच। तो बहुत सारी ऐसी फिल्मों में बेबी पिंकी ने काम किया और राजू श्रेष्ठा ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। तो दाग के इस गाने के बाद अगला गाना एक ऐसा गाना जिसमें गाने में भी बहुत सारे बच्चे थे और फिल्म में भी बहुत सारे बच्चे थे। नाम याद कीजिए इस गाने को सुनकर।

चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, थोड़े अगाड़ी और थोड़े पिछाड़ी बैठे हुए बहुत सारे बच्चे। और ये गाना था फिल्म 1968 में रिलीज़ हुई ब्रह्मचारी का। तो ये गाना मोहम्मद रफ़ी ने गाया, शैलेंद्र ने लिखा और शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया। इस फिल्म में बहुत सारे बच्चों को काम मिला था। ये 1969 के फिल्मफेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई थी। इसमें अभिनेत्री राजश्री शांताराम, जो वी शांताराम की बेटी थी, इन्हें भी शामिल किया गया था। साथ में बहुत सारे बाल कलाकार थे, जिनमें जूनियर महमूद का जिक्र आता है। सचिन चाइल्ड एक्टर के तौर पर नज़र आते हैं। ये सचिन पिलगांवकर, जिन्हें हमने नदिया के पार में एक मैच्योर्ड एक्टर के रूप में देखा। साथ में मोहन चोटी, फिर जगदीप, और एक ऐसी एक्ट्रेस जो आज तक भी सीरियल्स में काम कर रही हैं, ये थी बेबी फरीदा, जिन्होंने चांदनी नाम की बच्ची की भूमिका निभाई थी। और बेबी फरीदा फरीदा दादी के नाम से आज तक भी इंडस्ट्री में सक्रिय है। ये 8 जून 1950 को जन्मी थी और इन्होंने लगभग 20-25 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। और उसके बाद टीवी के बहुत सारे सीरियल्स में, जिनमें सारा आकाश, मिस इंडिया, ये यही तो है वो, और घर की लक्ष्मी, बेटियाँ, दिल मिल गए, बालिका वधू, उत्तरन, बेस्ट ऑफ लक निकी, सावधान इंडिया, जोधा अकबर, और भी बहुत सारे सीरियल्स में काम किया। और ये अभी 2 साल पहले तक तो बहुत एक्टिवली बहुत सारी फिल्मों में और बहुत सारे सीरियल्स में बहुत सुंदर दादी दिखाई दे रही थी, बेबी फरीदा, और अब फरीदा दादी।

ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं।

0: सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ये गाना 1972 में आई फिल्म परिचय का सदाबहार गीत है। भारतीय संगीत और सिनेमा का अनमोल रत्न है ये गाना। गाना बच्चों को भारतीय संगीत के सुर सारे गामा पा धा नी सिखाने और मनोरंजन का एक बेहतरीन तरीका है। किशोर कुमार और आशा भोसले ने साथियों के साथ गाया। जितेंद्र और जया भादुड़ी पर कुछ बाल कलाकारों के साथ फिल्माया गया। एस डी बर्मन के बेटे आर डी बर्मन ने इस गीत को तैयार किया और लिखा गुलजार ने। संगीत का यह राग खमाज पर आधारित गीत है और सीखने में इतना आसान है कि बहुत इजीली यह हारमोनियम या अन्य वाद्यों पर एकदम नया नया सीखने वाला शुद्ध सुरों में बजा सकता है। गाने की थीम यह है कि मज़ेदार तरीके से बच्चों को सा से सवेरा, रे से रेशमी किरणों जैसे शब्दों के जरिए सातों सुर सारे गामा पा धा नी सिखाए हैं। इस फिल्म में जो बाल कलाकार थे वो थे मास्टर राजू, जिनका नाम था संजू, बेबी पिंकी जिसका जिक्र हमने अभी किया, मास्टर रवि और मास्टर किशोर, और इसमें बिल्कुल टीनेज से थोड़ी सी बड़ी जया भादुड़ी थी रमा के रूप में।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

श्रोताओं, ये है इस प्रोग्राम का आखिरी गीत। फिल्म है लाजवंती, जो 1958 में रिलीज हुई थी। मुख्य कलाकारों में थे नरगिस दत्त और बलराज साहनी। इसमें एक बाल कलाकार थी बेबी नाज, जो बाद में अभिनेत्री नाज के रूप में जानी गई।

बेबी नाज ने बूट पॉलिश, लाजवंती, दो फूल, सच्चा झूठा, देवदास, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे अरमान, मेरे सपने, एक ही रास्ता, विदेशी

0: या और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया जिनमें शामिल थी बहू बेगम, भाई बहन, कागज़ के फूल, मनमौजी, चांदनी चौक, कटी पतंग, मुसाफिर, चार दरवेश, प्यार का बंधन, शमा परवाना, यहूदी, नादिर शाह, समझौता, रेशम और देखा प्यार तुम्हारा।
1: ए लो बच्चों आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम, तुम हो हमारे हम है तुम्हारे कैसे न मिलते चांद सितारे।
2: माफ हमें मामा जी करना, तुमको पड़ा है नीचे।

ये आवाज़ें हैं आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हम आपको छोड़े जाते हैं। ये प्रोग्राम था यादों के झरोखे से। आज हमने शामिल किए बाल कलाकारों पर फिल्माए कुछ फिल्मी गीत और उनसे जुड़ी बातें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज आपके साथ थी आपकी रेडियो साथी बीना। कहीं मत जाइएगा, FM रेडियो लेक सिटी की मॉर्निंग लोकल विंडो में अगला प्रोग्राम होगा राजस्थानी गीतों का गोखड़ा। लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी क्षिति परना।

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना कुछ न छुपाना, हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी।

0: अम्मा जी नजदीक तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ, ना ना यूं ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे, रहती है अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता, एक तू ही क्या मुझको

FM बैंड 101.9 MHz पर ये है FM रेडियो लेक सिटी। इस समय सुबह के 11:31 हुए हैं और अब वक्त है राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम यानी गोखड़ा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
4: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
3: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
4: कहाँ से पता चलेगा?
3: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
5: आज ही सर्च करूंगा।
3: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
1: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

राजस्थानी गीता ने सुनी मन में उमंग उत्साह तो भरे है, लेकिन आपने एक आधारो रो जुड़वा रो मौको भी मिली जावे है सा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अरे गर्मी रहा मौसम में लोगी तो अपने अतरी हरी ठंडक पहुंचावे, कटे न कटे अनाने होनी ने आप रो मन बिल्कुल खुश हुई जावे और आनंदित हुई जावे सा।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

राजस्थानी गीतारो कार्यक्रम गोखड़ा अब अड़े ही समाप्त होगा। अब यही कार्यक्रम में इजाजत दो। राम राम सा।

0: FM बैंड 101.9 MHz पर, यह है FM रेडियो लेक सिटी। कुछ ही पलों में दिन के 12 बजने को है। आकाशवाणी दिल्ली से कुछ ही पलों में रिले होंगे समाचार।
1: साथ में सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास

0: क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जांच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम रेडियो लेक सिटी। दिन के 12:05 हुए हैं। अब हम जुड़ेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के साथ कार्यक्रम यादों की महफिल अब से बस कुछ ही पलों में।
4: उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।
5: दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे।
4: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के बाकी गाने हम आपको सुनवाएंगे एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम विविध भारती से आप सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म का गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में रानी मलिक का लिखा हुआ गाना। हमने आपको बताया कि आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम के शुरुआती कुछ गाने उन्हीं की फिल्मों से लिए गए हैं।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेत्री

डिंपल कपाड़िया का भी जन्मदिन है तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उन्हीं की फिल्मों के कुछ गाने अब आपको सुनवाएंगे। ये है बॉबी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, विट्ठल भाई पटेल का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं। बंटवारा फिल्म का ये गाना अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, हसन कमाल का लिखा हुआ गाना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर कार्यक्रम, आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

लास्ट सफर आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आज की इबारत जो है वो आपको बता देते हैं। खारे पानी का विशाल जलाशय, दूर से देखो तो मन मोहने वाला नीला रंग दिखाई देता है, जो पृथ्वी की जलवायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे तापमान को नियंत्रित करते हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए भी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे जीव इसमें पलते हैं। परिवहन, व्यापार और वाणिज्य के लिए भी ये आवश्यक है। भोजन, ऊर्जा और खनिजों के स्रोत हैं। बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ये। रहस्य और रोमांच से भरी लहरें इसकी रेतीली जमीन पर टकराती है, आवेग से आती है और टूट जाती है। जाते हुए अनूठी सौगातें हमें दे जाती है, जैसे सीप, शंख, मोती। शाम होती है, सैलानी चले जाते हैं, पर वे अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। उसका दिल तो देखिए, सबको अपने में आत्मसात कर लेता है। प्रकृति का अटूट समर्पण है ये। मन के भीतर भी लहराता है और बाहर भी अटखेलियां करता है। बताइए क्या है उसका नाम? जी हाँ, उसका नाम है सागर। आज वर्ल्ड ओशियन डे, ओशियंस डे यानी कि विश्व महासागर दिवस है, तो इसी अवसर पर आज हम बातें करेंगे सागर की, समंदर की। बहुत सारी चुनौतियों का ये सामना कर रहे हैं, इसलिए कुछ प्रश्न हैं हमारे, लेकिन वो प्रश्न हम आपसे कुछ देर के बाद पूछेंगे। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि ये धरा का वह अनंत आंचल है जिसकी गहराइयों में अनगिनत राज दफन है। इसका संगीत कभी लोरी की तरह शांत होता है तो कभी तूफान की तरह रौद्र रूप धारण कर लेता है। सूर्य की पहली किरण जब इसके सीने पर पड़ती है तो मानो सोने की चादर बिछ जाती है। वो इंसानों के लिए प्रदूषण को भी अपने भीतर समेट लेता है। ये बिना थके हर सुबह नई उम्मीदों के साथ जागता है। ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं बल्कि पृथ्वी का हृदय है। ये बादलों को जन्म देता है और नदियों को अपनी बाहों में समेट लेता है। इसके किनारे खड़े होकर हर इंसान इसकी विशालता में खो जाता है। जी हाँ, बात जब विशालता की आती है तो किसी भी चीज़ का आकलन हम करते हैं या फिर एक उसका कंपैरिजन जब करते हैं तो कहते हैं सागर की तरह। सागर की तरह गहरी आँखें, सागर की तरह गहरा दिल, सागर के जैसा गहरा प्यार। और भी बहुत जगह जहाँ पर हमें बहुत गहराई दिखानी होती है तो हम उसकी उपमा सागर से करते हैं। ऐसी और कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी बातें हैं जब हम कहते हैं कि ये तो सागर जैसा है? जी बताइएगा हमें। सबसे पहले आपको सीमा फिल्म का गाना सुनवाते हैं। शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, नूतन और बलराज साहनी पर फिल्माया गया गाना है। आवाज़ किसकी है आप हमें बताइए।

मन्ना डे की आवाज़ में सीमा फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि सागर महासागर के कई ऊंच नीच लहरों में छिपी अनगिनत यादों को, मन की भावनाओं को दिल की गहराइयों से सलाम। मिटने वाली सभी निशानियों का कभी अंत नहीं, सूरज को अपने भीतर समाने वाला सागर अथांग तीर में बंदिस्त होकर भी सभी नदियों का पानी पीकर सीमा नहीं छोड़ता है, ये उसकी खासियत है, अपनी सीमाओं से वो बंधा होता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि समंदर शोर भी करता है और सुकून भी देता है, ऊपर से नीला शांत और अंदर मूंगा मोती तूफान सब छुपाए बैठा है। समंदर की हर लहर आती है, वापस जाती है और कहती है कि फिर आऊंगी। वो बना तो बूंद बूंद से है पर बड़े बड़े जहाजों को भी डुबो देता है, फिर भी न छोटा होने का गम और न बड़ा होने का घमंड। वो हजारों नदियों का दर्द पीकर भी गमगीन नहीं होता, इसलिए अक्सर टूटे हुए लोग समंदर के किनारे जाते हैं और से सीखते हैं कि दर्द पीकर भी कैसे मुकम्मल रहा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बारूद फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। इसमें जो आवाज़ है वो लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है। ये कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

मेरी हद है कहाँ तक। जी हाँ, इस बात को हमें याद ज़रूर रखना चाहिए कि हमारी हदें कहाँ तक है। सागर के किनारे हम जाते हैं, अटखेलियाँ करते हैं, आनंद लेते हैं पानी के आने और जाने का, लहरों का आनंद लेते हैं, वहाँ की जो ठंडक होती है उसको महसूस करते हैं। दूर तक दिखता हुआ सागर, जहाँ उसका कोई किनारा नहीं दिखता है, सूरज डूबता रहता है, वो जो मंज़र होता है बहुत खूबसूरत होता है। क्या हमें इस खूबसूरती को बरकरार नहीं रखना चाहिए? ये प्रश्न अभी हमारे सामने है। जब हम समुद्र किनारे जाते हैं, बहुत सारी गंदगी फैला करके आते हैं, उसे गंदा करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी हदें हैं। तो इस बात को बताता हुआ ये गाना आपने सुना। मैंने आपको बताया कि ऋषि कपूर और शोमा आनंद पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समंदर सिर्फ पानी का विशाल संग्रह नहीं, बल्कि भावनाओं का आईना है। उसकी खामोशी में भी एक शोर महफिल है, इसकी हर लहर में एक रहस्य छुपा हुआ है, तो गहराइयों में दबी है एक असीम दुनिया, सदियों से बहता फिर भी ताजा लगता है। उसकी गहराइयों में कितने रहस्य दफन हैं, उसके हर मोती में कितने ख्वाब छुपे हैं। समंदर की शरण में जिंदगी मुस्कुराती है, उसकी विस्तृतता में एक आजादी का एहसास है। देखने में अथाह और शक्तिशाली समंदर, फिर भी कितना बेबस है। यह बेबसी इंसानी फितरत और भावनाओं से भी मेल खाती है, जहां हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ खास चीजों के लिए लाचार होते हैं। अब आपको हम आगे जो गीत सुनवाने वाले हैं, ये झुक गया आसमान इस फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

झुक गया आसमान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, राजेंद्र कुमार और सायरा बानू पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि आज की इबारत में विशाल अनंत कभी शांत चित्त तो कभी विकराल रौद्र रूप सिंधु की महिमा बखान है, कभी अटखेलियां करती लहरों और ज्वार भाटा से पर्यटकों को आनंदित करती है तो कभी पर्यावरण असंतुलन से असंतुष्टि का प्रदर्शन अपने रौद्र रूप चक्रवातों और सुनामी से करती है। समंदर मानव कल्याण के लिए खनिज जीव जंतु संचार परिवहन देश सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ भी है। अनेकों रहस्यों को समेटे सिंधु आज भी दहाड़ते हुए आकर्षण की प्रधानता स्वयं प्रमाणित करती है। सागर की लहरों संग का मनोरंजक सफर का हमें इंतजार है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज बातें होंगे समुद्र की, जिसे हम सागर जलधि पयोधि रत्नाकर अर्णव आदि नामों से भी जानते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से ढका है, जिसमें महासागरों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। ये सूर्य की हानिकारक और तीव्र गर्मी को सोखकर वैश्विक तापमान को संतुलित रखता है। अगर समुद्र न हो तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले सबसे बड़े सिंक के रूप में काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, सागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। गाना है सागर जैसी आंखों वाली, अभिनेत्री कौन है, उनका आज जन्मदिन भी है तो उन्हें हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी फिल्म का ये गाना सुनते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ से जावेद अख्तर के बोल संगीत आरडी बर्मन का।

ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना है, सागर जैसी आंखों वाली अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया। आज उनका जन्मदिन भी है, तो एक बार फिर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र केवल खारे पानी का अथाह विस्तार नहीं, बल्कि पृथ्वी का धड़कता हुआ हृदय है। दूर तक फैला उसका नीला कैनवास जितना मनोहारी है, उतनी ही गहरी उसकी संवेदनाएं हैं। उसकी लहरें तट से मिलने की उत्कंठा में दौड़ती है, टूट जाती है, फिर भी जाते जाते सीप, शंख और मोतियों जैसी अनमोल सौगातें दे जाती है। मानव की उपेक्षा, प्रदूषण और प्रकृति की चुनौतियों को सहते हुए

भी वो एक मौन तपस्वी की तरह बिना किसी शिकायत के सब कुछ न्यौछावर कर देता है और सृष्टि के लिए जीवन संतुलन तथा समृद्धि का आधार बना रहता है। अनंत गहराइयों, असीम धैर्य और मानवीय भावनाओं के इस जीवंत दर्पण में अनगिनत कहानियां, रहस्य और जीवन के सूत्र समाये हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अनोखी रात फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज़, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत, संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। संजीव कुमार इस गाने में एक वाहन चलाते हुए दिखाई देते हैं, वो वाहन कौन सा है आप हमें बताइए।

अनोखी रात फिल्म का ये गाना संजीव कुमार पर फिल्माया गया है और इस फिल्मांकन में वो बैलगाड़ी चलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र हमें सिखाता है कि गहराई में ही असली खजाना छिपा होता है। ऊपर लहरों का शोर होता है लेकिन भीतर अनगिनत मोती पलते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि इसका यानी कि समुद्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारी पृथ्वी को करीब 70% घेर के रखता है और हमें हवा पानी मुहैया करवाता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है। इसके किनारे खड़े होने पर अलग अलग समय में अलग अलग दृश्य देखने का रोमांच अलग ही होता है। ठंडी हवा के झोंके से मन आनंदित होता है तो कभी दूर तक शांत दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि समुद्र केवल भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि एक भावना है। इसे देखकर मन में असीम शांति और कभी कभी विचारों का ज्वार भाटा उठता है। यह बाहर जितनी अटखेलियां करता है इंसान के भीतर भी उतनी ही गहरी हलचल पैदा

करता है। समुद्र की लहरें जब तट की रेतीली किनारे से टकराती है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। लहरें अपने साथ गहरे समंदर में सुंदर सीप, शंख और मोती तट पर छोड़ जाती है, जिन्हें लोग यादों के तौर पर समेट लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रंगोली फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, शैलेंद्र के बोल और संगीत है शंकर जी जयकिशन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है आप बताइए हमें।

अभिनेत्री वैजयंती माला ये गीत गा रही हैं फिल्म में जो हमें दिखाई देता है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सागर की लहरें किनारे से टकराकर लौट तो जाती है लेकिन हार कर नहीं, वे फिर जाती है, फिर कोशिश करती है। शायद इसी में जीवन का सबसे सुंदर संदेश छिपा है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज विश्व महासागर दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वस्थ महासागर ही स्वस्थ पृथ्वी और उज्जवल भविष्य की नींव है। बढ़ते प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें समुद्रों को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है कि ऐसी चीज़ों का उपयोग हम कम करें या ना करें जिनसे ये जो जलाशय हैं हमारे ये प्रदूषित हो रहे हैं। और दूसरी बात

रात जब आप घूमने के लिए जाए तो प्लास्टिक का बहुत सारा कचरा और गंदगी वहाँ पर फेंक करके ना जाए, क्योंकि दूसरे भी तो सैलानी वहाँ आने वाले हैं ना देखने के लिए, और वो जब देखेंगे इस गंदगी को तो उन्हें फिर कहाँ आनंद आएगा। और वैसे भी इन चीज़ों से, प्लास्टिक से या गंदगी से, वो जलाशय जब गंदे होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो जब हम दोबारा जाएंगे तो क्या देखेंगे, या हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो क्या देख पाएगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर ये गंदे हो गए तो ये हमारे दिल को बहला नहीं पाएंगे। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद का।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना दिलीप कुमार पर यह गाना फिल्म माया गया है। एक हमारे साथी की बात है कि समुद्र सागर या फिर महासागर मनुष्य की जीवन शैली को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये मात्र विशाल जलराशि का स्रोत नहीं है बल्कि असीम धैर्य स्थिरता और जीवन चक्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। सागर की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हो सागर की गहराई उतनी ही शांत और गंभीर होती है जो एक संदेश देती है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो जीवन का उतार चढ़ाव में संयम और धैर्य रखें, मन को विचलित न होने दें। समुद्र के सामने मनुष्य का अस्तित्व उसकी एक बूंद के बराबर है। समुद्र की विशालता हमें अहंकार मुक्त होकर

प्रकृति के प्रति विनम्र रहने की प्रेरणा देती है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नीले जल में छिपे हैं कितने अनकहे राज, लहरों की जुबां पर बस प्रकृति का साज, शाम ढले जब सूरज समंदर में खो जाता है, हर कतरा तब प्रेम का दीप जलाता है, सीप की खामोशी में मोती का जन्म होता है, दर्द सहकर भी जीवन अनुपम कर्म होता है, मन के वेग को थाम लेती है ये लहरें, जैसे माँ की गोद में सो जाए सारी दहशतें, समुद्र कहता है बहते रहो ठहरना मत, सपनों की राह में कभी बिखरना मत, प्रकृति का अटूट समर्पण यही कहता है, जो प्रेम में डूबा हो वही मोती बन पाता है। धन्यवाद आपका। और अब प्यार का सागर, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे, आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए हमें।

राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना अभी हमने आपको सुनवाया। एक साथी की ये बात है कि जब हम सागर के किनारे अपने पैर डालकर बैठे तो वहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी, आती जाती लहर को हम देख रहे थे, मानो वो हमसे धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, कुछ बताना चाह रही हो। हम सुनना चाहते थे उनकी बातें, कुछ सुनी, हर जाती लहर मानो हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ दूर, बहुत दूर ले जा रही हो और हर आती लहर हमें अनगिनत खुशियां दे रही हो। बस फिर क्या, हमारी नटखट सी परी ने कहा, नानी उठो, हम दोनों इसमें पत्थर फेंकेंगे, और हमारी बातें अधूरी रह गई। हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे समुद्र से। एक साथी लिख रहे हैं कि सागर की आती जाती लहरें हमें ये संदेश देती है कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियों की लहर आती, कभी चुनौतियों की, लेकिन जैसे लहरें

बार बार किनारे पर पहुंचने का प्रयास करती है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार कर लौटना नहीं, बल्कि फिर से उठकर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे सुंदर सीख है। चलिए अगला गाना अब हम आपको सुनवाते हैं, तकदीर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ और साथ में कुछ और भी आवाज़ें हैं, सुलक्षणा पंडित, मीना पत्की और इला देसाई की इसमें आवाज़ें हैं और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है ये, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सागर किनारे जो शाम होती है वो प्रकृति में सबसे मनमोहक और सुरमई सा रूप लेते हुए मनुष्य में एक कौतूहल उत्पन्न करती है, प्रतीत होती है। इस समय सागर में उठने वाली लहरें मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, विरह और शांति को बहुत ही मनोयोग से बयां करती है। ढलती हुई शाम को सूर्य जब लालिमा बिखेरता है और सागर में उठती लहरों से किरणें आर पार गुजरती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सागर का 16 श्रृंगार कर दिया है। साथ ही नीला आसमां भी लालिमा बिखेरता है जो एक मनमोहक दृश्य बना देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है बल्कि प्रकृति की अनंत भावनाओं का प्रतीक भी है। इसकी अथाह गहराइयां हमें जीवन के रहस्यों का एहसास कराती है जबकि इसकी लहरें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। महासागर प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो अपने सुंदरता, शक्ति और शांति से हर हृदय को छू लेता है। धन्यवाद आपका। और अब मझधार फिल्म का गाना एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

एक साथी लिखते हैं कि कुछ बातें गीतों की तरह होती है, जितना सुनो उतनी ही अच्छी लगती है, और कुछ रिश्ते लहरों की तरह जो दूर रहकर भी मन के किनारों को छूते रहते हैं। कुछ गीत भी ऐसे होते हैं जो मन के किनारों को छूते हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना संकल्प फिल्म का गाना, कैफी आज़मी के बोल, संगीत खय्याम का, आवाज़ किसकी है बताइए हमें।

0: अ नए झुमके ना, पहले बचत,
1: पहले झुमके।
0: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या,
0: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी।

जी हाँ, इन सागरों की गहराई को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आज जिधर भी नजर जाती है सब दौड़ रहे हैं धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। इस अंधी दौड़ में हमारा सुख चैन कहीं खो गया है। न जाने कितने लोग इस रैट रेस के कारण अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बलि चढ़ा देते हैं। सारा धन और वैभव हमें मानसिक शांति नहीं पहुंचा सकता, इसके लिए तो संतोष रूपी धन की आवश्यकता होती है। सब कुछ झटपट पा लेने की बजाय संतोष के साथ थोड़ा थोड़ा संचय ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए।

कई बार हम देखते हैं कि रहने वाले तो एक दो ही हैं और कई कमरों का मकान है, आभूषण और धन इकट्ठा करने की मानो होड़ सी लगी है। सोचकर देखिएगा, हमारी आवश्यकता तो बेहद कम होती है और बाकी संचय तो हमारे ईगो को तुष्ट करने के लिए ही होता है, है ना? और इस चक्कर में हमारा जीवन पिसता रहता है। अगर हम संतोष धन को अपना लें तो हमारा परिवार सुखी परिवार लगेगा और अपना छोटा सा घर भी मानो सोने के महल जैसा मालूम होगा।

मेरा घर सूना सूना है। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है।

0: भारत ऋषियों मुनियों का देश रहा है। यहाँ त्याग और संतोष को महान गुण माना गया है। इन गुणों को हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में मानो भूलते से जा रहे हैं। आज आवश्यकता है सहज रूप से जीवन यापन की, मस्त मौला होकर बेफिक्र अंदाज में जीने की। संतोषी व्यक्ति अपने आप में, अपने अंतर्मन में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता है।
1: मैं हूँ

तो दोस्तों, जीवन में संतोष हमारे मन को शांत रखता है और हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है, हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मधुर बनाता है। तभी तो कहते हैं, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का

0: सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
2: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है।

0: पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Saklain Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान और इसराइल के

0: बीच हाल ही सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो भारती राष्ट्रीय सेवा, देश के सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आज और कल। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

आज और कल फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत रवि का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब अगला जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, ये बहुरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीत तैयार किया सी रामचंद्र ने।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं जैसे मुंबई।

0: में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

आरती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ये बंदिनी फिल्म का गाना, आवाज़ लता मंगेशकर की, गुलजार के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं ये सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में है, बी डी मिश्रा ने लिखा है, एस एन त्रिपाठी का संगीत है और फिल्म का नाम बीन का जादू।

आइए अब सुना जाए ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: के इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं,
1: क्या
0: जैसे
1: बात है।
0: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कैप्टन शेरू। इस फिल्म का ये गाना सुमन कल्याणपुर ने गाया है, नक्श लायलपुरी के बोल और संगीत है एस मोहिंदर का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस वही, जैसे आपने पूछा क्या हाल है, तो हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे
1: हैं। और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगी, निश्चित रूप से।
2: बिल्कुल।
1: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़ कराती हैं और क्या लेकर आती हैं?
2: देखिए, हम जो हैं उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। और रेत जो होती है ममता जी, वो अक्सर आप जहाँ पैर रखेंगे, दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ खिसकती है रेत। तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर बहुत अंदर तक जाएगा। तो ये सावधानी हमें
1: बिल्कुल बताई थी। ये कहा जाता है ना कि आग और पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, तो खास तौर से

0: समंदर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो जैसे कि मुंबई तटीय इलाका है और यहाँ पर बीच है और नियमित रूप से लोग आते जाते हैं, तो यहाँ का मालूम है यहाँ के निवासियों को, और इतना गहरा भी नहीं है समंदर यहाँ का। लेकिन बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर महासागर की गहराई ज़्यादा है और जो बहुत इंटीरियर बीच है, वहाँ जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में ना जाए, और कहीं पर रेत धसकती है। और कुछ ऐसे जगह खास तौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली, जहां पर हमने देखा, हमने खुद देखा है कि वहां पर पैर रखिए तो आप एक जरा सा कुछ सेकंड के लिए खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है, इतना तक। और कई बार गाड़ियां वहां पार्क की जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं, और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहां जहां जा रहे हैं पहले वहां के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें, उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में। और एक बात और है जो आप भी जानती होंगी कि वहां पर ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप क्या कहेंगे।
1: क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीजें ले जाते हैं या वहां से परचेज करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज जैसी चीज होती है या आपने दोने में कोई चीज खाई है तो वो सब वहीं पे छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाते हैं जो उसको दूषित कर देता है पानी
0: और आपको वापस देता भी है,
1: वापस पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता भी है।
0: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा, मतलब समंदर ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है,
1: संदेश देता।
0: तो ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का टुकड़ा या कुछ भी आ गया तो बहुत बुरा सा लगता है ना, आपको डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो नहीं आ गई।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे, जैसा वो उसके साथ करेंगे वो भी वापस जवाब देता है। तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए, खाइए, पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में, पैकेट में, झोले में रख के ले आइए अपने घर में, आसपास जो आपका कचरा दान उसमें डालिए, या वहाँ पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए, वहाँ समुद्र के वातावरण को, उसके किनारे को, उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं करें, इसका ध्यान।
0: और बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मुंबई में भी खासतौर से एक बीच है, अक्सा बीच जो कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है, तो वहाँ पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है। और उस वहाँ पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है ज़िंदगी। और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें, बजाय ये लिखने की हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उसकी बजाय अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुंचाएंगे। अब क्या करें, हम
1: अब गीत सुना दीजिए।
0: चलिए सुनते हैं गाना।

0: तो ममता जी, हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लिखकर भेज चुके हैं, और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेद भारती के पेज से वो भी लिखकर भेजे। और धरती की धड़कन है महासागर, विश्व महासागर दिवस पर
1: वो हमने बताई
0: दिया है। और कथा सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे।
1: और तपाक से बोलने की जो आदत है, कई बार लोग तपाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं, तो जरा सोच समझ के बोले क्योंकि कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। तो जब बोले तो सोच समझ के। फिलहाल ये गाना सुने।

0: के दिन में।
1: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण इसका भाग दो।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
4: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती

0: वधु को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया, वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
0: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे, सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे। किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी, जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका ये सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय ना कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही ना होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी, पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते फिर हाँप कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
2: क्या बात है,
1: मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली।
0: चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
3: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या, लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है। उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग रंग, आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं।
0: अंत को न रहा गया, जनान खाने में आकर बोले,
3: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
4: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
3: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
4: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
3: फजूल की मचमच,
4: तुमसे मतलब?
3: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
4: तो मेरा घर कहीं और है।
3: इन सब से कह दो फिर किसी वक्त आए।
4: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
3: ओहो हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
4: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसे ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला।
3: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
4: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
3: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ?
4: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
3: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
4: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
0: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोछ रही हैं।

कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहु विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं ताका।

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे, तो क्या अब यहाँ तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहाँ प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहाँ है?
2: मैं के कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे, तो तब कहाँ जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है।
0: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल वेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम

0: जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और मछली तो वहाँ पर मिलती ही मिलती है, मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
0: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है हम सब,
1: बिल्कुल ईंधन का साधन है, और व्यापार और पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
0: बिल्कुल, हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान हैं। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों तालाब और जहाँ जहाँ पानी है वहाँ उठती है फेनिल हिलोरें, और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
1: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती हैं, ऐसा लगता है वो दृश्य।
0: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है, जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांधी और नूपुर बज उठते हैं। उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी सखियां बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
1: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर हैं। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरती देखे तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा हैं ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं तो वहाँ स्वच्छता साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
1: जब आप तो ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
0: शुक्रिया मंजरी जी। लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
1: जी,
0: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय हम प्रकृति के उन नज़ारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है। वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में

0: हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
1: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं। दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार। और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है, बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारी ऑक्सीजन को हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए, सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है, बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है जो।
1: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देव बर्मन ने संगीत दिया। बात

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: देखिए ना कुछ कहने वाले
0: अरे, आपने मुझे बोल ही नहीं दी, काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से मतलब ये तपाक से बोलना हुआ लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसे बोला ना कि तपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया
1: लेकिन
0: आप घबरा गई।
1: हमें लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी कि मतलब वो
0: अच्छी बात बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं ये ऐसा था।
1: बिल्कुल। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मतलब आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है, मतलब है कहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए कहाँ बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं। कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी। और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ। भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से।
1: बिल्कुल।
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो। तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को पर वार करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुपते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए। पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार स्नेह बढ़ता है। इन्होंने बात लिख करके
0: और हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलत फहमी विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
1: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है, जहाँ लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है। इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं।

0: की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में ना काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से, कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई, चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं। तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो इसलिए एक दूसरे को काट कर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत

0: कुछ मर्दों में होती है, लेकिन प्रायः महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है, इन्होंने लिखा है। पड़ोसी की
1: काफी विश्लेषण किया है इन्होंने।
0: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती, पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ। कभी कभी हमारी भी ऐसी करती है, अब नहीं तो कहकर सर मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊं।
1: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते है ना, फटाफट फटाफट तपाक से। ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
0: सही बात
1: तो
0: है।
1: ये क्या वजह है? हमें लगता है कि
0: बड़े बैठे होते होंगे इसलिए बोल जाते होंगे।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती है?
0: नहीं, अब गीत सुन लेते
1: सुनते हैं।

0: कहना है।
1: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हम
2: हमें
1: कल
2: आज ही कहना पड़ेगा
1: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से
2: जी।
1: तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज।
2: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी
1: तो
2: खाते
1: ये
2: हैं।
1: रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
2: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
1: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना,
2: अभी तो
1: सिर्फ बनाया नहीं जाता है।
2: जी वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे आपकी आंखों की जो चमक थी वो मैं समझ गई थी।
1: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही
2: हैं? आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं। इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी, आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए और 1/2

0: छोटा चम्मच हींग लेना है, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और एक छोटा चम्मच अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार और बड़े चार बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है। तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। अब आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो आटा साना है उससे लोइयां बनाइए, उसमें आलू का भरावन भरिए और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हाथ हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाएगी।
1: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
0: बिल्कुल ये टाली भी नहीं जाएगी।
1: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, आधा कप धुली उड़द की दाल 4-5 घंटे भिगोई हो जो, एक छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ और चौथाई छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला छोटे चम्मच से मतलब चुटकी भर, और एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाएं, भीगी उड़द की दाल का पानी निकाल कर दरदरा पीस लें, कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें। अब दाल मध्यम आँच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें। अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें। इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
0: जी।
1: और अब ये गाना सुनें।

कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज़ थी। और अब घड़ी की ओर ज़रा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सभी

0: भी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है।
1: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूँ और उनको मेरे विचार पहुँचा सकता हूँ, और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूँ आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह, कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलाइटिस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है, और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते,

0: इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफ़ी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही, लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है, तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
1: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वह किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
0: डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं, जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
1: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है, तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
0: टाइप 1 के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफ़ी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है।
1: ओहो,
0: इतना ज्यादा शुगर होता है।
1: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
0: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है, वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
1: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो, कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज्यादा खा लिया है, तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा, बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ भाई, देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप
0: श्रोताओं को। मैं ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, एमरजेंसीज के कारण, बट शी इज़ ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप टू मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज़ के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज़ हो सकता है, या बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज़ का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज़्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का इंडिकेटर है, और अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा, क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में उसे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज़ का इंडिकेटर मिलता है, और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज़ का मरीज़ ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है, तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है, बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का BP बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको OPD बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है, क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है, ये आप देखते हैं, पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ रहा है। कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें, जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या है, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं।

0: उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं। उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
1: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
0: पेशेंट्स को दूर बहुत टेंशन होती है।
1: अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
0: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा जो मेरे MD के बैचमेट्स है। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयाँ है, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके।
0: हाँ,
1: तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहाँ पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज इट्सेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज़ में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस, डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा, जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज आ जाता है?
1: जरूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स है, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो काफ़ी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज आ सकता है, बट जरूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
0: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता?
1: टाइप 1 डायबिटीज में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज है कि नहीं। पर अगर बच्चा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है, हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज होता है, उसमें इंसुलिन इज द लास्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन दवाइयां मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और इंसुलिन एक

0: आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
1: जी सही बात है। इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा, बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं।
0: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दुर्बलता आती है।
1: डायबिटीज़ में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, बट अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
0: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
1: डायबिटीज़ जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स हैं जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दें, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो-खो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूअसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशंस है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज़ की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज़ हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली हैं।
0: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
1: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे ज़मीं पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा।
0: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे जमीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज़ हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज़ के लिए प्रोन है। ज़रूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज़ होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज़ नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज़्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज़ होने की। आजकल जो उससे ज़्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज़ जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज को डायबिटीज़ हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है।
1: डायबिटीज़ में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज़ है तो सभी बच्चों को डायबिटीज़ होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज़ नहीं हो।
0: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं हैं, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं।

0: तभी इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप?
1: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी स्टडीज है जो बताती हैं कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफ़ी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो दूसरे से बाहर लो, बीच में जो दिमाग है उसको बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो
0: जी।
1: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
0: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए
1: जी। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफ़ी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर
0: जी।
1: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है, और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज़ होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज़ जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊँ तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहाँ पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोती बिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, बट अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं, इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है। तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में। स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
0: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है, कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पगतलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
1: डायबिटीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में ज़ख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये ज़ख्म बढ़ता जाता है, और डायबिटीज़ के जो मरीज़ है ये काफ़ी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं। इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए, और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुट वेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पिटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है।

0: बिलो नी होता है, बिलो एंकल अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है, तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें, तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते हैं तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज़ फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज़ नहीं पहने, और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा।

0: हमें जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज़ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस्ड डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज़ के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा

कहता हूं कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है, इनमें बहुत ही कम होती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं।

0: ये आजकल कॉमन पब्लिक है इनमें बहुत ही कम होती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम ख़त्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज़ है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी 6 दिन जो है हफ्ते के, उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोंड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाद्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए, और तली हुई चीज़ें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज़्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो यस, आप डायबिटीज़ की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ होने की संभावना है।
1: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
0: यस।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री, तो व्हाट इज शुगर फ्री?
0: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकरिन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं बट इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल्स, शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए, ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं लें, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज़ कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
1: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
0: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूँगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।
1: आइए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुने तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था, मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें

0: प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा। FM बैंड 101.9 MHz पर यह है FM रेडियो लेक सिटी। शाम के 5 बजने ही वाले हैं, थोड़ी ही देर में युवा साथी अब हमारे दोनों चैनल FM और मीडियम वेव पर सुनेंगे एक साथ कार्यक्रम युवाणी। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: अल्फाजों का सफर है, जज्बातों का समंदर है, आज की शाम हर युवाओं के नाम है। कुछ मन की बातें होंगी, कुछ ख्वाब के उड़ान होंगे, ये युवाणी है दोस्तों, यहाँ हर बात की एक नई पहचान होगी। हेलो, गुड इवनिंग खम्मागणी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आज आपकी होस्ट माहिन खान, और आज मेरे साथ है मेरे को होस्ट
1: हर्षित।
0: तो चलिए, हम कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले सुनेंगे काव्य पाठ ज्योति सुथार द्वारा।
2: नमस्ते, मेरा नाम ज्योति सुथार है। मैं अपनी कविताएं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी पहली कविता है 90 वर्षों की गूंज आकाशवाणी। प्रेम भरी वाणी से रिश्ता बड़ा प्यारा रहता है, यह आवाज की खनक से दिल हल्का महसूस होता है। यह यात्रा जो चल रही 90 वर्षों से है, यह यात्रा जो चल रही 90 वर्षों से है, उसी का प्यारा नाम आकाशवाणी है। स्वतंत्रता की गूंज हो या सैनिकों की दास्ता हो, खेती के समाचार हो या मौसम की मार हो, कई इलाकों में बसता मंजर सुनाया है, आकाशवाणी ने सब पर खूब प्यार लुटाया है। सबकी भाषा संस्कृति को अपना बनाया है, गीत कहानी कविता से मनोरंजन बढ़ाया है। जब चल रहे थे आंदोलन लड़ाई युद्ध, जब हो रहा था सब और अंधेरा, तब आकाशवाणी ने आवाज बनकर सबके मन को सुकून दिया, भेदभाव किए बिना सबके मन को सहारा दिया। आकाशवाणी की आवाज सच्चाई और भरोसे की गूंज बनी, जिससे तम को मिटाकर प्रेम की भाषा चुनी। सीमा पार सैनिकों की खबर हो या अनजान रास्तों से आता कोई डर हो, आकाशवाणी ने सबको पहचान लिया, बिना चेहरे की चमक के सबको सुकून दिया। देश की धड़कन आमजन की आवाज बनी, आकाशवाणी देश की पहचान बनी। आकाशवाणी के पास दूर दूर की खबरों का बसेरा था, शिक्षा संचार में भी इसका नाम पहला था। दुख या सुख की घड़ी में समाचार सबसे पहला माध्यम था। आकाशवाणी कोई आवाज नहीं, घर का एक सुकून वाला हिस्सा हुआ। आकाशवाणी मनोरंजन और अपनापन की छवि बना, पीढ़ियों से आती सुंदर आवाज बना, कोरी कल्पना का सुंदर भविष्य है। आकाशवाणी हमारी पीढ़ियों की यात्रा का सहभागी है। पीढ़ियाँ बदलती गई, समय बदलता गया, पर आकाशवाणी की आवाज़ अमर है। बरसों से गूंजती यह वाणी भारत का कर रही सुंदर वर्णन है। मेरी अगली रचना है हवा में गुली कहानियाँ। रेडियो की कहानी बरसों पुरानी है, आवाज़ की खनक बड़ी प्यारी है, गीत संगीत भजनों का मेल रहता है, गीत संगीत भजनों का मेल रहता है, रेडियो की आवाज़ से हर घर भरा रहता है। रेडियो सुनाता रहा भारत देश के समाचार, कहानी कविता मधुर संगीत, सुनाए कुछ ऐसे किस्से जिससे दिल भर आया, कुछ ऐसे कोई बिना चेहरे के घर में मुस्कान ले आया। रेडियो की तरंगों में जैसे प्यार बसते देखा, रेडियो की तरंगों में जैसे प्यार बसते देखा, इसी के कारण पूरे परिवार को एक साथ बैठे देखा। रेडियो बरसों से गूंजती कोई कहानी है, रेडियो का मीठा धीमा संगीत जब गूंजता था हर किसी का मन मोह लेता था। रेडियो आवाज़ नहीं, मन की बहती कोई

कहानी है जो पल भर में सुकून दे जाए, ऐसी वाणी है। शब्दों का जादू रेडियो पर खूब चलता है, शब्दों का जादू रेडियो पर खूब चलता है। किसी की हिम्मत तो किसी की कहानी बनता है। तकनीक बदली, नया दौर आया, रेडियो का अंदाज बदला और कई जगह नया मुकाम बनाया। नया दौर आएगा, नई तकनीक आएगी, आवाज़ में अपनापन लिए रेडियो नया मुकाम बनाएगा, आवाज़ में अपनापन लिए रेडियो नया मुकाम बनाएगा। मेरी अगली कविता है माइक से मुल्क तक। आवाज़ जिन्होंने लंबा सफ़र तय किया, हर गांव हर गली तक ये सफ़र चला, देश की खबरों को जन जन तक पहुंचाया, रेडियो ने मुल्क का साथ रोज़ निभाया। आसमान में जब मौसम बदला, किसानों तक ये सबसे पहले पहुँचा, त्योहारों की खुशियाँ सब और छाई रही, रेडियो ने फिर भी अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई। युद्ध आंदोलन नियम कानून सबको अपनी भाषा में समझाया, रेडियो ने परिवार के सदस्य जैसा हिस्सा निभाया। देश को एक कड़ी में जोड़ता रेडियो जन जन की आवाज़ बना, आवाज़ गूंज के कानों में मीठा रस घोलती रही। आकाशवाणी धीरे धीरे सजती संवरती गई, मेरी अगली कविता है अनसुनी आवाज़। कुछ अनसुनी कहानियाँ सुनी हैं जीवन में जो प्रेरणा बनी हैं। वो कहानियाँ हैं उन स्त्रियों की जिन्होंने चूल्हे की आँच में अन्नपूर्णा बन दिखाया, जिन्होंने बच्चों को शिक्षित कर खुद को संबल बनाया, दूर दराज काम पर गए अपने सुहाग को हिम्मत देकर खूब प्यार लुटाया, जीवन उनका जैसे झोंक दिया परिवार समाज घर की चार दीवारी को, फिर भी ना चाहा कोई पद प्रतिष्ठा, जैसे किरदार में खूब भिन्नताएं रही, माँ बहन पत्नी बनकर जीवन भर जिम्मेदारियां निभाती रही। संघर्ष को उनके सलाम करते हैं, हिम्मत बनकर हम आज उनके सपने को पूरे करते हैं। प्रेम लुटाकर हम उन पर उन्हें प्यार से अभिनंदन करते हैं। मेरी अगली कविता है अगर सपने बोल पाते तो युवा अपने कौशल में सफल हो पाते। तकनीकी शिक्षा का हाथ थाम कर युवा नया भविष्य बना पाते। वो हारते ही नहीं किसी एक राह पर चलकर थाम लेते अपने सपनों को दौड़कर। मैंने देखा है अपने सपने में महारत हासिल किए इंसान को, हर रोज़ कुछ नया कर पाने के जुनून को, हर और नई राह खोज पाने के आत्मविश्वास को। अगर बोल पाते सपने तो युवा लिखते इतिहास की नई भाषा को, उम्मीदों की नई आशा को। वो पा लेते अपने सपनों के मुकाम को, कर पाते अपने आवश्यकताओं को पूरा, चल लेते उस राह जो उन्हें सफल कर पाए। अगर सपने बोल पाते तो युवाओं के सपने से बनता नया भारत, जो 21वीं सदी में कहलाता युवाओं के सपनों से बना, उनके सपनों से पूरा हुआ भारत। अगर सपने बोल पाते तो युवाओं से बनता नया भारत और उनके सपनों से पूरा हुआ नया सुंदर भारत। मेरी अगली रचना है आकाशवाणी का प्यार, मेरी कहानी। मैंने कहानियाँ लिखी, कविताएँ लिखी, कोरे कागज़ पर सपनों की लकीर खींची। आकाशवाणी ने एक मौका दिया, जैसे सब पूरे सपने को नया रूप दिया। कागज़ के पन्ने पर लिखी रचनाओं को आकाशवाणी ने मंच दिया। उम्मीद ही नहीं थी कि आवाज़ रेडियो पर आ पाएगी लेकिन यहाँ के परिवेश ने विश्वास किया, सफलता में परिवेश ने खूब साथ दिया। क्या कोई कमी नहीं होगी मुझ में? कमी को स्वीकार कर यहाँ पर सुधार किया, मेरी आवाज़ मेरी पहचान बनी। आकाशवाणी ने मुझ में नई उम्मीद भरी, उत्साह भरा यहाँ के परिवार ने। मैं सदैव ऋणी रहूंगी, मेरी आवाज़ को मंच तक पहुंचाने में आकाशवाणी ने सहर्ष साथ दिया। मेरी अगली पोयम है चिड़िया।

0: मैं तेरे आंगन की चिड़िया लगा के पंख उड़ जाऊंगी। मैं तेरे आंगन की चिड़िया लगा के पंख उड़ जाऊंगी। मैं सात समंदर पार की सैर कर बाबा तेरे आंगन में फिर आऊंगी। मैं उड़ना चाहती हूँ इस दुनिया में, हर ओर चहकना चाहती हूँ। हर ओर मंजिल पाकर मैं तेरे आंगन की शोभा बढ़ाऊंगी। मैं पिंजरे की जंजीरों को तोड़ के आसमान छू जाऊंगी। मैं पिंजरे की जंजीरों को तोड़कर आसमान छू जाऊंगी। ऊंचे आकाश में उड़कर सफलता का परचम लहराऊंगी। गिरकर भी हताश नहीं होना है, गिरकर भी हताश नहीं होना है। फिर उठना है, मेहनत के हाथ को थाम कर फिर नया इतिहास रचना है। आपके सिखाए गुर मैंने सारे रट लिए हैं, आपके सिखाए गुर मैंने सारे रट लिए हैं। जीवन में ना डरने के मैंने प्रशिक्षण लिए हैं। कोई डर मुझे अगर सताएगा, बाबा मैं फिर आऊँ आपके पास आऊँगी। बाबा मैं तेरे आंगन की चिड़िया लौट के फिर तेरे आंगन आऊँगी। बाबा मैं तेरे आंगन की चिड़िया लौट कर फिर तेरे आंगन आऊँगी। धन्यवाद।
1: यह था कवियत्री ज्योति सुथार द्वारा प्रस्तुत काव्य पाठ। आशा है उनकी रचना ने आपके मन को अवश्य स्पर्श किया होगा।
2: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पैसा वह मुद्रा है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे रुपया, डॉलर। ठीक ऐसी ही एक डिजिटल करेंसी के बारे में अब बात करेंगे जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो यानी हिडन, छुपी हुई, और करेंसी यानी मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी, जिसे कभी कभी क्रिप्टो भी कहा जाता है, मुद्रा का कोई एक ऐसा रूप है जो डिजिटल या आभासी रूप में मौजूद होता है और लेन देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है।
3: क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो लेन देन के सत्यापन के लिए बैंकों पर निर्भर नहीं करती है। यह एक पीयर टू पीयर सिस्टम है जो किसी को भी कहीं से भी भुगतान भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
2: जी बिल्कुल, यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यह लेन देन को सत्यापित करने के लिए यानी एन्क्रिप्शन का उपयोग करती है।
3: इसका मतलब है कि वॉलेट और सार्वजनिक बही खाते के बीच क्रिप्टोकरेंसी डेटा को संग्रहित करने और प्रसारित करने में कोडिंग शामिल है।
2: हम बात करते हैं सबसे पहली क्रिप्टोकरेंसी की, जो बिटकॉइन थी, जिसकी स्थापना 2009 में हुई और ये आज की सबसे फेमस है। क्रिप्टोकरेंसी में लोगों की दिलचस्पी मुख्य रूप से मुनाफा कमाने के लिए व्यापार करने में होती है।
3: बिटकॉइन, इथेरियम और डॉजी कॉइन जैसी कुछ प्रसिद्ध क्रिप्टोकॉइन है। इसके फायदे यह हैं कि यह तेज, सुरक्षित और पारदर्शी होते हैं, लेकिन इसकी कीमत में तेजी से उतार चढ़ाव भी होता है।
2: और 2015 में विकसित हुआ एथेरम एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसकी अपनी क्रिप्टोकरेंसी है, जिसे एथर ETH या एथेरियम कहा जाता है। बिटकॉइन के बाद ये सबसे यूज्ड CC है।
3: अब हम बात करेंगे रिपल CC की। रिपल एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। रिपल का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी के अलावा विभिन्न प्रकार के लेन देन और उनको ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।

0: तो दोस्तों अब ले चलते हैं आपको इतिहास की दुनिया में। आज हम आपको लेकर चलेंगे आर्मेनिया की पहाड़ियों में बसे दो ऐसे अद्भुत मठों की यात्रा पर जिन्होंने सदियों से ज्ञान, संस्कृति और आस्था की ज्योति को जीवित रखा है।
1: ये हाकपत और सनाहिन के मठ, ऐसे मठ जो केवल पत्थरों से बने इमारतें नहीं बल्कि एक पूरे युग की कहानी अपने भीतर समेटे हुए हैं।
0: कल्पना कीजिए, लगभग 1000 वर्ष पहले का समय, ऊंचे पहाड़, शांत वातावरण और उनके बीच ज्ञान की खोज में लगे विद्वान।
1: यही दृश्य हमें इन मठों की ओर आकर्षित करता है। आज भी इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे समय यहीं कहीं ठहर गया हो।
0: हाकपत और सनाहिन दोनों मठ आर्मेनिया के लौरी क्षेत्र में स्थित है और मध्यकालीन आर्मेनियन वास्तुकला के श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं।
1: इनका निर्माण मुख्य रूप से 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ, जब आर्मेनिया में कला धर्म का स्वर्णित काल चल रहा था।
0: इन दोनों मठों को वर्ष 1996 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
1: क्योंकि ये केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखते, बल्कि मानव सभ्यता की सांस्कृतिक धरोहर का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है।
0: आइए सबसे पहले बात करते हैं सनाहिन मठ की। सनाहिन का नाम जो है, वो अर्थ जो है, यह उससे भी पुराना है।
1: ये नाम अपने आप में रोचक है और इसके पीछे कई स्थानीय कथाएं भी प्रचलित है।
0: सनाहिन मठ को शिक्षा और विद्वता के केंद्र माना जाता था। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे।
1: उस समय जब आधुनिक विश्वविद्यालयों की कल्पना भी नहीं थी, तब ऐसे मठ ज्ञान के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे।
0: यहाँ धर्मशास्त्र, दर्शन, गणित, इतिहास और साहित्य जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाता था।
1: इतना ही नहीं, यहाँ कई महत्वपूर्ण पांडुलिपियां भी तैयार और संरक्षित की गई।
0: सनाहिन में मौजूद पुस्तकालय उस समय के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान केंद्रों में गिना जाता था।
1: और यही कारण है कि इस मठ को मध्यकालीन आर्मेनिया का एक प्रमुख शैक्षिक संस्था माना जाता है।
0: अब रुक करते हैं हाकपत मठ की ओर, जो अपनी भव्य वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।
1: हाकपत का निर्माण लगभग वर्ष 975 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसे आर्मेनिया की महारानी ने संरक्षित विकसित किया गया।
0: मठ का मुख्य जो चर्च है या सेंट निशान, अपनी विशाल संरचना और सुंदर नकाशी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है।
1: जब सूर्य की किरणें इसकी पत्थर की दीवारों पर पड़ती है तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है।
0: हाकपत केवल पूजा का स्थान नहीं था, यहाँ भी शिक्षा, लेखन और सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी
1: और कई विद्वान यहाँ रहकर अध्ययन और शोध कार्य करते थे।
0: दोनों मठों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी वास्तुकला है
1: और मजबूत पत्थरों से निर्मित ये संरचनाएं सदियों के भूकंप, मौसम और समय की परीक्षा में खड़ी रही हैं।
0: इनकी इमारतों में गुंबद, मेहराबों और पत्थरों पर की गई बारीक नकाशी देखने योग्य है।

0: और हर पत्थर मानो अपने समय की कोई कहानी सुनाता हो।
1: आर्मेनिया की एक विशेष कला है खाचकार, यानी पत्थरों पर उकरे गए अंकलुत क्रॉस।
0: हागपात और सनाहिन में भी अनेक सुंदर खाचदार देखने को मिलते हैं, जो आर्मेनिया की संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान है।
1: इन पर बनी आकृतियां केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि उस समय की कलात्मक सोच की भी परिचय देती है।
0: और यही कारण है कि कला और इतिहास के शोधकर्ता इनका गहन अध्ययन करते हैं।
1: तो दोस्तों, हमें इन्हें संरक्षित करना है, तभी उसकी पहचान सदियों तक जीवित रहती है।
0: और इन मठों की कहानी केवल आर्मेनिया की कहानी ही बल्कि मानव सभ्यता की साझा विरासत की कहानी है।
1: एक ऐसी विरासत जो हमें अतीत से जोड़ते हुए भविष्य के लिए प्रेरणा देती है।
0: तो दोस्तों, अगर आपको इतिहास, वास्तुकला और संस्कृति में रुचि है तो हागपात और सनाहिन के मठ निश्चित रूप से आपकी यात्रा सूची में होनी चाहिए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दोस्तों बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो भारत के किसानों और युवाओं के भविष्य से सीधा जुड़ा है, नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास।
3: बिल्कुल, आज कृषि केवल खेती तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि यह नवाचार, तकनीक और व्यवसाय के नए अवसरों का क्षेत्र बन चुकी है।
2: जब हम नवाचार यानी इनोवेशन की बात करते हैं तो इसका अर्थ है नई सोच और नए तरीकों का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करना।
3: और जब यही नवाचार कृषि क्षेत्र में अपनाया जाता है तो उत्पादन बढ़ता है, लागत घटती है और किसानों की आय में सुधार होता है।
2: भारत एक कृषि प्रधान देश है, आज भी देश की बड़ी आबादी कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है।
3: लेकिन बदलते समय के साथ खेती को भी आधुनिक बनाना आवश्यक हो गया है।
2: आज ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, मिट्टी परीक्षण और मोबाइल ऐप जैसी तकनीकों का उपयोग खेती में किया जा रहा है
3: और इन तकनीकों से किसानों का मौसम, बाजार, फसल प्रबंधन की जानकारी समय समय पर भी मिल जाती है।
2: अब हम बात करते हैं कृषि उद्यमिता यानी एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की,
3: और सरल शब्दों में कहें तो कृषि से जुड़े उत्पादों और सेवाओं को व्यवसाय के रूप में विकसित करना ही कृषि उद्यमिता कहलाता है।
2: आज कई युवा पारंपरिक नौकरी के बजाय कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं।
3: कोई जैविक खेती कर रहा है तो कोई प्रसंस्करण और कृषि विपणन के क्षेत्र में एक नए अवसर तलाश कर रहा है।
2: मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन और हाइड्रोपोनिक्स जैसे क्षेत्र भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।
3: इन क्षेत्रों में कम निवेश के साथ अच्छा रोजगार और आय प्राप्त की जा सकती है।
2: कृषि उद्यमिता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि रोजगार मांगने वालों को रोजगार देने वाला बना सकती है।
3: यानी युवा स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं।
2: सरकार भी कृषि नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं।
3: और आज ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण किसान अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक भी पहुंचा सकते हैं और इससे बिलोचियों पर निर्भर करता है होती है कि किसान को कैसे बेहतर मूल्य मिला हो।
2: विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र में तकनीक की भूमिका और अधिक बढ़ेगी।
3: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स और ऑटोमेशन जैसे तकनीक कृषि को एक नई दिशा देंगी।
2: ऐसे में युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वे नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अपना योगदान दें।
3: क्योंकि आज

0: आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब कृषि और युवा दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे।
1: नवाचार ही दोस्तों नई संभावनाओं को द्वार खोलता है।
0: और चलिए अब हम बात करेंगे वियतनाम वॉर की, जो

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जरा इमेजिन कीजिए, इंटरनेट तो है लेकिन कोई वेबसाइट नहीं है, ना ऑनलाइन क्लासेस, ना सोशल मीडिया और ना ही एक क्लिक पर इंफॉर्मेशन।
4: आज की डिजिटल दुनिया की पिक्चर बिल्कुल अलग होती है और इसी दुनिया को बदलने वाले व्यक्ति थे टिम बर्नर्स-ली।
3: इनोवेशन की दुनिया में उनका योगदान बहुत खास माना जाता है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को लोगों के लिए और अधिक उपयोगी बनाया
4: क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किया। आज हम जिस वेब का इस्तेमाल करते हैं उसकी शुरुआत उन्हीं की देन से है।
3: टिम बर्नर्स-ली का जन्म 8 जून 1955 को लंदन में हुआ था। उनका बचपन से ही उनकी कुछ रुचि जो है कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी में थी
4: और 1989 में वो CERN नाम के रिसर्च सेंटर में काम कर रहे थे। वहाँ साइंटिस्ट को इन्फॉर्मेशन शेयर करने में काफ़ी दिक्कत होती थी।
3: इसी समस्या का समाधान ढूंढते हुए टिम के दिमाग में WWW का आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि जानकारी को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जा सकता है
4: और WWW ने दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। यह अपने समय का एक रिवॉल्यूशनरी इनोवेशन था
3: और इसी के साथ हाइपरलिंक का कंसेप्ट भी आया जिसकी मदद से हम एक पेज से दूसरे पेज तक पहुंच सकते हैं
4: और आज हम सिर्फ एक क्लिक में हजारों वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं। यह सुविधा टिम बर्नर्स-ली के विजन के परिणाम है।
3: टिम ने पहला वेब ब्राउजर और पहला वेब सर्वर भी डेवलप किया, यानी उन्होंने सिर्फ आइडिया ही नहीं दिया बल्कि उसे हकीकत में बनाया
4: और 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया और उसके बाद वेब का विकास बहुत तेजी से होने लगा।
3: HTML, HTTP और URL जैसे कॉन्सेप्ट्स को पॉपुलर बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज हर वेबसाइट इन्हीं टेक्नोलॉजीज पर आधारित है
4: और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने अपने इन्वेंशन को फ्री रखा और इसी वजह से वेब पूरी दुनिया तक पहुंच सका।
3: आज ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स और डिजिटल बैंकिंग सब इसी इनोवेशन की देन है। वेब ने हमारे जीवन को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है
4: और टिम बर्नर्स-ली ने हमें सिखाया है कि एक अच्छा आइडिया दुनिया बदल सकता है और इनोवेशन तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसका लाभ सबको मिले।
3: जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं या ऑनलाइन कुछ सर्च करते हैं
4: और तब हम उस इनोवेटर के सपने का हिस्सा बनते हैं जिसके दुनिया को डिजिटली कनेक्ट कर दिया गया।
3: दोस्तों अब चलते हैं फिल्मी दुनिया की ओर। कभी कभी फिल्मी दुनिया में कुछ सितारे ऐसे आते हैं जो अपनी पहली ही फिल्म में दर्शकों के दिल पर अमीट छाप छोड़ देते हैं। ऐसी ही एक अभिनेत्री है डिम्पल कपाड़िया।
4: अपने शानदार अभिनय, आत्मविश्वास और अलग पहचान के कारण डिम्पल कपाड़िया भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।
3: डिम्पल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को मुंबई में हुआ था। कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था
4: और साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म बॉबी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और इस फिल्म ने उनके अभिनय को दर्शकों और दोनों को खूब सहारा दिया।
3: दिलचस्प बात यह रही कि पहली फिल्म की अपार सफलता के बाद उन्होंने फिल्मों से कुछ समय का विराम ले लिया। इसके बाद उन्होंने अभिनेता राजेश खन्ना से विवाह किया
4: और कई वर्षों के बाद जब उन्होंने फिल्मों में वापसी की तो एक बार फिर अपने प्रतिभा से सबको प्रभावित किया और उनकी दूसरी पारी भी उतनी ही सफल रही जितनी पहली थी।
3: डिम्पल कपाड़िया ने केवल ग्लैमरस भूमिका ही नहीं निभाई, उन्होंने गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदारों को भी बड़े प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारा।
4: सागर, रुदाली और क्रांतिवीर जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के विशेष सराहे हुए और विशेष रूप से रुदाली के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।
3: डिम्पल कपाड़िया की पहचान एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में है जिन्होंने हर दौर में खुद को साबित किया। उन्होंने बदलते समय के साथ अपने अभिनय को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया
4: और हाल के वर्षों में भी कई महत्वपूर्ण फिल्मों और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में दिखाई दी हैं और उनका अभिनय आज भी दर्शकों को उतना ही प्रभावित करता है।
3: उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि प्रतिभा और आत्मविश्वास के बल पर हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। सफलता केवल शुरुआत में नहीं बल्कि लगातार सीखते और आगे बढ़ते रहने में है।
4: भारतीय सिनेमा में डिम्पल कपाड़िया का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। वे आने वाली पीढ़ियों की कलाकारों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनी रहेंगी।

0: जब मंच पर लोक गीतों की गूंज हो रही है, ग्रामीण जीवन की खुशबू हो और समाज की सच्चाइयाँ अभिनय के माध्यम से सामने आए, तो एक नाम स्वतः याद आता है, हबीब तनवीर।
1: भारतीय रंगमंच को नई दिशा देने वाले हबीब तनवर ने परंपरा और आधुनिकता के बीच एक अद्भुत सेतु का निर्माण किया।
0: 1 सितंबर 1923 को रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर का मूल नाम हबीब अहमद खान था।
1: और बचपन से ही साहित्य, कविता और

0: याद आता है, हबीब तनवीर।
1: भारतीय रंगमंच को नई दिशा देने वाले हबीब तनवर ने परंपरा और आधुनिकता के बीच एक अद्भुत सेतु का निर्माण किया।
0: 1 सितंबर 1923 को रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर का मूल नाम हबीब अहमद खान था
1: और बचपन से ही साहित्य, कविता और रंगमंच में उनकी गहरी रुचि थी, जिसने आगे चलकर उन्हें भारतीय थिएटर का एक बहुत बड़ा नाम बना दिया।
0: उन्होंने यह महसूस किया कि भारत की लोक कलाओं में अपार शक्ति है और इन्हें मंच पर उचित स्थान मिलना बहुत जरूरी है,
1: और इसी सोच के साथ उन्होंने लोक कलाकारों को अपना नाटकों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।
0: वर्ष 1959 में स्थापित उनका नया थिएटर समूह भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो साबित हुआ,
1: और इस मंच के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और लोक भाषा को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक नई पहचान दिलाई।
0: उनके प्रसिद्ध नाटकों में आगरा बाजार और चरणदास चोर जैसे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
1: और चरणदास चोर को दुनिया भर में सराहा गया और ये भारतीय रंगमंच की कालजीय प्रस्तुति में गिना जाता है।
0: हबीब तनवीर का मानना था कि रंगमंच केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को सोचने और समझने का माध्यम भी है,
1: और इसी कारण उनके नाटकों में सामाजिक सरोकार, व्यंग्य और मानवीय संवेदना प्रमुखता में दिखाई देती है।
0: उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और संगीत नाटकीय अकादमी पुरस्कार सहित उनके जो है काफ़ी सम्मान उन्हें प्राप्त हुए।
1: और 8 जून 2009 को वो इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी कला और विचार आज भी जीवित है।
0: हबीब तनवीर ने भारतीय रंगमंच को केवल समृद्ध ही नहीं किया बल्कि उसे आम जनजीवन से भी जोड़ा है,
1: और यही कारण है कि उनका नाम भारतीय थिएटर में इतिहास में सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा। और हम बात करते हैं आज जिनका बर्थडे है, यानी शिल्पा शेट्टी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी प्रसिद्ध अभिनेत्री, मॉडल और फिटनेस आइकन है। उनका जन्म आज ही के दिन 8 जून 1975 को कर्नाटक में मंगलुरु, भारत में हुआ था, और उनके पिता का नाम सुरेंद्र शेट्टी और माता का नाम सुनंदा शेट्टी था, और उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम शिल्पा शेट्टी है, जो शमिता शेट्टी, जो खुद भी एक अभिनेत्री हैं।
0: शिल्पा शेट्टी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1993 में मिली फिल्म बाजीगर से की, जिसके साथ उनके साथ जो थे शाहरुख खान और काजोल थे। इस फिल्म से उन्हें काफ़ी पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, धड़कन, फिर मिले, लाइफ इन दी मेट्रो।
1: और 2000 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म धड़कन ने उनके करियर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड़ लाया और उन्हें विभिन्न पुरस्कार समारोह में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड में नाम दर्ज करवाया। और उन्होंने 2007 में ब्रिटिश रियलिटी टेलीविजन सेलिब्रिटी बिग ब्रदर जीतने के बाद एक वैश्विक हस्ती बन गई। और शिल्पा शेट्टी अपने फिटनेस और योग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। चलिए आज उनके बर्थडे पर हम सुनते हैं उन्हीं की मूवी का एक गीत।

0: तो चलिए अब बात करते हैं हम कान्या वेस्ट की, जो एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन रैपर, सिंगर और म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। उनका जन्म आज ही के दिन 8 जून 1987 को हुआ।
1: कान्या वेस्ट को उनके अलग अलग और नए स्टाइल के संगीत के लिए जाना जाता है। उन्होंने हिप हॉप म्यूज़िक में कई नए प्रयोग किए। वह सिर्फ गायक नहीं हैं बल्कि फैशन डिज़ाइनर भी हैं।
0: और उनकी करियर की बात करें तो उनका पहला एल्बम द कॉलेज ड्रॉपआउट 2004 में बहुत हिट रहा। इसके बाद उन्होंने कई हिट गाने और एल्बम बनाए और उन्हें कई ग्रैमी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं।
1: कान्या वेस्ट एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने म्यूज़िक और फैशन दोनों में ही अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी ज़िंदगी में सफलता के साथ साथ विवाद भी रहे, लेकिन उनका प्रभाव आज भी बहुत बड़ा है।
0: तो इसके साथ अब हम बात करते हैं कि आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं। इतिहास में आज के दिन यानी 8 जून का दिन भारतीय और विश्व स्तर पे कई महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों में एक बदलाव लिए जाना जाता है। अब बात करेंगे सबसे पहले 1936 में इंडियन स्टेट बॉक्सिंग सर्विस का नाम बदलकर आधिकारिक रूप में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया।
1: 1948 भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया ने अपनी शुरुआत की। इसकी पहली उड़ान बॉम्बे से लंदन के लिए भरी गई।
0: और इससे पहले हम बात कर रहे थे स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम जो बदल करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था। और इसका गठन के साथ साथ ही इसका ध्येय यानी मोटो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अपनाया गया और इसकी जनसेवा की भावना को दर्शाता है। और आज आने वाले वर्षों में ये देश की सबसे बड़ी और प्रभावशाली सार्वजनिक प्रसारण सेवा बन गया।

0: सेंसेक्स, अब दोस्तों बात करते हैं सेंसेक्स यानी शेयर बाजार वगैरह की। सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 244 अंक गिरकर 23,123 पर बंद हुआ। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 95.74 रुपये रही। बाजार में गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक तनाव और बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें हैं। तो दोस्तों ये बात थी शेयर मार्केट थी, और मैं था आपका आज का रेडियो दोस्त हर्षित, और मेरे साथ थे
1: माहिन खान,
0: और आपको हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।

युवा साथी अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। यह है FM रेडियो लेक सिटी। श्रोताओं, शाम के 6 बजने ही वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से थोड़ी ही देर में हम रिले करेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों के लिए कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को

0: 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्ट इंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है एफएम रेडियो लेक सिटी। श्रोताओं, शाम के 6:05 हो चुके हैं। एफएम लोकल विंडो के क्षण में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें मुलाकातें। इसमें आज सुनिए फिटनेस ट्रेनर हर्षल गिरी से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत।
2: श्रोताओं, ये कार्यक्रम है बातें मुलाकातें, और बातें मुलाकातों में आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्षल गिरी। आप फिटनेस ट्रेनर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और साथ ही साथ डाइटिशियन भी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में किस तरह के जो फिटनेस ट्रेनिंग को लेकर हम कितनी चीज़ें कर रहे हैं और क्या क्या नवाचार इस समय हो रहा है। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
3: नमस्ते सर।
2: तो हर्षल जी, कि आपने फिटनेस ट्रेनिंग पढ़ाई के बाद फिटनेस ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपिस्ट और ये डाइटिशियन की तरफ आपने अपने करियर को आगे बढ़ाया, आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह से आपने पढ़ाई के बाद इस प्रोफेशन को ऑप्ट किया और सबसे अच्छा जंप आपको किस तरह से मिला।
3: तो ऐसे तो मेरा एजुकेशन उदयपुर से ही हुआ है, एंड देन फिर मैंने फिजियोथेरेपी के लिए एनरोल किया था, बिकॉज मुझे पहले से ही एक्सरसाइज वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट था कि एक्सरसाइज करते हैं कैसे, क्या होता है, ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है। फिजियोथेरेपी करते करते, क्योंकि मैं काफ़ी जिम्स में ट्रेनर था यहाँ पे उदयपुर में, तो मैंने सर्टिफिकेशन करना चालू किया। इंडिया में मोस्टली ट्रेनर्स कुछ करते थे सर्टिफिकेशन, आधे से ज़्यादा तो करते नहीं थे। जो कुछ करते थे वो नेशनल लेवल पे ही करते थे, K11 करके एक ब्रांड था उसका सर्टिफिकेट। मैंने सोचा कि मैं इंटरनेशनल कर लेता हूँ, तो मैंने अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज से एक सर्टिफिकेशन किया, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर और हेल्थ कोच का। और फिर मैं देखता था कि डाइट की तरफ भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो मैंने डाइटिशियन के अंदर भी एक सर्टिफिकेशन रिकॉग्निशन लिया नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन से। तो सारा एजुकेशन लेके बस मेरी फिजियोथेरेपी पे मैं परस्यू कर रहा था, एंड सडनली कार्तिक आर्यन जी लव आजकल 2 के लिए उदयपुर आए थे। सारा अली खान, कार्तिक आर्यन का शूटिंग चल रहा था, एंड उन्हें कोई ट्रेनर चाहिए था जो हाईली एजुकेटेड हो, जिसको एक्सरसाइज साइंस के बारे में बहुत पता हो। मतलब उनका इंटरेस्ट यही था कि मुझे कोई बॉडी बिल्डर ट्रेनर नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड चाहिए फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें उन्हें दो रोल प्ले करने थे, एक तो यंग थोड़ा मैच्योर आदमी था और एक स्टूडेंट था, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म करना था। तो उनके काफ़ी सेशंस मैंने उदयपुर में लिए थे, उन्हें ट्रेन किया था, और उन्हें पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हो। देन उन्होंने ऑफर रखा कि आप मेरे साथ मुंबई चलो, अपना 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आप मुंबई जाके मुझे ट्रेन करो। एंड मेरा भी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तब ख़त्म ही हो गया था, तो फिर मैंने कहा कि वाई नॉट, लेट्स गो टू मुंबई। मैं उनके साथ मुंबई गया, वहाँ पे हम जुहू रहते थे, दिन में 1 घंटा मुझे उन्हें ट्रेन करना पड़ता था, एंड वहीं पे फिर एक क्लिनिक था QI स्पाइन, मैंने वो ज्वाइन किया था एज ए स्पाइन स्पेशलिस्ट। हम पूरा स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ वगैरह होती है वो वहाँ पे मतलब ट्रीट करते थे।
2: तो हर्षल, अगर कहने का मतलब जो आपका प्रोफेशन है उसमें जो पहला ही अप्रोच जो आपको हुआ है एक तरीके से प्रोफेशनली, जिसको कहें कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आपको अप्रोच किया और आपकी उस ट्रेनिंग और जो शूटिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी बॉलीवुड स्टार्स यहाँ आते हैं, तो उस चीज़ को आप सबसे पहले अपना ब्रेक थ्रू मानते हैं या उससे पहले भी आप इस तरह का कुछ कर चुके थे?
3: नहीं नहीं, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तो हम यही कहेंगे कि हाँ, सेलिब्रिटी ने अप्रोच किया एंड मुझे वो चांस मिला। उससे पहले मैं उदयपुर में काफ़ी लोगों को ट्रेन करता था पर्सनली भी, पर्सनल लेवल पे पर्सनल क्लाइंट्स थे मेरे डाइट वगैरह से रिलेटेड, पर्सनल ट्रेनिंग के हिसाब से एंड फिजियो से रिलेटेड भी। बट जो बहुत कहते हैं ना कि एक चांस मिल गया,
2: नेम और फेम
3: बिल्कुल, तो वो वहाँ से स्टार्ट हो गया कि कार्तिक आर्यन जी ने अप्रोच किया एंड उनके साथ मुझे मौका मिला मुंबई जाने का। अदरवाइज तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं मुंबई गया और क्यों, कैसे गया।
2: एक बार जब आप मुंबई चले गए
3: बिल्कुल,
2: और बॉलीवुड का टैग आपके साथ एक तरह से जुड़ गया,
3: हाँ जी,
2: तो उसके बाद और क्या क्या चीज़ें एड ऑन होती गई और कौन कौन सी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या फिल्मी स्टार जिनको हम जानते हैं, टीवी पे देखते हैं, उनको आपको ट्रेन करने का मौका मिला?
3: जब मैं सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करता था बॉलीवुड में मुंबई जाके, तो एक चीज़ तो जो मुझे पता चली कि हमारा जो पेमेंट आता है, ट्रेनर हो गया, डाइटिशियन हो गया, वो प्रोडक्शन से आता है, सेलेब्स पे नहीं करते, उनका जो प्रोड्यूसर वगैरह है वो हमें पेमेंट मिलता था। एंड क्योंकि मैं QI स्पाइन में भी काम करता था, तो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के बाद कार्तिक आर्यन जी को मैंने ट्रेन करना बंद कर दिया, बिकॉज हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया था। एंड उसके बाद फिर मुंबई में उतना सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक्सपेंसिव बहुत है मुंबई, तो मैं मुंबई की QI स्पाइन से पुणे के QI स्पाइन शिफ्ट हो गया था। एंड साथ में मैं 2 जॉब करने लगा था, एक हेल्दी फाई मी करके बहुत बड़ी कंपनी है, ऑलमोस्ट फिटनेस के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हेल्दी फाई मी है, ऑलमोस्ट 800-900 करोड़ की, तो वो

0: मैंने ज्वाइन की थी एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। उन्हें कोई चाहिए था जो एक्सरसाइज साइंस के अंदर बहुत एक्सपर्ट हो, जो ट्रेनर्स को वो ऑनबोर्ड करते थे मैं उन्हें ट्रेन करता था। एंड उसी टाइम मंदिरा बेदी और कल की कोचिंग ने हेल्दी फाइव में ज्वाइन किया था, तो मुझे मौका मिला। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे एक्सपर्ट कोच ये, तो इनके साथ आप काम करिए। तो मैं मंदिरा बेदी जी को भी ट्रेन करता था, और कल की कोचिंग है वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो उन्हें प्रेगनेंसी ट्रेनिंग चाहिए थी, प्री प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी, तो मैं उन्हें भी ट्रेन करता था थ्रू हेल्दी फाई मी। तो ये सेलेब्स हो गए। इसके बाद क्योंकि मैं पुणे में था और मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैंने एक एक्मे फिजियोथेरेपी एंड रिहैब क्लिनिक ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैंने ज्वाइन तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हुआ था, बट काफ़ी प्रमोशन लेके एचओडी बन गया था। वो कल्याणी नगर में था, और कोरेगांव पार्क में अपने इंडिया के साइरस एस पूनावाला जी, जो ऑलमोस्ट लाइक 7th रिचेस्ट पर्सन और जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई है, वो रहते थे। तो उनका अप्रोच आया कि यार मेरे एंकल के अंदर पेन है, तो आप आगे फिजियोथेरेपी करो। तो मैं उन्हें भी वहीं से एज अ फिजियोथेरेपी मैं उन्हें ट्रीट करता था, साइरस एस पूनावाला सर को। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ मेरा। एंड पोस्ट दैट जब सारी चीज़ें हो गई, मैंने मंदिरा बेदी जी को भी ट्रेन किया, कल की कोचिंग, साइरस पूनावाला, अगेन मुझे कॉल आया था मुंबई से अर्जुन कपूर सर को ट्रेन करने का, तो मैं वहाँ पे चला गया था।
1: जो हम फिटनेस ट्रेनिंग या फिजियोथेरेपी या फिर जो डाइटिशियंस की बात करते हैं, जहाँ आम तौर पे जो लोग अगर हम देखें अपने बी टाउन शहर में,
0: बिल्कुल,
1: वो सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और चले आते हैं। हाँ। लेकिन जो आप अनुभव बता रहे हैं सेलिब्रिटीज के साथ, वो स्पेसिफिक किसी चीज को लेकर ट्रेनिंग की डिमांड करते हैं। जैसे आपने बताया कि कल की कोचलिन जिनको आपने किया, तो उन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको कुछ फिटनेस या डाइटिशियन गाइडेंस या जो भी चाहिए थी वो। साइरस पूनावाला को आपने किया तो एंकल प्रॉब्लम की वजह से। आज के समय में जो ये फिटनेस का और जो ट्रेंड है, तो आपको क्या लगता है कि ये एक स्पेसिफिक होना चाहिए हर बॉडी के हिसाब से, या फिर हमें एक नॉर्मल रूटीन में सब एक साथ करते वैसे कर लेनी चाहिए?
0: नहीं, मैं तो यही मानता हूं कि बहुत ज्यादा पर्सनलाइज होना चाहिए, बिकॉज सबकी बॉडी बहुत डिफरेंट है। अगर आज आप फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल ले लो, किसी पे तो कुछ अफेक्ट करता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पैरासिटामोल से भी एलर्जी होती है। तो उसी तरीके से एक्सरसाइज है, काफी लोग बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं जो उनके लिए बहुत फायदा करती है, पर सेम एक्सरसाइज किसी और के लिए नुकसान भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल डेडलिफ्ट ले लें, डेडलिफ्ट एक एक्सटेंशन बायस, मतलब पीछे की तरफ मुड़ने वाला मूवमेंट है, काफ़ी लोगों के अंदर बहुत इफेक्टिव है, बट बहुत लोगों को डिस्क बल्ज वगैरह हो जाता है, वो भी डेडलिफ्ट की वजह से। तो ये सेम चीज़ें हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज होनी चाहिए। कोई बिगिनर लेवल पे है, कोई इंटरमीडिएट लेवल पे, कोई एडवांस लेवल पे, तो उनके लिए हर किसी के लिए वर्कआउट चेंज होता है, और कंडीशन के हिसाब से। प्रेगनेंसी में अलग वर्कआउट, फीमेल्स के लिए अलग वर्कआउट, आदमियों के लिए अलग वर्कआउट, तो पर्सनलाइजेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, अदरवाइज बहुत दिक्कत भी आ सकती है फ्यूचर में।
1: हर्षल, हम फिटनेस ट्रेनिंग, डाइटिशियन और इन सब चीजों पे और भी बातें जारी रखेंगे। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें मुलाकातें, और बातें मुलाकातें में आज हमारे साथ हैं हर्षल गिरी। और हर्षल, आपने ब्रेक में जाने से पहले जो आपने अपने अनुभव साझा किए कि किस तरह से आपने फिटनेस ट्रेनिंग शुरुआत की, लेकिन आप जब हमने थोड़ा सा फिटनेस ट्रेनिंग में स्पेसिफिक हुए, उससे पहले आपने बताया था कि आप पुणे से वापस मुंबई आए अर्जुन कपूर को ट्रेन करने के लिए। तो उस जर्नी के बाद आपका और क्या नेक्स्ट मूव क्या रहा, और कौन सा ऐसा मोमेंट था जो आपके करियर का एक स्पेसिफिक क्षण बन के आया?
1: बिल्कुल, अर्जुन कपूर के साथ मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं था, मतलब हम 1 मंथ 2 मंथ्स, उसके बाद उनको इंजरी हो गई थी अर्जुन कपूर जी को, तो काफ़ी हमने ट्रेनिंग की, बट 1 मंथ 2 मंथ के बाद हमने छोड़ दिया था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया था। फिर मुंबई में एक एंटी ग्रेविटी क्लब करके एक जिम है, जिम एंड क्लब है वो, जो सारे सेलेब्स को ट्रेन करते हैं, अनन्या पांडे, जानवी कपूर, शाहरुख, सुहाना खान, औरी, इन सबको एंटी ग्रेविटी में ही ट्रेन किया जाता है। तो वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि एक बहुत VVIP क्लाइंट है हमारा, उसे आपको ट्रेन करना है। मेरी बात हुई, मीटिंग हुई, हमारा सब फाइनलाइज हो गया, थोड़ी बहुत मैंने उनके साथ ट्रेनिंग की कि वो किस टाइप से ट्रेन करते हैं एवरीथिंग। फिर उन्होंने रिवील किया कि अब आपको जामनगर जाना है, बिकॉज आप अनंत अंबानी जी को ट्रेन करने वाले।
0: अप्रोच करने से पहले आपको नहीं बताया गया कि आप किन्हें ट्रीट करने जा रहे?
1: बिल्कुल भी नहीं, मतलब अप्रोच करने से पहले भी नहीं, और इवन जब 1 मंथ की मेरी ट्रेनिंग चल रही थी एंटी ग्रेविटी क्लब के साथ, तब भी मुझे बिल्कुल रिवील नहीं किया गया। बस ये बोलते थे कि बहुत बड़े आदमी है, बहुत VVIP है, क्योंकि मैं देखता था जिम में मैं ट्रेन कर रहा हूँ, खुद एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरे साइड में जानवी ट्रेन कर रही है, उधर अनन्या ट्रेन कर रही है, तो मैंने कहा और कितना VVIP कोई होगा जिनको ये इतना मतलब तवज्जो दे रहे हैं या इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हाँ, हाईलाइट कर रहे हैं, तो मैं सोचता था। बट एट द एंड जब ट्रेनिंग पूरी हुई और मेरा जस्ट टिकट आ गया कि अब मुझे जामनगर जाना है फ्लाइट का, तब उन्होंने बताया कि आप अब अनंत अंबानी जी को ट्रेन करेंगे, हम आपकी मीटिंग करवा देते हैं एवरीथिंग, और फिर उनके साथ मेरा कंटिन्यू हुआ वर्कआउट।
0: तो जो आपका ये अनुभव था, क्योंकि एक VVIP को आप ट्रीट कर रहे हैं और एक ऑलमोस्ट एक सेलिब्रिटी से भी ऊपर हैं, क्योंकि वो बिजनेस टाइकून हैं सब कुछ, लेकिन जब इन सब चीज़ों में जब हम देखते हैं कि जब आपने उनको स्पेसिफिक कोई ट्रेनिंग दी, या फिर हम यूँ बात कहें कि कोई भी सेलिब्रिटीज जब कोई फिटनेस ट्रेनिंग लेते हैं, तो एक आम शहर और आम जगह में जो हमें बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, फिटनेस ट्रेनिंग के लिए, या फिजियोथेरेपी या डाइटिशियन प्लान, ये सब चीज़ें जो हमें सजेस्ट की जाती है, और आप एक्सेप्शनली एक्सरसाइज में आपने फील्ड में PhD कर रखी है, और इन एजुकेशन को या साइंटिफिक चीज़ों को कितनी तवज्जो वहाँ दी जाती है, और जो यहाँ आपको मिसिंग लगती है?
1: जब हम नॉर्मल टाउन्स या सिटीज़ की बात करते हैं, नॉर्मल लोगों की, वो ये देखते हैं कि किसी बंदे की बॉडी है, उस अच्छा बिल्ड कर रखा है, तो वो ट्रेनिंग करवा देगा, पर वो ये चीज़ भूल जाते हैं, वो बॉडी बिल्डर है, उसे खुद की बॉडी बनाना आता है, न कि किसी और की। उसे खुद के बॉडी में हो सकता है सब कुछ पता हो, बट वो किसी और के बॉडी के बारे में नॉलेज नहीं रखेगा, बिकॉज उसने वो साइंस नहीं पढ़ रखी। वही वहाँ वो एक्सेप्शंस है, बिकॉज वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि किसके पास कितने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, कौन कितना एजुकेटेड है। फॉर मी, अनंत ने मुझे चूज़ इसलिए किया बिकॉज मेरी PhD चल रही थी इन एक्सरसाइज साइंस। पूरे इंडिया में मुश्किल से 10 लोग होंगे जिन्होंने एक्सरसाइज साइंस में PhD की होगी। लोगों को पता भी नहीं है कि एक्सरसाइज जैसी सब्जेक्ट में कोई PhD भी करता है, तो अनंत को वो नॉलेज अच्छी लगी। एंड बिकॉज ही इज़ अ बिट ओवरवेट, 160 kg के थे जब हमने स्टार्ट किया,

0: तो वो नॉर्मल जिम के अंदर वर्कआउट कर नहीं सकते थे। तो जब उन्हें मुझे अप्रोच किया तो हमने स्टार्ट किया हाइड्रो ट्रेनिंग, उन्हें स्विमिंग पूल के अंदर हम ट्रेन करते थे। उनका ट्रेडमिल से लेकर हर एक चीज़ वाटर बेस होता था कि पानी के अंदर ही ट्रेडमिल है, उस पर वो वॉक कर रहे हैं, पानी के अंदर डंबल है, रेजिस्टेंस बैंड है। तो मैंने पूरी ट्रेनिंग शिफ्ट कर दी सो दैट उनके नीज़ पे इम्पैक्ट ना आए। और दिस इज़ फॉर एवरी वन, सबके लिए। मैं बहुत पर्सनलाइज जाता था, बहुत साइंटिफिक जाता था। हमारे वर्कआउट के अंदर एक टर्म होता है जंक वॉल्यूम, कि आपको एक्स्ट्रा बिन फालतू की एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो मैं इसीलिए सेलेब्स का काफ़ी टाइम बचाता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा में कुछ ऐसा काम नहीं करना जो आपके बॉडी के लिए इफेक्टिव ना हो। तो ये एक चेंज काफ़ी है।
1: हर्षल, एक बात जो सबसे
0: हाँ जी
1: इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का काफ़ी इम्पैक्ट है
0: बिल्कुल।
1: सोसाइटी में, और हर आदमी बेहद सुंदर भी दिखना चाहता है, फिट भी दिखना चाहता है, और हर आदमी की चाहत है, वो अच्छी बात है। लेकिन हम ये भी देखते हैं साथ ही साथ कि जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो जो आपने बात कही कि बी टाउन में या कहीं पर दूसरी जगह बॉडी को, आपको बॉडी बिल्डिंग पर फोकस किया जाता है, जिसमें आपको एब्स दिखे, आपके बॉडी एक प्रॉपर शेप में दिखे, उसी तरह महिलाएं जो हैं वो भी अपने फिगर को बिल्कुल एक शेप में लाना चाहती है, और उसके
0: डेफिनेटली।
1: लिए हम वो काफ़ी प्रयास करती है। अब वो जो प्रयास करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने जिम ज्वाइन कर रखा है, दूसरी तरफ क्योंकि ड्यू टू एक्सरसाइज काफ़ी इंजरीज भी होती हैं, तो उनके लिए उनके पास एक फिजियो जो होता है वो अलग होता है,
0: हाँ
1: या फिर कई बार हम उनको अवॉइड भी करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ डाइट प्लान, जिस पर आजकल काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन कितना ज़रूरी है किसी भी इंसान को फिट रखने के लिए, आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं।
0: हम साइंटिफिकली ये कह सकते हैं कि आपके किसी भी फिटनेस जर्नी में, हेल्थ के अंदर 70% आपकी डाइट ही है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे जो खाओगे वैसा बन जाओगे, एंड विच इज़ ट्रू 70%। क्योंकि मैं भले ही आपको कितनी एक्सरसाइज करा लूँ, डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो इंजरी होगी। अगर मैंने आपको सिर्फ डाइट पे रखा और एक्सरसाइज नहीं की, तब भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पर सिर्फ डाइट के साथ आप वेट लॉस कर सकते हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इंजरीज आएगी। एक फिजियो को पता है कि आपको क्या नहीं करना है, और उसके साथ जब जिम ट्रेनिंग मिक्स होती है तो दोनों का कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, तो आपको इंजरी हो ही नहीं सकती। बिकॉज हमेशा आप उस दायरे में चलते कि इसके बाहर जाएंगे तो इंजरी हो जाएगी। तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है, लाइक जो कॉम्बिनेशन, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने फिजियो भी कर रखी है और एज अ फिटनेस ट्रेनर भी हूँ मैं, मेरी फिजियो भी स्पोर्ट्स में है, तो उस वजह से मुझे एक्सरसाइज का एक्स्ट्रा नॉलेज है कि हाँ मैं यही करवाऊँगा वो नहीं करवाऊँगा, ये करवाऊँगा वो नहीं करवाऊँगा। एंड डाइट इज़ अ बिग फंक्शन इन दैट, मैं वही डाइट प्रोवाइड करता हूँ। और स्पेसिफिकली मैं मेरी बात करूँ, मैं जेनेटिक न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। जैसे आजकल ना काफ़ी डाइटिशियन ऑलिव ऑयल रिकमेंड कर देंगे, अवाकाडो रिकमेंड कर देंगे, जो इंडियन आदमी को सूट ही नहीं करता। इंडियन आदमी जो यहाँ पे पढ़ा भला है वो दूध दही छाछ पीता है, उसको अगर आप वेट लॉस के लिए अवाकाडो या ऑलिव ऑयल पे डाल दोगे तो वो उसके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देगा। तो ये ना बहुत ज़्यादा बज वर्ड यूज़ करते हैं जो हम वेस्टर्न कल्चर में, यूट्यूब इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लोग 100 तरीके की चीज़ें देखते हैं जो उनके बॉडी को ज़्यादा हार्म कर रही है, बल्कि उनको सपोर्ट नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है। तो मैं इन चीज़ों पे बहुत फोकस रखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट भी करूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं देखनी।
1: हर्षल, एक बात मैं इसी बात पे आना चाह रहा
0: हाँ
1: था कि आजकल क्या सोशल मीडिया पे जो चीज़ फैंसी दिखती है,
0: हाँ
1: या फिर जो प्रीमियम या थोड़ा महंगा होता है, उसको बड़ा फोकस किया जाता
0: फोकस
1: है
0: किया
1: कि
0: जाता
1: ये आप करो। जो आपने बोला कि जो इंडियन जेनेटिक्स है
0: है।
1: उसमें हम दूध दही छाछ ये खा के बड़े हुए हैं, हरी सब्जियां और ये सब, लेकिन एक जो सबसे बड़ा महिलाओं में आजकल, या महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी हैं, एक बेली फैट बढ़ रहा है, या
0: हाँ
1: बॉडी को
0: बिल्कुल।
1: शेप में लाने के चक्कर में कई डाइटिशियंस उन्हें अपना एक डाइट प्लान या डाइट चार्ट देते हैं। तो जब हम सोशल मीडिया पे इसको देखते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए, मतलब गेहूं की रोटी तो आपके लिए बिल्कुल एक तरह से शरीर
0: पॉइजन
1: खराब
0: है।
1: ही कर देगी,
0: हाँ
1: बेकार ही है,
0: हाँ जी हाँ
1: ये
0: जी
1: घोषित कर दिया कई जगह।
0: बिल्कुल
1: कई जगह हमें कहा जा रहा है कि आप मोटा अनाज या फिर जो फाइबर रिच
0: मिलेट्स।
1: है, मिलेट्स हैं, उनको आप लीजिए। कई जगह आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप वीगन बन जाओ, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को बिल्कुल छोड़
0: छोड़
1: दो।
0: दो। हाँ जी
1: लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आप बॉडी जो है, इम्यूनिटी जो बनेगी या आपकी बॉडी स्ट्रेंथ, वो कार्ब्स नहीं बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा।
0: प्रोटीन बनेगा।
1: अगर वीगन हो गए तो प्रोटीन कहाँ से आएगा अगर वो वेजिटेरियन है? तो ये सारा जो इतना सारा कन्फ्यूजन
0: हाँ
1: क्रिएट
0: जी
1: हुआ है सोशल मीडिया पे, तो जब आप पर्सनली,
0: हाँ
1: क्योंकि आपके पास क्लाइंट आते हैं, तो इसको किस तरह से डील करते हैं, और किस तरह से आप स्पेसिफिकली उनको गाइड करते हैं जिससे इन सारे भ्रम से बचा जा
0: बचा
1: सके?
0: जैसे। सो इसमें काम करता है पर्सनलाइजेशन, क्योंकि वही असेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस। मैं जब क्लाइंट से बात करता हूँ मैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछता हूँ, आपकी नींद कैसी है, आपकी

0: आदतें क्या क्या हैं, अगर आपके सैटरडे प्लान्स क्या रहते, वीकेंड प्लान्स करते क्या रहते हैं, ड्रिंक करते नहीं करते, आपके मॉम डैड कहाँ से बिलोंग करते थे, आपकी 100 जनरेशन कहाँ पे रहती थी। हो सकता है वो उदयपुर राजस्थान रह रहा है पर उसकी जनरेशन केरला से।
1: तो वो ये भी कहते होंगे आप काफी पर्सनल हो रहे हो।
0: हाँ मतलब कई बार होते हैं आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, बाकी डाइटिशियन तो हमें डाइट दे देते हैं, आप इतने सवाल पूछते हैं हमसे। तो वही वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है ना, कि मैं उनके बॉडी के अंदर पूरा घुस जाता हूँ कि मुझे आपके बॉडी के बारे में सब कुछ पता है, अब जाके मैं आपके लिए डाइट बनाऊंगा। तो इसमें ना जो जार्गन्स फैले हुए हैं कि आपको मिलेट छोड़ना है, आपको गेहूँ, इसमें पर्सनलाइजेशन हो सकता है। किसी आदमी को सच में गेहूँ छोड़ना पड़े अगर उसके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो वो ग्लूटेन,
1: ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा
0: हाँ
1: है
0: तो वो
1: उसमें।
0: ऑब्वियसली ग्लूटेन इतना ज़्यादा नहीं खा सकता, वो मिलेट पे चला जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको बोल दिया आप गेहूँ की रोटी छोड़ दो और मिलेट की खा लो तो वो 3 से 4 रोटियां खा रहे हैं। वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पोर्शन कंट्रोल ज़रूरी होता है। कई मेरे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर हमें डाइटिशियन ने बोला गेहूँ नहीं खाना तो हम मिलेट की भी उतनी रोटी खा रहे हैं पर वेट कम नहीं हो रहा। वेट कैसे कम होगा, कार्बोहाइड्रेट तो आप उतना ही ले रहे हैं, कैलोरीज इनटेक उतना ही कर रहे हैं। अगेन जो कार्बोहाइड्रेट का है वो अपने बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनर्जी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, उसको छोड़ दोगे तो दिक्कत रहेगी। इसलिए काफ़ी लोग फास्टिंग से वेट लॉस तो कर लेते हैं पर उनके फिर बाल झड़ना चालू हो जाते हैं, उनके स्किन पर रिंकल जल्दी आ जाते हैं, ओवरऑल हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है फास्टिंग से। तो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। आजकल ना डाइटिशियंस भी और लोग भी मैक्रोस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, कि फैट छोड़ दो कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, उसमें वो विटामिन्स और मिनरल्स को तो पूरी तरीके से भूल ही जाते हैं आदमी लोग या फिर और जो भी है, वो सब रोटी छोड़ रहे हैं, गेहूँ छोड़ रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, एक एक बार का मील स्किप कर रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि आप उतनी ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स कम खा रहे हो। फिर कहते हैं कि सर हमारा बाल झड़ने लग गए, हमारे स्किन में इश्यूज आ गए, वो उसी वजह से होता है। आधे से ज़्यादा डाइटिशियन भी फोर्स करते लोगों को फास्टिंग करो, वेट जल्दी कम होगा, वेट कम होगा उन्हें रिजल्ट मिलेगा, उन्हें पैसों से मतलब है, वो नहीं चाहते कि अपने क्लाइंट का हेल्थ कितना है। तो हमें विटामिन मिनरल्स पे भी फोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्टिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, ओवरऑल एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। प्रोटीन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, पर अभी एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है, पहले लोग क्या करते प्रोटीन ही खाओ, आजकल के बच्चे जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हम प्रोटीन खाना चाहते हैं प्रोटीन खाना चाहते हैं। रिसर्च के हिसाब से प्रोटीन भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है एक्सेस खाने पे, जैसा कार्बोहाइड्रेट है कि एक्स्ट्रा खाया तो फैट में कन्वर्ट होगा, वैसे प्रोटीन भी फैट में कन्वर्ट होगा। तो प्रोटीन भी आपको एक्स्ट्रा नहीं खाना है, ये नहीं कि आप सिर्फ एग्ज ही खा रहे हैं या फिर चिकन ही खा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर ही पिए जा रहे हैं, वो भी फैट में कन्वर्ट हो सकता है। तो 1.6 मतलब आपके बॉडी वेट से इंटू 1.6 दिस इज़ अ लिमिट, आपको इसके अंदर ही खाना है।
1: इन ग्राम्स,
0: इन ग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट है फॉर एग्जाम्पल 70, उसको इंटू 1.6 कर दीजिए, जितना आएगा उतना ग्राम आपको प्रोटीन खाना है, इवन उसके अंदर अंदर 1.2 से इंटू कर लीजिए, या फिर आपका बॉडी वेट इतना ही प्रोटीन आपको खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना, अदरवाइज वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के साथ भी सेम है, कार्बोहाइड्रेट अपने एंशंट लोग खाते थे, अपने मॉम डैड लोग बोलते ना, हमारे ग्रैंडफादर वगैरह तो बाटिया खा जाते थे, फैट नहीं चढ़ता था, बट वो मेहनत भी उतनी करते थे, देवर फार्मर्स एंड वॉरियर्स थे, लड़ाई वगैरह में जंग में जाते थे। अब मेहनत कम हो गई है, रोटी और बाटी अभी भी उतनी चल रही है कि हम इतनी कार्बोहाइड्रेट इंटेक करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन कंट्रोल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैट के साथ एक बहुत बड़ा टैबू है इंडियन कल्चर में कि हम फैट खाएंगे तो मोटा हो जाएंगे, लोग इसलिए घी छोड़ देते हैं, जबकि लेटेस्ट रिसर्च में पाया गया घी इवन आपके फैट को कम करता है। घी के अंदर CL है, घी के अंदर ओमेगा 6 है, ओमेगा 3 है, तो इट्स अ हेल्दी फैट, वो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कहीं से A2 गाय का घी मिलता है बिलोना मेथड से बना हुआ, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, आपको घी खाना चाहिए। ऑयल भी अगर आप कच्ची धानी का ले रहे हैं यूज़ कर सकते हैं इन अ लिमिट, बट उसको रीयूज़ करना इज़ बिगेस्ट सीन, मतलब मैं बोलता हूँ कि वो तो पॉइजन बन जाता है अगर आप ऑयल को वापस यूज़ करेंगे तो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बस ये फोकस करना है कि आपको कैलोरीज कम खानी है आपके बॉडी के हिसाब से। कैलोरीज में आपको ध्यान रखना है कि सारी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से ना आए, जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, मैंने उनको बोल दिया, मतलब फ्रेंड था, कि आपको सर 1200 कैलोरीज खाने हैं, उसने दिन के 5 गुलाब जामुन खा लिए कि 1200 कैलोरीज ही तो है, फिर भी वेट बढ़ गया, क्योंकि उसको ये नहीं समझ आया कि 1200 कैलोरीज सारी कार्बोहाइड्रेट नहीं खानी थी, उसमें कुछ प्रोटीन भी होना चाहिए, कुछ फैट और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस रहता है अगर मैं डाइट बनाता हूँ, या लोगों का भी जनरली रहना चाहिए।
1: हर्षल, फिटनेस और डाइट पे और भी बातें जारी रखेंगे, लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।
0: डेफिनेटली।

श्रोताओं, कार्यक्रम है बातें मुलाकातें, और बातें मुलाकातें में आज हमारे साथ है फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट हर्षल गिरी। और ब्रेक में जाने से पहले हमने फिटनेस और डाइट पर काफ़ी बात की। हर्षल, अगर थोड़ा सा अपन और पीछे जाएं, क्योंकि फिटनेस के साथ साथ जब हम आपने अपने

0: करियर की बात की थी, तो आपने इतनी सेलिब्रिटीज को ट्रीट किया है, इतना ट्रेन किया है, उन्हें गाइड किया है, बड़े बिजनेस टाइकून्स को आपने उनका गोल बेस्ड ट्रेनिंग आपने दी है, तो इन सारे एक्सपीरियंसेस के बाद तो आपको मन में ऐसा क्या आया कि मुझे अपने शहर जाके ऐसा करना चाहिए, या आप अपना क्या स्टार्टअप शुरुआत करना चाह रहे थे, या ऐसा क्या फील आया कि आप अपनी इस जर्नी को मुंबई से डिसकंटिन्यू करके उदयपुर आए?
1: तो उदयपुर आने के दो तीन फैक्टर्स थे। आज तक मैंने काफ़ी ट्रेन सेलिब्स को ट्रेन किया एंड ऑल, बट वहाँ पे एक तो ये कि आप फैमिली से बहुत डिसकनेक्टेड रहते हो, बिकॉज इट्स अ बॉलीवुड ग्लैमर इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, कि आपके पास टाइम ही नहीं है। आज सेलिब्रिटी की शूटिंग जयपुर है, कल डायरेक्ट हो सकता है उसके साथ मुझे सिंगापुर जाना पड़े। इवन जो बिजनेस टाइकून्स है वो हमेशा ट्रैवल करते हैं, और एज ए उनका पर्सनल ट्रेनर और डाइटिशियन मुझे 24/7 उनके साथ ट्रैवल करना होता है। अनंत के साथ भी मैं 3 दिन मुंबई रहता था, 3 दिन जामनगर, एंड ये ट्रैवलिंग वजह से बहुत फैमिली से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गया था, और एज अ फैमिली का एक बड़ा बेटा मुझे फैमिली को भी सपोर्ट करना ही है, तो मॉम डैड मेरे उदयपुर रहते, तो मैंने सोचा क्यों ना उदयपुर जाया जाए, और क्योंकि उदयपुर में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पर भी ऐसी बात नहीं है कि एलाइट क्लाइंट्स नहीं है, यहाँ पर भी काफ़ी एलाइट क्लाइंट्स है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उदयपुर में जो कमी है, इट्स मोर अबाउट साइंस, साइंटिफिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है, नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है। जो कल्चर अभी मुंबई में आया है वो हो सकता है 3 साल के बाद उदयपुर आएगा, बट वो जो 3 साल का गैप है वो मुझे फील करना था। लोगों को यहाँ पे मुझे प्रीमियम सर्विस देनी थी, वेदर इट्स अ फिजियोथेरेपी, डाइट और एक्सरसाइज, मुझे यहाँ पे पर्सनलाइजेशन लाना था कि मैं पर्सनलाइज ट्रेनिंग दे सकूँ, पर्सनलाइज डाइट दे सकूँ। इवन इन फिजियोथेरेपी काफ़ी लोग जो है उदयपुर के अंदर दे आर मोर फोकस ऑन मशीन्स, कि हम मशीन लगाएंगे पेन कम हो जाएगा, मशीन लगाएंगे पेन कम हो जाएगा। लोगों की भी यही है कि जिसके पास अच्छी मशीन होगी वहाँ पे जाते हैं, बट वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि मशीन से सिर्फ दर्द कम हो रहा है,
0: इंस्टेंट रिलीफ है,
1: इंस्टेंट रिलीफ, पेन किलर है। आप पेन किलर खा रहे हैं, बस मशीन किडनी पे इफेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। मेरा जो पर्सनल गोल होता है इन फिजियोथेरेपी वो एक्सरसाइज पे होता है, कि मैं हो सकता है 40 मिनट एक्सरसाइज कराऊंगा, सिर्फ 20 मिनट मशीन लगाऊंगा। मेरा हमेशा से मेजर फोकस एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन, डाइट। मैं अभी भी यही कहता हूँ कि फिजियोथेरेपी के भी पेशेंट है, उनमें 60% आपको ही आपकी डाइट ही करेगी, बाकी की 40% मशीन और फिजियोथेरेपी का काम रहेगा, एक्सरसाइज का काम रहेगा। तो अगर कोई मेरे पास भी क्लाइंट आता है तो मैं उन्हें डाइट प्रोवाइड करता हूँ, उन्हें फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करता हूँ अगर नीड हो, अगर वो स्वस्थ है तो उन्हें फिटनेस ट्रेनिंग भी उसी तरीके से प्लान करता हूँ। बस मेरा फोकस हमेशा साइंटिफिक रहता, मैं जार्गन्स बिल्कुल मैं पसंद भी नहीं करता कि कोई मेरे क्लाइंट में। उदयपुर से जब से मैंने सर्विस देना चालू किया, मुझे दिखा है कि लोगों को यूट्यूब की वजह से और इंस्टाग्राम की वजह से बहुत सारी अलग अलग मतलब मिथ्स आ गए दिमाग में, वो काफ़ी चीज़ें ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जो उनके बॉडी के लिए नुकसान देते हैं। तो मेरा मेजर काम, मेजर टाइम वही जाता है कि मुझे वो क्लियर करनी है कि आप मिथ्स हटाइए, अब हम अच्छा काम करते हैं, अब हम आपकी हेल्थ से रिलेटेड फोकस करते हैं।
0: तो हर्षल, जो अपना फिटनेस ट्रेनिंग और डाइट प्लान और या फिजियोथेरेपी का जो आपने बात किया, और जो यहाँ पर लोकल कल्चर चल रहा है, और जो आपने बताया भी कि सोशल मीडिया का काफ़ी इम्पैक्ट है और लोग उसे उन्हें ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो कल्चर आपने जिक्र भी किया कि 2 या 3 साल यहाँ आने में लगेंगे, तो एक गोल बेस्ड जो या फिर यूँ कहें कस्टमाइज अप्रोच जिसको हम कहें, तो उससे उस पर लाने के लिए लोगों को सबसे पहले अपने फिटनेस पर क्या किस तरह से काम करना होगा? क्योंकि हम आज भी वही देखते हैं, वो कोई मॉर्निंग वॉक पे निकलने के बाद, जिम करने के बाद थक के आ रहा है और वो बड़े गर्व से कह रहा है कि मैं सुबह इतना टाइम ये कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है उसको कुछ खाने का इशू हो, उसका प्रॉपर डाइट जो आपने बताया कि जो दिन की कैलोरीज है उसका प्रोपोर्शन उनका सही ना हो। कई हो सकता है एक्सपर्ट ट्रेनर की कमी की वजह से वो इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हो सकता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए हार्मफुल हो। इस पर किस तरह से लोगों को आप क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि लोग तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब सोशल मीडिया पर ही रुके हुए हैं।
1: बिल्कुल, हमें ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करनी चाहिए, इवन इन इंडिया उदयपुर कहीं पर भी, कि हमें लोगों से सर्टिफिकेशन और डिग्री का पूछना चाहिए। लोगों को लगता है कि यार मैं इनसे कैसे पूछ लूँ डिग्री के बारे में। आज मेरे पास 2-3 दिन से लगातार शेयर्स हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, कि जैसे कोटा में फर्जी फिजियोथेरेपिस्ट पकड़े गए, एमपी में फर्जी फिजियोथेरेपिस्ट, फर्जी डॉक्टर्स पकड़े जाते हैं। उदयपुर में आधे से ज़्यादा ट्रेनर्स के पास सर्टिफिकेशन नहीं है, उन्होंने 4 महीने जिम किए वो ट्रेनर बन गए, उन्होंने खुद की बॉडी बना दी ट्रेनर बन गए, लोगों को दौड़वाते थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं, ऑब्वियसली पसीना निकल रहा है तो उनका वाटर वेट कम हो रहा है, वाटर वेट कम हो रहा है उनको लगता है कि हमारा फैट जा रहा है, जबकि वो फैट नहीं जा

0: रहा हूँ, उनका वाटर वेट कम हो रहा है और वो ट्रेनर बन गए, तो सबसे पहले तो आप सर्टिफिकेशन मांगना चालू करो कि आपके पास क्या सर्टिफिकेट है। आप कैसे मुझे बता सकते हैं कि मेरी एक्सरसाइज से ये फ़ायदा होगा? साइंस के बारे में पूछो। यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो फॉलोअर्स तो उनके पास काफ़ी हैं, फॉलोअर्स बढ़ाना इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट उनको पास साइंटिफिक नॉलेज कम है। तो हमें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करना चाहिए ये पूछना। देन आपको ये देखना चाहिए कि आपके बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत छोटी छोटी बातें होती है, डाइट के अंदर इतना ज़्यादा कुछ साइंस है नहीं। आपने कैलोरीज कम खानी है, कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कंट्रोल करना है, फाइबर सलाद वगैरह ज़्यादा खाना है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। मॉर्निंग वॉक, वॉक करना बहुत अच्छी बात है, वॉक करने में कोई, पर ओवरलोड हर जगह काम आना चाहिए। अब आदमी क्या करता है ना, जैसे इवन मेरे मॉम डैड, वो भी पहले क्या करते थे, वॉक करने जाते थे, रोज़ आधा घंटा वॉक करेंगे, पर वो रोज़ 2 किलोमीटर ही जा रहे हैं, हर रोज़ 2 किलोमीटर ही जा रहे हैं। आफ्टर अ पॉइंट बॉडी अडप्ट कर जाती है। अगर आप वॉक के अंदर आपकी स्पीड नहीं बढ़ाओगे या फिर डिस्टेंस नहीं बढ़ाओगे, बॉडी चेंज नहीं होगी। इसलिए काफ़ी लोग रोज़ वॉक कर रहे हैं फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। खाने के अंदर उन्हें लगता है कि हम खाना कम खा रहे हैं, पर जो बीच बीच के चीट होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। हम रोटी सर कम खा रहे हैं, पर बोलते हैं हम चाय नहीं छोड़ सकते, चाय के अंदर वही शक्कर डाल रहे हैं, वही दूध पी रहे हैं। तो वहाँ पे मैं ये नहीं बोलता कि छोड़ दो, रिप्लेस करना चालू करो। शुगर की जगह स्टीविया यूज़ कर सकते हो जो कि नेचुरल है। चाय में दूध पी रहे हो तो उसको कम कर दो, क्वांटिटी कम करो, धीरे धीरे अपने बॉडी के अंदर चेंजेस लाओ। पानी ज़्यादा पियो, सबसे ज़्यादा फैक्टर यही होता है, जो आदमी पानी ज़्यादा पीता है उसको भूख अपने आप ही कम लगती है, क्योंकि जब भी आप पानी कम पियोगे ना, आपको स्वीट की क्रेविंग होगी या फिर कुछ ऐसी चीज़ की क्रेविंग होगी जिसमें मीठा भी और पानी भी, वो बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन है। तो ये कुछ कुछ हैक्स होते हैं जो बॉडी को करने चाहिए, हर किसी को करने चाहिए फॉर अ फिट लाइफ। एंड अभी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप अगर किसी से भी ट्रेनिंग ले रहे हो, किसी डाइटिशियन के पास जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आस्क देम फॉर अ डिग्री और सर्टिफिकेशन। हो सकता है कि वो आदमी फेक हो और वो अनजाने में भी आपकी लाइफ के साथ खेल ही रहा है।
1: हर्षल, आपकी सारी बातों में जो सबसे बड़ी बात आ रही है निकल के कि हमें अपने डाइट के साथ साथ जो अपनी फिटनेस, उस पर ध्यान तो रखना है, लेकिन जो आपने बोला कि बीच में छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं, जैसे आपने चाय का जिक्र किया, और क्योंकि इंडियन कल्चर में सोशलाइजिंग का काफ़ी इम्पैक्ट है, तो यूथ को हम देखते हैं कि वो वीकेंड में पार्टीज कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, और जो आपने अभी बोला कि अगर शरीर में पानी की कमी है तो मीठे के साथ कुछ खाने पीने का मन होता है, स्वीट्स भी हम काफ़ी ले रहे हैं, गर्मी के टाइम में आइसक्रीम्स भी हम काफ़ी ले रहे हैं, फिर हम शादियाँ या फिर किसी सामाजिक आयोजन में जाते हैं तो वहाँ हर तरह का टेस्ट हम ट्राई कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर को कितना इम्पैक्ट करती है। और जाते जाते कार्यक्रम में आप जितने भी अपने श्रोता हैं उनको आप बताएं कि किस तरह से आप अपनी डाइट को मेंटेन करते हुए, आपका फिटनेस को प्रॉपर करते हुए, और जो जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ फिजियोथेरेपी के साथ अपने बॉडी को कैसे फिट, फाइन और शेप में रख सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो शादी वाली बात से और इवन पार्टी वाले बात से, मेरे क्लिनिक पे वगैरह काफ़ी लोग आते हैं आजकल मुझसे कंसल्ट करने के लिए, इवन जो सेलेब्स भी हैं उन्हें भी ड्रिंक करना पड़ता था, तो मुझसे पूछते थे कि यार इसका कुछ सॉल्यूशन बताओ, मैं ड्रिंक करता हूँ, मुझे हैंगओवर होता है, एसिडिटी होती है। अब उनकी ड्रिंक में छुड़वा नहीं सकता, बिकॉज एक तो सेलिब्रिटीज़ हैं और सोशलाइज़ करना उनका काम है, वरना प्रोड्यूसर्स वगैरह से कैसे मिलेंगे। तो ये बहुत पर्सनल है, मैं सिर्फ मेरे क्लाइंट्स को बताता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था कि मैं ड्रिंक के साथ उन्हें कम्बुचा देता था। सो कम्बुचा इज़ अ फर्मेंटेड ड्रिंक, वो आप मिक्सर की तरह यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके बॉडी के अंदर प्रोबायोटिक्स जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ड्रिंक लिमिट में ही करनी है, कम ही करनी है,
1: वैसे तो नहीं करनी चाहिए,
0: वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं करनी है, पर अगर आपको ज़रूरी लग रहा है तो लिमिट में करो, ड्रिंक ड्राइव मत करो। बट आप मिक्सचर की तरह कम्बुचा ले सकते हैं, विच इज़ इवन गुड, प्री प्रोबायोटिक है, तो उसके साथ अगर आप ड्रिंक करेंगे तो उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगा, उसको हम थोड़ा कम कर रहे हैं। देन डाइट के दूसरे हैक में बताता हूँ, अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो आप अगर खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी पीने लग गए आजकल लोग, वो क्या करता है आपके स्टमक के लाइनिंग को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। तो एक बुलेट कॉफ़ी आती है, आपने उस कॉफ़ी के अंदर बटर या घी मिक्स कर दिया, उसको मिला लिया और पी गए, तो उससे क्या होगा, आपके स्टमक की लाइनिंग भी डैमेज नहीं होगी, हेल्दी फैट भी आ गया, आपने कॉफ़ी भी पी ली, आपको एनर्जाइज भी लग रहा है और आपको बहुत देर तक अब भूख भी नहीं लगेगी। दिस अ हैक। एक और हैक है, शादी ब्याह में जा रहे हैं, ऑब्वियसली आप खाना खाओगे, घर से एक प्लेट सलाद खा के जाओ, कि आपने एक बड़ा प्लेट सलाद खा लिया, 15 मिनट बाद आप शादी में खाने जाओगे, क्योंकि आपके पेट के अंदर फाइबर है, आपको ऑटोमेटिकली भूख कम लगेगी। शादी में भी फोकस करो प्रोटीन साइड ज़्यादा, जैसे पनीर टिक्का हो गया, ग्रिल्ड पनीर हो गया, ये ज़्यादा खाओ, दाल वगैरह पी लो, फिर जाके रोटी खाओ, एक रोटी में इट्स नॉट दैट मच हार्म। और अगर उसके बाद अगर आप एक स्कूल

0: आइसक्रीम खा भी लेते हो, मेक श्योर कि आप उसके बाद वॉक करो एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स एवरी डे। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी खाना खाते हैं उसके जस्ट 10 मिनट, उसके बाद जस्ट 10 मिनट आपको वॉक ही करनी है। वो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ब्रेकफास्ट के बाद वॉक करिए, लंच के बाद वॉक करिए, डिनर के बाद वॉक करिए 10-10 मिनट। इससे आपका जो बेसिकली खाना है कार्बोहाइड्रेट, उससे इंसुलिन स्पाइक नहीं होता। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ विदाउट साइंस कि खाना फैट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इंसुलिन स्पाइक नहीं हो रहा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिटनेस से रिलेटेड बहुत पर्सनलाइज चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई आ रहा है कि मुझे सिर्फ बॉडी बनानी है, तो मैं उसे आइसोलेटेड मूवमेंट ही कराऊंगा, मैं उससे बिन फालतू कंपाउंड लिफ्ट्स वगैरह नहीं कराऊंगा, मतलब मशीन पे डाल दूंगा या फिर ऐसा कुछ। अगर किसी को एंड्यूरेंस के लिए ट्रेन करना है, वेट लॉस के लिए ट्रेन करना है, वेट लॉस में एक ये फैक्टर है कि लोग कार्डियो बहुत कराते हैं, पतला होना है कार्डियो ही करो कार्डियो ही करो, भले उसके अंदर उसकी मसल्स क्यों नहीं मर रही हो। तो हमें मसल को बचाते हुए कार्डियो करना है, उसको जोन टू कार्डियो कहते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग स्पीड। आप चल रहे हैं पर उसी स्पीड पे जिस पे आप बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका सिर्फ फैट लॉस हो रहा है, मसल्स को डैमेज नहीं हो रहा। अगर आपने स्पीड बढ़ाई आपकी मसल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। और सबको मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इवन 40 के भी ऊपर हैं, आप जिम से डरिए मत, वेट उठाइए। वेट आप मसल्स आपके हार्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके हार्मोन्स को वो बिगड़ने नहीं देगा, आपकी बॉडी को भी डैमेज नहीं होने देगा। एंड अगर आपको थोड़ा भी पेन लगता है मसल्स या जॉइंट्स में, तो आप किसी सर्जन के पास जाने से पहले एक बार फिजियो के साथ मिल सकते हैं, बिकॉज फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये क्लियर कर पाएगा ये एक्सरसाइज से ठीक होगा या नहीं होगा। अब बेन फिजूल में मेडिसिन या सर्जरी की तरफ ना जाए, यही मेरा मानना है। बिकॉज सर्जरी भी करेंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट का कोई नुकसान नहीं है, उसके बाद आपको 3 महीने फिजियोथेरेपी लेनी है। बट आप पहले अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएंगे जो आपको अच्छे से एक्सरसाइज कराए और मशीन्स पे कम फोकस करे, पेन भगाने के लिए मशीन का यूज़ करें, तो वो आपके लिए डेफिनेटली ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
1: तो आप थे फिटनेस ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन हर्षल गिरी। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिटनेस ट्रेनर हर्षल गिरी से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
4: तो लेन देन
3: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
4: ओ
3: जैसे UPI से।
4: अच्छा।
3: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
4: वो क्या है मम्मी जी?
3: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
4: आम भी ना मम्मी जी।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
8: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: FM बैंड 101.9 MHz पर यह है FM रेडियो लेक सिटी। श्रोताओं, आपके स्वास्थ्य की चर्चा के बाद वक्त है मनोरंजन का। हालांकि समय कम है, लेकिन ये थोड़ा सा समय भी आपके लिए खास बनाने का वादा करते हैं इस मिठास के साथ। शाम ढली तो यादों का कारवां निकल पड़ा, कुछ गीत गुनगुनाने का फिर बहाना निकल पड़ा। जो दिल से सुनते हैं सुरों की हर बात, उनसे मिलने को आज फिर जमाना निकल पड़ा।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए FCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
9: दोस्तों, जिंदगी की किताब में हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है। कुछ पल खुशियों के होते हैं, कुछ सीख देने वाले, लेकिन संगीत वह साथी है जो हर पन्ने को खूबसूरत बना देता है। तो आइए इस सुहानी शाम में संगीत के साथ एक और छोटी सी यादगार मुलाकात करते हैं आपसे।

दोस्तों, मंजिल मिले ना मिले, सफ़र खूबसूरत होना चाहिए। हर दिन नया हो, हर पल मुस्कुराहट से भरपूर होना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त अपने रेडियो दोस्त आरजे विवेक अग्रवाल को।

0: दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन को संगीत की मधुरता से सजाए रखें, इसी बात के साथ फिल्म संगीत और साथ ही साथ एफएम लोकल विंडो के कार्यक्रम का समय भी अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम रेडियो लेक सिटी। शाम के 7 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से हम रिले करेंगे कार्यक्रम जयमाला। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार
1: के लिए, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। सभी फौजी साथियों का और सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

बंकिम चंद्र की ये रचना आपने सुनी फिल्म आनंद मठ से। हेमंत कुमार की तर्ज थी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें थीं।

रफी को आपने सुना फिल्म पारस मणि में। इंदिवर के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे हैं जयमाला।

मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ये दो गाना आपने सुना। फिल्म दिल ही तो है, इस फिल्म का ये गीत था। साहिल लुधियानवी का लिखा, रोशन का संगीत था। फिल्म सूरज, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। हसरत जयपुरी के बोलों को सुर में ढाला शंकर जयकिशन ने।

शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। आप सुन रहे थे जवान मोहब्बत असलम का गीत, शैलेंद्र का लिखा।

गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद, मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया। जयमाला कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद, बस थोड़ा सा इंतजार।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी, नए झुमके
2: ना, पहले बचत,
1: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: खूबसूरत गुनाह करने

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के युगल सुरों में आकाशदीप फिल्म का ये गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत था। आप सुन रहे हैं जयमाला।

शेवन रिजवी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था, आशा भोसले का गाया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म हमसाया से। जयमाला कार्यक्रम का सफर श्रोताओं आज बस यहीं तक।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: स्मृतियों के स्वर। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी परिवार के सदस्य सेवानिवृत्त सहायक केंद्र निदेशक अनीता वेस्ली पटेल से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दिल्ली से फिर आगे फिर कहाँ आपकी गाड़ी चली?
1: उसके बाद दिल्ली में ही एक एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन है
0: जी,
1: जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड जाता है। तो उसमें मैं इंग्लिश सर्विस में थी, जनरल ओवरसीज सर्विस, हर 24 लैंग्वेजेस है वहाँ पे
0: जी।
1: तो उसमें मैं इंग्लिश सर्विस में थी, उसमें मैं 5 कॉन्टिनेंट्स के लिए म्यूजिक शेड्यूल करती थी और वो बजने को देती थी
0: जी।
1: अलग अलग टाइमिंग्स, पूरा रात भर या पूरा दिन, जहाँ भी दिन होता है उसके हिसाब से वहाँ पे वो ट्रांसमिशन होते थे
0: जी।
1: उसके बाद शादी हो गई और हम आ गए मुंबई, आकाशवाणी मुंबई आई। बेबी बहुत छोटा था, 8 महीने का। तो बॉम्बे की लाइफ बहुत ज्यादा टफ है एक्चुअली, बाहर वालों को शायद चमक दमक दिखती है मगर बॉम्बे की लाइफ बहुत टफ है। आपको घर 7:30 छोड़ना पड़ता है और शाम को 7:30-8 बजे तक आप आ नहीं सकते। हालांकि मेरा ससुराल बॉम्बे में है इसलिए हम बॉम्बे आए और सब अच्छा था, मगर ये जो वर्किंग आवर्स उस समय जो मुझे बहुत टफ लगता था बेबी, छोटे बेबी के साथ
0: बिल्कुल। और मुंबई में अड़ोस पड़ोस नहीं होता, छोटे बच्चे के साथ नौकरी करना बहुत मुश्किल होता है।
1: तो फिर मैं जयपुर चली गई। जयपुर में भी मतलब बहुत ही अच्छा लगा, वो तो संगीत की खदान है जिसे कहिए। जयपुर में बहुत म्यूजिक है, पूरे राजस्थान से कलाकार, फोक म्यूजिक बहुत ज्यादा था, लगभग 400 कलाकार थे मेरे पास।
0: राजस्थानी लोकगीत बहुत समृद्ध है अपने आप,
1: बहुत ज्यादा। वो वहाँ की 4-5 तरह की भाषाएं हैं राजस्थान के अंदर, एक ही भाषा नहीं है और उनकी अलग अलग सब में डिफरेंस है। आपने पंडित विश्व मोहन भट्ट का नाम तो सुना ही होगा, ग्रैमी अवार्ड। अरे जब वो हमारे यहाँ आके अपने गिटार पे एक जरा सा आवाज करते थे तो मतलब अंदर आत्मा तक, और हमें लगता कि हमें जो मिलना है ना,
0: मिला है सुकून मिला है
1: आकाशवाणी की नौकरी करके, इससे बढ़िया इनाम हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। इतनी इस नौकरी में मैं इतनी खुश रही हूँ ना संगीत की वजह से, इतनी अच्छी नौकरी थी ये मेरे लिए।

हे रूणेचे राधनिया राजा अजबर वाकावर माता मेणा देणा लाल रतन दे सरा भरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर।

0: लाल रतन दे सरा अवतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। दास करे अरदास पीर जी डस गयो काड़ो नाग जी। दास करे अरदास पीर जी डस गयो काड़ो नाग जी। मरते राने जी विदान दे जीता ने वरदान जी। हे राम सा पीर सारी हे राम सा पीर थारी मेड़ी पे ढोक लगावा मंडेरा फूल चढ़ावा। हे रूणे चेरा धनिया राजा अजमरवा कवर माता वेड़ा देना लाल रतन दे सरा भरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर।
1: वाह
0: तो ये भजन है एक तरह से।
1: बहुत बढ़िया। ये तो मुझे तो हमें तो ये पता ही नहीं था कि आपके अंदर इतनी बड़ी प्रतिभा छुपी है कि आपको राजस्थानी लोक संगीत भी आता है। जबकि विविध भारती में आप इतने साल हमारे साथ रही, हमने सौभाग्य मिला था कि आपके साथ काम किया। अमेरिका कैसे पहुंची आप?
0: अमेरिका ऐसे पहुंची कि मेरे जो ननिहाल है ना सब रिश्तेदार वहीं हैं।

0: अच्छा
1: तो मैंने यहाँ से जब ग्रेजुएशन किया बीए ऑनर्स म्यूजिक, तो वहां पे मेरी मौसी ने मुझे बुलवा लिया। और धीमे धीमे फिर क्या होता है कि पूरा परिवार पहुंच जाता है
0: जी
1: ना
0: जी
1: आमतौर पे।
0: जी तो वहाँ
1: हाँ,
0: हिंदुस्तान को कैसे याद करती थी, क्या याद आती थी?
1: वहां पे मुझे बस अपनी मिट्टी याद आती थी, अपना अपना खाना पीना, खुशबू, अपनी सड़कें, चाहे
0: अरे
1: कहीं
0: वाह,
1: पे धूल उड़ रही हो,
0: पोशाक
1: क्योंकि वहां का तो
0: पहनावा।
1: एकदम सुना सुना सा होता है। अपने गाड़ी में बैठो और पहुंच जाओ रिलेटिव्स के घर में। या मगर वैसे जैसे अपन चले हैं कि भैया चलो आज चावड़ी बाजार हुआ हो या करोल बाग में घूम लो, वो जो एक रौनक, कभी कहीं चाट पकोड़े
0: चहल
1: खा
0: पहल
1: ली,
0: जो होती है, शोर शराबा
1: हाँ,
0: होने।
1: काम वाली आके आपके काम कर रही है, हाथ पैर भी दबा रही है, तो मतलब ये सब चीजें ना वहाँ नहीं है।
0: मिस
1: वहाँ की
0: करती
1: लाइफ
0: थी।
1: बिल्कुल डिफरेंट थी। और मैं संगीत को बहुत मिस करती थी, अपनी फैकल्टी को जहाँ हम सीखते थे, फिर अपने गुरुजी। तो हालांकि गुरुजी से हम लोग बहुत डरते थे, जब हमारा नंबर आने वाला होता था तो हम लोग की सिट्टी पिट्टी घूम रहती थी कि अब जाना है हमें अंदर, हमारा नंबर है। मगर बहुत ज्यादा याद आता था, लगता था
0: जी
1: कि
0: जी
1: ये

0: मतलब ये सब चीजें ना वहाँ नहीं है,
1: मिस
0: वहाँ की
1: करती
0: लाइफ
1: थी।
0: बिल्कुल डिफरेंट थी। और मैं संगीत को बहुत मिस करती थी, अपनी फैकल्टी को जहाँ हम सीखते थे, फिर अपने गुरुजी। तो हालांकि गुरुजी से हम लोग बहुत डरते थे, जब हमारा नंबर आना वाला होता था तो हम लोग की सिट्टी पिट्टी घूम रहती थी कि अब जाना है हमें अंदर, हमारा नंबर है। मगर बहुत ज्यादा याद आता था, लगता था कि ये जिंदगी हमारी नहीं है, हमारी जिंदगी हमारे ही देश में है।
1: बात आपने गुरुजी की कही, तो गुरुजी से रागों की बारीकियां, संगीत की बारीकियां कैसे सीखी हैं उनके बारे में बताइए।
0: हाँ, वो गुरुजी जो हैं हमारे उस्ताद अमीर खान साहब के शिष्य हैं और इंदौर घराना
1: जी
0: से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह हम लोग को सिखाया, रागदारी, बोल आलाप, बोलतान, सरगम, जो
1: जी
0: भी
1: जी
0: घराने की विशेषताएं हैं
1: रियाज करना, वो
0: सब
1: तरीका,
0: सिखाया।
1: अलंकार।
0: रियाज करना वो हमें देते ही थे कि ये इतना रियाज करके आना है, इतना सीख के
1: जी
0: आना
1: जी
0: है, इस तरह से सुर लगाना है,
1: जी जी
0: और उसके बाद फिर घर पहुंचा के आते थे।
1: अनीता जी, दरअसल जब यादों की नदी बहती है ना तो रुकती नहीं है, बहती चली
0: नहीं
1: जाती है। और हम देख रहे हैं कि आपकी यादों की नदी बहती चली जा रही है। लेकिन ये आकाशवाणी मुंबई से गोवा गई थी, तो वो उस यात्रा के बारे में बताइए।
0: तो देखिए, मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ
1: जी
0: और मुझे तो सब्जी भाजी खाना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। आई
1: दाल
0: लाइक
1: चावल।
0: इट, सब चीज़। वेजिटेरियन डाइट इज वेरी फाइन विद मी। मगर जो मेरे पतिदेव हैं, एक तरह से उल्टा हो गया ना कि वो ससुराल में आ गए, मतलब नॉर्थ में आ गए। वो बम्बई के हैं और वो फिशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कोली।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो उन बेचारों को तो फिश विश कुछ मिलती ही नहीं थी, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, अभी तक अपने पेरेंट्स के लिए हम दिल्ली में गए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अब हम अपनी तरफ रुख करें। मगर यहाँ बॉम्बे में बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल हार्ड है, तो हमने पणजी,
1: पणजी चुना।
0: हाँ, और वो डायरेक्टरेट की मेहरबानी है, उन्होंने हमें दिया, वहां जरूरत भी थी, तो फिर हम पणजी चले गए। फिर
1: गोवा का
0: गायक
1: संगीत अपने आप में बड़ा ही समृद्ध है और बहुत लोकप्रिय है, गोवाइन लोकगीत। और
0: हाँ,
1: वहाँ का तो कुछ सुनाएंगे क्या, दो लाइन अगर सुना सके तो
0: देखिए,
1: याद हो तो।
0: बॉबी का जो गाना है ना,
1: हाँ
0: वो गोवन म्यूजिक पे आधारित है, बॉबी
1: जी
0: फिल्म का।
1: जी जी

0: वाह भाई वाह, क्या बात है। आपकी 5 आकाशवाणी केंद्रों में विविध भारती शामिल है, जहां पर आपने बहुत सारी रिकॉर्डिंग की, तो विविध भारती से जुड़ी हुई कोई खास याद
1: जी
0: ताजा
1: हाँ,
0: कीजिए आप।
1: तो गोवा से हम विविध भारती ही आए थे, और ऐसे दौर में आए थे कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होना था हार्ट का, इसलिए हम ट्रांसफर लेके आए थे। मगर इस विविध भारती के स्टाफ ने हमें इतना सहयोग दिया, पूरा स्टाफ हमारे साथ खड़ा रहा। आते ही 10-15 दिन के अंदर ही उनका बाईपास सर्जरी किया गया, और स्टाफ का जो प्रेम होता है इतना मिला भरपूर मात्रा में।
0: जी
1: और फिर उसके बाद हमें विविध भारती का जो कार्यक्रम है, मतलब जैसे हमारी तो समझिए कि हमें क्या
0: एक
1: नहीं मिल
0: परिवार
1: गया, एक
0: परिवार मिल
1: तीर्थ में
0: गया।
1: आ गए हम।
0: जी
1: इतना संगीत सरिता जिसको मैं सारी जिंदगी सुनती रही हूँ, बचपन में 7:30 बजे मेरा संगीत सरिता ऑन हो जाता था, रियाज व्याज बंद करके
0: जी
1: सीधा
0: जी क्या बात है।
1: सुनना ही होता था वो हमें। तो वो मिला मुझे यहाँ पे, फिर मैं सेहतनामा देखने लग गई, तो बहुत सारे डॉक्टर्स को ढूंढा, और बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां जो अनकॉमन, स्लीप अपनिया है या आमतौर पे जो नहीं सुनाई देती हैं, ऐसी बीमारियों को भी हमने श्रोता तक पहुंचाया। और जो लोग नहीं जानते थे कि हमें जो है उसका क्या नाम है, उनके भी बहुत फोन आते थे। फिर हमें
0: जी।
1: डॉक्टर्स तक फोन आते थे, उन लोगों को इलाज मिलता था जो छोटी छोटी शहरों में से फोन करते थे हमें।
0: जी।
1: तो वो बड़ा एक सफल प्रोग्राम था, मेहमान भी किया हमने, विवेक ओबेराय,
0: जी।
1: श्रेयस तलपड़े,
0: जी,
1: सब इतने
0: बड़े
1: ग्रेशियसली सबने बहुत अच्छे अच्छे
0: कलाकारों
1: इंटरव्यूज
0: से
1: दिए,
0: मिलना
1: और
0: मुझे।
1: भी हाँ बहुत
0: हाँ
1: सारे कलाकार थे। तो एक बहुत ही अच्छा समय विविध भारती में रहा।
0: जी, और हम उसके गवाह हैं, हमने देखा है, और वो आपके चेहरे पर उस समय वो मुस्कान बता रही है कि हाँ, आपकी खुशी और जो प्यार मिला आपको, और आपने सिर्फ पाया ही नहीं, दिया भी, सबको बहुत प्यार दिया
1: हाँ,
0: भी, हम सबको दिया।
1: हर जगह हम कॉन्सर्ट्स करते थे ना,
0: जी
1: कॉन्सर्ट्स
0: जी
1: रह गई हमारी।
0: और फिर इसके बाद
1: और
0: आप वापस आकाशवाणी मुंबई चली गई, वहां
1: हाँ,
0: की।
1: उसके बाद फिर मेरा प्रमोशन होने से असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर मैं आकाशवाणी मुंबई चली।

0: और मैं आर्काइव्स में गई पहले, जो पूरा नॉर्थ इंडिया का, जयपुर ना, गुजरात, गोवा, पूरा महाराष्ट्र, और बाद में फिर इधर छत्तीसगढ़ भी मिल गया, मध्य प्रदेश, सबका आर्काइवल प्रोग्राम मेरे पास आया, जिसमें हमने सब आर्काइवल प्रोग्राम्स, अच्छी रिकॉर्डिंग्स, जो गोल्ड, मतलब गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, इस तरह से हम बांटते थे, जो भी रिकॉर्डिंग की महत्वता के हिसाब से, तो वो काम करके फिर मैं आकाशवाणी मुंबई गई, मुंबई की प्रोग्राम हेड बनी, असली काम वहाँ हुआ है। तो
1: क्या बात
0: बोलूँ,
1: है, जब आप प्रोग्राम हेड बनी तो वहाँ बहुत सारी
0: अरे
1: रिकॉर्डिंग।
0: बहुत ही टफ काम था। तो हमें सारे वीवीआईपीज जो भी अपने आते हैं, पीएम, प्रेसिडेंट, विजिट्स, उन सबको करना पड़ता था, और साथ में एक G20 आया, हमें दिया गया 80 लाख का बजट करने के लिए तीन तीन महीने में। तो हमने खूब अच्छी अच्छी बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग्स करी, तमिलनाडु से हमने कलाकार बुलाए, कॉलेजेस में हमने ओबीस की, हम कोस्टवार्ड हिल गए, आदिवासियों का इलाका है
1: क्या
0: बिल्कुल,
1: बात है।
0: वहां पे हमने रिकॉर्डिंग्स उन लोगों की, उन लोगों का खाने पीना, उन लोगों ने अपनी सब जड़ी बूटियां दिखाई, पत्ते दिखाए, उनका जो आदिवासियों से बनता है खाना वो दिखाया उन्होंने, किसान विकास केंद्र है कोतवाल ढील में,
1: जी
0: बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि कैसे लोग आते हैं, कैसे करते हैं। हम लोगों ने बाइक रैली की, डॉक्टर्स का कैंप लगाया, सो वी डिड लॉट ऑफ वर्क। फिर मन की बात जो हमारा चलता रहता था, सैटरडे में हम पूरा उसकी रिकॉर्डिंग, उसको
1: जी
0: मराठी में ट्रांसलेट करते थे, और उसके बाद उसके रिकॉर्ड करके रात को 3-4 बजे घर आते थे,
1: जी जी
0: फिर वो अगले दिन 11 बजे बजता है। इस तरह से किया सबका, हम स्क्रिप्ट्स और सारी रिकॉर्डिंग्स पूरी सहेजी सीरियल वाइज, 100वें में हम लोगों ने पूरा काम किया, सब रिकॉर्डिंग्स का लाइव ब्रॉडकास्ट किया।
1: जी
0: नेवी डे होता है, नेवी डे की पूरी रिकॉर्डिंग, उनका जो बैंड सब कुछ किया हमने, अपने कंसर्ट्स में भी किया, स्टेशन में संगीत सम्मेलन किए हमने, और आउटसाइड ओबीज बहुत की। तो इट वॉज अ लवली टाइम, और सब लोगों में इतनी स्पिरिटेड थी, मेरे साथी जितने थे बॉम्बे स्टेशन पे, जितने भी मेरे साथ के पैक्सिस थे, आपके जो अब यहाँ करंट हेड हैं संतोष जादव जी,
1: जी
0: इतना उनका सहयोग था, सब लोगों ने मिलके खूब पूरी स्पिरिट से, रात दिन हम लोग सोते ही नहीं थे, काम में लगे रहते थे।
1: जी जी
0: तो उसका फल इतना अच्छा था कि मन में जो हमें अंदरूनी खुशी मिली, उसके बाद इलेक्शंस आ गए लोकसभा के, उसमें मैं थी,
1: जी
0: क्योंकि हम लोग के जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उनको हमको एक कमेटी के साथ वे करना होता है, उसमें काटना सब करना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि AIR कोड के मुताबिक ही जाए। तो उसको हमने बड़ी सफलतापूर्वक, मैं कहूंगी कि किया, और मैं उसके बाद 30 अप्रैल को रिटायर हो गई।
1: तो आपने इतनी दिलचस्प बातें साझा की अनीता जी, हमें बड़ा अच्छा लगा। आपका विविध भारती परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
2: स्मृतियों के स्वर, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी परिवार के सदस्य सेवानिवृत्त सहायक केंद्र निदेशक अनीता वेस्ली पटेल से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की।
3: स्मृतियों के स्वर।

0: आज हवा महल में सुनिए झलकी यस सर, लेखक प्रकाश शुक्ला, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
1: गुड मॉर्निंग मिस रीता फारिया।
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर मक्खनवाला। मिस्टर मक्खनवाला।
1: यस मिस रीता।
2: मैंने आपको कितनी बार याद दिलाया है कि मैं रीता फारिया नहीं हूँ। रीता फारिया तो मिस वर्ल्ड थी, पर आप हैं कि बराबर कंफ्यूज करते रहते हैं।
1: मैं कहा

0: मैं कंफ्यूज करता हूँ मिस रीता, आप आईना तो रोज ही देखती होंगी, भला अपनी जैसी सूरत आपको दुनिया में कहीं नजर आती है?
1: ओ मिस्टर मक्खनवाला, यू टॉक सो स्वीट।
0: मैं तो छोटी सी सच्चाई बयान कर रहा था मिस रीता, आप नाराज तो नहीं हो गई?
1: नो।
0: आप तो जानती हैं ना मिस रीता कि मैं पिछले एक हफ्ते से छुट्टी पर था और इसी बीच नए साहब ने ज्वाइन कर लिया।
1: हाँ, कोई 3 दिन हुए ज्वाइन कर लिया।
0: तो मिस रीता, मैं जानना ये चाहता था कि ये नया साहब आदमी कैसा है? अब तक आपने उसे जरूर पहचान लिया होगा। यू आर सो इंटेलिजेंट मिस रीता।
1: हाँ, कुछ कुछ तो समझा है।
0: क्या समझा है बताइए ना प्लीज। मैं ये पूछना चाह रहा था मिस रीता कि उठते बैठते उनका ध्यान अमूमन किस चीज पर ज्यादा रहता है?
1: ध्यान तो ज्यादातर मेरी गलतियों पर ही रहता है।
0: ओहो,
1: वैसे कभी कभी चलते फिरते मेरी शक्ल सूरत पर भी नजर डाल लेता है।
0: नो, मैं ये सब नहीं पूछ रहा था। आप मेरी बात अभी तक नहीं समझ पाई।
1: आई एम रियली वेरी सॉरी।
0: मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ मिस रीटा कि बातचीत या तौर तरीके से क्या जाहिर होता है कि समय काटने को वो कौन सा काम अधिक पसंद करता है?
1: वैसे तो सारा समय फाइलों में ही बीत जाता है।
0: ओह,
1: पर हाँ, एक आध मैगजीन रोज ही साथ लाती है।
0: That's right, मिस रीटा, यही तो मैं जानना चाह रहा था।
1: तो आपने पहले ही बता दिया होता कि आप मैगजीन के बारे में जानना चाह रहे थे।
0: मुझे ख्वाब आते थे क्या?
1: जी, कुछ कहा आपने?
0: मैं ये पूछ रहा था मिस रीटा कि आपने ये भी जरूर देखा होगा कि वो कैसी मैगजीन होती है।
1: हाँ, देखने में अच्छी होती है।
0: No, I mean, उनमें क्या होता है? स्पोर्ट्स, फिलोसफी, पॉलिटिक्स?
1: नहीं, ये सब कुछ नहीं होता।
0: फिर
1: फोटो देखने से कुछ साइंस का मालूम पड़ता है।
0: साइंस मसलन?
1: मसलन चांद, तारे वगैरह वगैरह।
0: That's a point.
1: क्यों, कोई खास बात है मिस्टर मक्खनवाला?
0: कुछ नहीं मिस रीटा, मैं तो यूं ही कभी कभी आपसे बातें करने लगता हूँ। अब बाकी लोग तो बस ऐसे ही वैसे हैं, मैं इन सबको खूब समझता हूँ। पता नहीं मेरे पीछे इन बदमाशों ने बॉस के क्या क्या कान भरे होंगे।
1: Who knows?
0: लेकिन खैर, मेरे पास तो एक ही रामवाण है, उसी से सबको समझ लूंगा। गुनी राम ने कच्ची गोली नहीं खेली है मिस रीटा।
2: Yes, come in.
3: नमस्ते सर।
2: नमस्ते, बैठिए।
3: जी सर, थैंक यू।
2: कहिए।
3: बस सर, वो क्या नाम है के दर्शनों के लिए चला आया सर। मुझे सर जी आर मक्खन वाला कहते
2: हैं। जी आर मक्खन वाला?
3: जी, गुनीराम मक्खन वाला।
2: आई सी, अच्छा तो आप ही हैं मिस्टर गुनीराम मक्खन वाला।
3: यस सर, पिछले हफ्ते छुट्टी पर था सर, कल ही वापस आया, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद भी अब तक आपके दर्शन नहीं हो सके सर, बड़े बिजी थे ना सर।
2: हाँ, अभी चार दिया ही है ना, फुर्सत जरा मुश्किल से निकल पाती है।
3: सो तो है ही सर, मैं क्या जानता नहीं सर अफसरों के पास कितना काम रहता है।
2: ओ यू नो,
3: व्हाई नॉट सर, एक अरसे से मैं इसी कुर्सी की तो सेवा करता चला आ रहा हूँ सर।
2: ऐसा है,
3: आपकी मेहरबानी से सर इस दफ्तर की राही रत्ती तक मैं जानता हूँ सर। और इसके अलावा सर, इस कुर्सी पर बैठने वाले हर बड़े साहब ने मुझ में हमेशा एक सच्चा सेवक पाया है सर। यस सर, कभी कोई बात हो सर तो इस सेवक को जरूर मौका दीजिएगा सर। वो बाकी तो सर इस

0: इसके लोग ऐसे हैं सर कि बस कुछ न पूछिए, दिन भर एक दूसरे की चुगली, कभी इसकी बुराई सर तो कभी उसकी शिकायत। अब कहाँ तक बताऊं सर, अपने मुंह से ज्यादा कहा भी तो नहीं जाता सर।
1: ठीक है, मैं सब सुन चुका हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपके ये हाथ में क्या है? समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग।
0: सर ये कुछ नहीं सर, ये बस जरा कभी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता हूँ सर, बस वही है। और
1: मैं भी देख
0: तो
1: सकता हूँ ये मैगजीन?
0: क्यों नहीं सर, सर आप ही के लिए तो है सर।
1: मेरे लिए?
0: जी वो मेरा मतलब ये था सर कि हम सभी आपकी सेवा के लिए है ना, फिर ये किताबें क्या चीज है सर।
1: मिस्टर मक्खन वाला,
0: यस सर।
1: आपको स्पेस एडवेंचर से खासा शौक लगता है?
0: क्या बताऊं सर, शौक तो इतना है सर कि बस, लेकिन सर हम लोग तो तस्वीर देख कर ही तबीयत बहला लेते हैं सर।
1: और आप क्या चाहते हैं?
0: चाहता तो था सर मैं भी यान में बैठकर चंद्रलोक की सैर करूं, और सर चांद की उजली सी धरती पर बिचरते हुए वहां की ठंडी ठंडी हवाओं में खो जाऊं।
1: लेकिन गुनीराम जी,
0: ये सर।
1: चांद पर कोई ऐसी ठंडी वंडी हवाएं नहीं चलती हैं।
0: जी हाँ, वो मेरा मतलब ये था सर कि
1: अभी थोड़ा और पढ़िए, वैसे शौक अच्छा है।
0: जी सर मैं ये कह रहा था सर, मेरा मतलब था कि
1: क्या कोई खास बात
0: ये सर
1: क्या है?
0: जी, कुछ नहीं सर, कुछ भी
1: ठीक
0: तो नहीं
1: है,
0: सर।
1: जाकर अपना काम करिए।
2: क्या बात है गुनीराम, आजकल जमीन पर पैर ही नहीं रखते, हमेशा चांद सितारों के बीच उड़ा करते हो।
3: देखो मेहता, मुझे खाम खां की छेड़छाड़ कतई पसंद नहीं है। मैं कुछ भी करूं, मेरा अपना शौक है। आसमान में उड़ता हूं तो कोई तुम्हारी छत में झांकता नहीं है।
4: अरे भाई, तो बिगड़ती क्यों हो, मेहता ने तो साधारण सी बात।
3: मैं ये कहता हूँ, क्यों पूछी थी? चांद तारों की तस्वीर देखना कोई गुनाह है क्या?
2: तौबा तौबा, गुनाह? अरे भैया, खून करना भले ही एक बार गुनाह हो, चांद तारों की तस्वीर देखना कैसे गुनाह होगा? आखिर हमारे बड़े साहब भी तो अक्सर यही सब देखा करते हैं।
3: मैं तुम सबका वार्निंग दिलवा दूंगा। तुमने समझ क्या रखा है? क्या समझ रखा है तुमने गुनीराम
4: मक्खन वाला को?
3: मैं सबको देख लूंगा एक एक को।
5: मिस्टर मक्खन वाला।
0: यस मिस रीटा।
5: आपको बड़ा साहब ने याद किया है, अभी इसी वक्त कोई इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करना मांगते हैं।
0: व्हाट्स इन इम्पोर्टेंट इशू? अच्छा,
2: अरे गुनीराम, ये चांद सितारों वाली मैगजीन तो लेते जाओ।
3: मैं कहता हूँ शट अप यू ऑल।
2: क्या बात है मिस रीटा?
0: मे आई कम सर?
1: आइए आइए गुनीराम जी, बैठिए, आइए आइए, इधर आइए।
0: थैंक यू सर।
1: बैठिए
0: जी। यस सर।
1: गुनीराम जी।
0: यस सर।
1: मैंने आपको खास मशवरे के लिए बुलाया है।
0: हुक्म कीजिए सर।
1: आपको तो पता ही होगा कि पिछली जुलाई में 3 आदमी चंद्रमा पर गए थे।
0: यस सर। गए
1: और वहां उन्होंने हर देश का एक एक झंडा बिगाड़ा था।
0: यस सर।
1: आपने देखा तो होगा।
0: यस सर।
1: अच्छा, तो आपने देखा था?
0: जी जी, वो मेरा मतलब ये कि मैंने पढ़ा था सर।
1: ओ, पढ़ा था तो ये भी पढ़ा होगा कि बदले में तीनों व्यक्ति चंद्रमा की धरती के कुछ नमूने ले आए हैं, पता है ना आपको?
0: यस सर।
1: फिर वो नमूने संसार के हर देश में भेज दिए गए, पता है ना?
0: यस सर।
1: लेकिन अब इस मिट्टी को लेकर कुछ लोग बवाल मचा रहे हैं।
0: ठीक है सर, वो बात
1: ऐसा लगता है जिस मतलब से ये सब कुछ किया गया था वो बात कुछ बनी नहीं।
0: नहीं बनी होगी सर, ये पॉलिटिक्स बड़ी खराब चीज है सर, इसमें अक्सर ही बिगाड़ हो जाती है सर।
1: कुछ भी हो, अब तय ये पाया गया है कि हर देश अपना अपना आदमी चांद पर भेजेगा।
0: यस सर।
1: और चांद की धरती पर सारा लेन देन अपने आदमी के जरिए ही से हुआ करेगा।
0: ठीक बात है सर, दरअसल पहले से ही ये बात सोच लेनी चाहिए थी सर।
1: खैर, हिंदुस्तान वालों का भी कुछ ऐसे ही ख्याल है।
0: ठीक है सर, हम चांद पर अपना अधिकार थोड़े ही खोने देंगे सर।
1: लेकिन गुनीराम जी
0: सर,
1: वहां जाकर रहेगा कौन?
0: जिसे भेजा जाएगा सर वही रहेगा।
3: आखिर चंद्रमा पर जा

0: आने वाले पहले लोग भी तो आदमी ही थे सर। और सर बीवी बच्चे वाले आदमी थे। और देश की खातिर भला कोई इतना भी काम नहीं करेगा सर?
1: हाँ, करना तो चाहिए, लेकिन मुनिराम जी बात दरअसल ये है कि वहाँ रह पाना इतना आसान नहीं है। सच पूछा जाए तो मुझे वहाँ भेजे जाने वालों से बहुत हमदर्दी है।
0: ऐसी भी क्या बात है सर, इतने अहम काम के लिए अगर जान भी न्योछावर करनी पड़े तो किसी को हिचकिचाना नहीं चाहिए।
1: नहीं नहीं, जरूरत वहां जाकर मरने वालों की नहीं, जरूरत ऐसे समझदार आदमी की है जो वहां जाकर ठीक से काम चला सके।
0: यस सर।
1: और फिर जब उसे वहां जाकर रहना ही है तो क्यों ना ऐसे आदमी को भेजा जाए जिसे इन सब कामों में दिलचस्पी हो।
0: यस सर, यस सर, आप ठीक कहते हैं सर।
1: कुछ ऐसा ही ख्याल हमारी सरकार का भी है, इसलिए हर डिपार्टमेंट में सर्कुलर भेजा गया है।
0: अच्छा।
1: और इस बारे में राय मांगी गई है
0: जी।
1: मेरा ख्याल है कि ये ठीक ही कदम है।
0: यस सर, बिल्कुल ठीक कदम है।
1: कोशिश ये है कि उन्हें ऐसा आदमी मिल सके जो चांद पर जाने के लायक हो।
0: जी सर।
1: मुनिराम जी।
0: यस सर।
1: हमारे यहाँ भी एक ऐसा सर्कुलर आया है, डू यू नो?
0: यस सर।
1: व्हाट? यस सर, आपने देखा है?
0: यस सर जी, मेरा मतलब मैंने सुना था।
1: कहाँ?
0: जी वो और दफ्तरों में भी तो आया है ना सर।
1: अच्छा, तो और दफ्तरों में ये खबर पहले ही फैल गई और हम अपने को इतना हुनरमंद समझते हुए भी पिछड़ गए हैं। ये किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। हम बैठे ही रहे और दूसरा बाजी मार ली जाए, मैं ये बात कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप बर्दाश्त कर सकते होंगे?
0: यस सर।
1: बर्दाश्त कर सकते हैं?
0: जी जी जी। नहीं, मेरा मतलब ये था कि
1: मतलब कुछ नहीं, चांद पर वही आदमी जाएगा जो इसका असली हकदार है, समझे आप?
0: यस सर।
1: तो फौरन एक टेलीग्राम दिल्ली भेजिए और अभी तुरंत।
0: यस सर।
1: हाँ,
0: क्या क्या लिख दूं उसमें सर?
1: लिख दीजिए सेंड GR मक्खन वाला चुमून।
0: यस सर। जी सर, जी सर, आपने क्या बोला सर? GR मक्खन वाला?
1: मैंने गलत बोला क्या?
0: यस सर।
1: क्या?
0: जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप भला गलत कैसे बोलेंगे सर?
1: तो जाइए फौरन इस तार को लगवा दीजिए।
0: जी सर, मैं भी जा रहा हूँ सर। लेकिन सर, सर मेरे बीवी बच्चे।
1: कुछ नहीं कुछ नहीं, मेक हेस्ट मेक हेस्ट, फौरन टेलीग्राम दीजिए, वरना इतने हुनरमंद आदमी के होते हुए भी हम पीछे रह जाएंगे।
0: यस सर, यस सर।
2: क्यों गुनी राम जी, किसके लिए वार्निंग टाइप कर रहे हो?
0: अपने लिए।
2: खैरियत तो है, यहाँ से तो तुम साहब के पास ठीक ठाक गए थे।
3: और साहब तुमसे इतने खुश थे?
0: हाँ, खुश तो अब भी है।
2: फिर ये सब क्या है?
0: मुझे भेज रहे हैं।
2: कहाँ?
3: कहाँ?
0: जहन्नम।
4: अभी आप सुन रहे थे झलकी यस सर, लेखक प्रकाश शुक्ला, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सर

पंडित बिरजू महाराज, कविता सुब्रमण्यम और माधुरी दीक्षित की आवाजों में देवदास फिल्म का ये गीत आपने सुना। गीत और संगीत था पंडित बिरजू महाराज का।

शिवम पाठक को आपने सुना फिल्म पद्मावत में मुज्तबा अजीज नाजा का लिखा ये गीत था। एम टूरस की बोल थे, संजय लीला भंसाली का संगीत था।

कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को आपने सुना। फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम, महबूब के बोल थे। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे अभी बाकी हैं, सुनवाते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
4: ओ,
3: जैसे UPI से।
4: अच्छा,
3: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
4: वो क्या है मम्मी जी?
3: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
4: आम भी ना मम्मी जी।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
6: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

0: अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुँच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा।

0: नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते।

0: ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
3: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम आपके लिए।

द चेन इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर को, फिल्म थी दिल ही तो है, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा,

0: वर्मा मलिक के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था, महेंद्र कपूर को आपने सुना, फिल्म थी दिल और मोहब्बत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: पाकीज़ा इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल थे, गुलाम मोहम्मद का संगीत था और यही थी आपके लिए इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम बस कुछ ही पलों के बाद।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए FCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज बात एक ऐसी अदाकारा की जो अपने अंदाज से जितना लुभाती है उससे ज्यादा भाती है उनके फिटनेस की चमक। अपनी मौजूदगी से ही वो कर देती है पॉजिटिविटी की बौछार और दिल ये कह उठता है,
1: चुरा के दिल मेरा गोरिया चली।
0: जी हाँ, आज बात 3 दशकों से फिल्मी दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी की।

शिल्पा शेट्टी, जिन्हें दुनिया भर में उनकी फिटनेस से तो पहचान मिली ही, साथ ही वो कई अलग अलग सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ी हुई हैं। वो न सिर्फ एक अभिनेत्री हैं, बल्कि फिटनेस गुरु, बिजनेस वुमन, सामाजिक कार्यों की बुलंद आवाज, एक बेहतरीन माँ और पत्नी हैं। शिल्पा जिस अंदाज में घर और बाहर के कामों में संतुलन रखती हैं, वो कई महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। फिटनेस का आलम ये है कि उम्र के 5 दशक पार कर चुकी शिल्पा अपनी उम्र को मात देती नजर आती हैं।

जून 1975 को कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी अश्विनी शेट्टी, जिन्हें आज हम शिल्पा शेट्टी के नाम से जानते हैं। उनके पिता सुरेंद्र शेट्टी एक बिजनेसमैन थे और माँ सुनंदा शेट्टी अपने समय की मशहूर मॉडल। अब आप ये सोचें कि शिल्पा को यहीं से फिल्म में जाने की प्रेरणा मिली, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुंबई में पढ़ाई कर रही शिल्पा तो अपने पिता के बिजनेस को संभालने की तैयारी में थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

स्कूल के दिनों में शिल्पा अपनी खूबसूरती को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एक रफ एंड टफ लड़की मानी जाती। अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कैप्टन शिल्पा शेट्टी खेल में खोई रहती। खेल के कारण फिटनेस का सिलसिला बचपन से ही साथ रहा। वही भरतनाट्यम में पारंगत हुई तो वो शुरू से ही डांस में भी अच्छी थी और इसके साथ ही शिल्पा कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। वैसे ध्यान दें तो ये सारी क्वालिटी एक फिल्मी हीरो की छवि दिखाती है। शायद यही कारण है कि शिल्पा भी अपनी अनुशासन से भरी लाइफ के चलते कई लोगों के लिए एक हीरो ही है।

भले ही शिल्पा खुद को हीरोइन की तरह नहीं देख रही थी, लेकिन 10वीं पास करते ही मॉडलिंग करने लगी थी। वो कई कमर्शियल्स में भी नजर आती हैं और इस तरह उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म गाता रहे मेरा दिल, जो कभी भी दर्शकों के सामने आई ही नहीं, बल्कि पहली बार शिल्पा बड़े पर्दे पर नजर आई शाहरुख खान के साथ। 1993 की ये फिल्म थी बाजीगर।

बाजीगर में शिल्पा के काम को सराहा गया, उन्हें काम भी मिलने लगा, लेकिन बाजीगर जैसी सफलता के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान आई उनकी बहुचर्चित फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ शिल्पा की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म में शिल्पा ने एक डांसर की भूमिका निभाई थी और उनके इस किरदार और उनके इस डांस ने उन्हें एक अलग पहचान दी। शिल्पा के करियर में उन्हें ऐसे कई किरदार और गीत मिले जिनमें उन्हें डांस करते देखा गया और ये गीत हिट भी हुए। कुछ फिल्मों में तो शिल्पा सिर्फ एक गाने के लिए भी आईं, क्योंकि वो डांस उनके ऊपर ही जचता है, फिर वो शूल का गीत हो या दोस्ताना का अंदाज। शिल्पा को आज भी उनके इन डांस नंबर्स के लिए याद किया जाता है।

शिल्पा ने एक्टिंग के गुर सेट पर ही अपने अलग अलग किरदारों को निभाते हुए सीखे, पर एक समय के बाद शिल्पा एक ही तरह के किरदार करते हुए थक चुकी थीं। वो कुछ अलग करना चाहती थीं। शिल्पा जो चाहती थीं, वो उन्होंने कर भी दिखाया। फिल्म जानवर में जब शिल्पा ने ममता ओबेरॉय के रूप में एक माँ के अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख बयां किया, तो दर्शकों की आंखों में आंसू और आलोचकों के मुंह से वाहवाही साथ ही निकले।

रिश्ते फिल्म में शिल्पा का मछुआरन का किरदार उनके डायलॉग्स के अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से एक अलग रंगत में ढल गया। वैसे शिल्पा इससे पहले ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी थी। साल 2000 में आई उनकी फिल्म धड़कन। इस फिल्म में जिस तरह बेबसी, लाचारी, प्यार, जुनून जैसे भावों को शिल्पा ने अपने अभिनय से दर्शकों तक पहुँचाया, लोगों को पर्दे पर शिल्पा नहीं नजर आई तो सिर्फ अंजलि।

शिल्पा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपना नाम कमा रही थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में उनके काम को सराहा गया। वैसे यहाँ ये बताते चलें कि शिल्पा 6 भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। वो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा मराठी, गुजराती, तेलुगु और तमिल भी बोल लेती हैं। उनके अभिनय की भाषा दर्शकों के दिलों तक पहुँचती है।

शिल्पा की हर फिल्म की चर्चा करना तो संभव नहीं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी बात करना जरूरी है। साल 2004 में आई शिल्पा की वो फिल्म जिसे आज तक देश विदेश में सराहा जाता है, ये फिल्म थी फिर मिलेंगे। शिल्पा ने तमन्ना साहनी के किरदार के जरिए एक HIV पॉजिटिव लड़की के जीवन को लोगों के सामने रखा। ये फिल्म नहीं बल्कि लोगों को एड्स पीड़ितों की परेशानियों और एक समाज के तौर पर हमारे कर्तव्यों को उजागर करने की पहल थी। इस फिल्म से मिली सारी रकम शिल्पा ने HIV पॉजिटिव पीड़ितों के लिए दान दे दी। फिर मिलेंगे को शिल्पा अपनी बेहतरीन फिल्मों में से एक मानती हैं।

शिल्पा का अभिनय लगातार निखर रहा था। वो खुद को एक एक्टर के तौर पर पसंद करने लगी थी। कन्नड़ फिल्म ऑटो शंकर में शिल्पा ने नेगेटिव किरदार यूं निभाया कि उन्हें साउथ के गब्बर सिंह की उपाधि मिल गई। शिल्पा की बेहतरीन एक्टिंग का एक और नजारा मिला। फिल्म थी लाइफ इन अ मेट्रो। शिल्पा को शिखा घोष के किरदार में देख न जाने कितनी महिलाओं ने उसमें अपनी कहानी देख ली।

शिल्पा ने अपनी माँ सुनंदा द्वारा निर्मित इंडियन चाइनीज फिल्म द डिजायर में भी एक रोमांचक भूमिका निभाई। वैसे शिल्पा शेट्टी टीवी में आने वाली शुरुआती फिल्मी सितारों में शामिल हैं। वहीं उन्होंने यूट्यूब ऐप डीवीडी वगैरह की ओर भी पहले कदम बढ़ाया। इसी तरह का एक और जोखिम भरा काम उन्होंने किया जब साल 2007 में वो ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर में एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई। पूरे समय कैमरों के सामने रहना आसान नहीं होता। शिल्पा के सामने कई तरह की परेशानियां भी आईं, लेकिन वो डटी रहीं। विनम्रता, सहनशीलता और दृढ़ता को उन्होंने अपना साथी बना लिया और इस शो की विनर बनी।

दोस्ताना के इस गाने में शिल्पा थिरकती नजर आईं और फिल्म के स्टार से ज्यादा शिल्पा की चर्चा हुई। शिल्पा अपने फिल्मी पर्दे से निकलकर टीवी की दुनिया में छाने लगी। वो कई रियलिटी शोज का हिस्सा बन रही थी, फिल्मों से एक दूरी सी बनती जा रही थी और यही वो समय था जब शिल्पा ने लंबे समय से दोस्त रहे राज कुंद्रा से शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद साल 2012 में शिल्पा पहली बार माँ बनी। उनके बेटे वियान भी अपनी माँ की तरह ही फिटनेस और मार्शल आर्ट के दीवाने हैं। साल 2020 में शिल्पा सरोगेसी के जरिए दोबारा माँ बनी अपनी बेटी समीशा की। शिल्पा अपने बच्चों को हर त्योहार का आनंद दिलाती हैं। एक माँ के तौर पर उनका ये अंदाज भी फैंस को पसंद आता।

लंबे समय तक फिल्मी पर्दे से गायब रहने के बाद शिल्पा ने बतौर निर्माता ढिस्क्याओं फिल्म से वापसी की और अभिनेत्री की तरह नजर आई फिल्म निकम्मा और सुखी में। इन फिल्मों में शिल्पा ने कुछ हट के किरदार निभाए। रोहित शेट्टी की ओटीटी सीरीज पुलिस फोर्स में भी शिल्पा के किरदार तारा शेट्टी को सराहना मिली, लेकिन हंगामा 2 में शिल्पा का वही अंदाज देखने मिला जो उनके फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में दिखा था। यहाँ भी शिल्पा एक बार फिर अपने उसी सुपरहिट गाने पर झूमती नजर आईं, साथ थे जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी।

किया। शिल्पा अपने ग्लैमरस अंदाज, कातिलाना मुस्कान और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। इन बातों के लिए भी उन्हें कई बार अलग अलग लिस्ट में टॉप पे रखा जाता रहा है।

ये तो मानना ही होगा कि शिल्पा के एक्टिंग और किरदारों से ज्यादा उनके फिटनेस, ध्यान और योग की बातें चर्चा में रहती हैं। उनका मानना है कि योग और ध्यान के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शिल्पा शेट्टी का मूल मंत्र ही फिटनेस है और ये बात उनकी दिनचर्या का भी हिस्सा है। पॉजिटिविटी, परिवार का साथ, योग, ध्यान, संस्कृति से जुड़ाव, जीवन को सरल रखना जैसे कई ऐसे गुण शिल्पा शेट्टी में नजर आते हैं जो उनके फैंस भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं। ये बातें उन्हें एक रोल मॉडल तो बनाती ही है, साथ ही लोग खुद को उनसे जुड़ा महसूस करते हैं। शिल्पा इसी तरह सरल और सहज बनी रहें और आने वाले कई दशकों तक लोगों को फिटनेस और सकारात्मकता की ओर प्रेरित करती रहें। हमारी यही

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था 3 दशकों से फिल्मी दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

0: छाया गीत के सुनने वालों को जयंत का नमस्कार।
1: पतंगा पतंगा जल जल जल मर जाए, ये दीपक झूम झूम

मन की अगन को है नहीं जाना आग से।

पतंगा जल जल जल मर जाए ये दीपक।

दिल तो चाहता है छोड़ कर के दुनिया, बस जाए तेरी आंखों में। महकते दिल का अरमा यही है कि बस के रह जाए

0: वज्रदंती, वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

रहेंगे साथ जिंदगी भर, इस दिल का यही वादा है। दे देंगे जान तुम पर ओ दिलबर, अब तो यही इरादा।

0: घेर लिया है तेरी महकती जुल्फों ने, लिपटा हूं तो लिपटा ही रहूंगा, मिला है सुकून तेरे पलकों की छांव में, जो बैठा हूं तो बैठा ही रहूंगा।
1: हाँ,

0: छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया जयंत के साथ, अब इजाजत दीजिए।
1: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

महके तो भंवरा वही जाए, दिल का पपिया तेरे ही पास आए। मेरा दिल है वो पागल पंछी के

शीशे के सागर सा, शीशे के सागर सा नाजुक बदन, तो शबनम के कतरों सा।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ढलती जाए रात एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। यह है एफएम रेडियो लेक्सिटी। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार होंगे, उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती

0: एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।